श्रोताओं, इस भजन के साथ ही हमारा आज का आराधना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होंगी कार्यक्रम लेकर ठीक सुबह के 5:05।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई 2026 सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 6 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से

0: मंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुची में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एम के स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीत ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं। सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुच्चेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुच्चेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया तथा पुदुच्चेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, वक्त आने दो आसमान भी उतना ही ऊंचा होगा। दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना कि वक्त बताएगा। वल जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौट कर फिर यादें आती हैं, वक्त नहीं लेकिन वक्त हमारा है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम। स्टूडियो में आ चुका है सुप्रभात लेकर। एंड यही कहना चाहूँगा यार, लाइफ में सेल्फ रिस्पेक्ट होना कितनी ज़रूरी है। वही है ना कि आपको अपनी कीमत खुद पता होनी चाहिए। दुनिया आपको सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश करेगी, लेकिन कहते हैं कि इंतकाम सारे पूरे किए, इंतकाम सारे पूरे किए लेकिन इश्क अधूरा रहने दिया।

बोल देना दुनिया वालों से मैं मतलब ही बड़ा था, दुनिया के हर बड़े महासंग्राम में तन्हा ही खड़ा था, अकेले चलना पड़ता है वॉरियर की तरह, है ना। और इसी के साथ आ चुका है आपका होस्ट, आपका दोस्त, स्टूडियो में 6:06 हो चुके हैं। इसी के साथ पुष्पा, पुष्पा राजन के फ्लर समझे क्या, फ्लर नहीं फायर हूं मैं, एनर्जी देने के लिए आया हूं आपको, ढेर सारा प्यार दिल से दिल तक। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुप्रभात।

कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, दिल से दिल तक। और ये सफर जो है दिल से दिल तक का ही है, मतलब मेरे दिल से आपके दिल तक का ना। 102.6 FM सुप्रभात। एंड अगर मौका मिला कभी तो कागज पर अपनी थकान लिखूंगा, मजबूत कंधों के पीछे छुपा वो छोटा सा इंसान लिखूंगा, वो जो हर मुश्किल में मुस्कुरा कर कहता है कि सब ठीक है, उस एक झूठ के पीछे दबे हजारों बेबस तूफान लिखूंगा। नहीं लिखूंगा मैं सिर्फ अपनी जीत के चर्चे दुनिया में, मैं तो हार कर भी जो मुस्कुराया वो लहूलुहान स्वाभिमान लिखूंगा। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवाह था मेरी सिसकियों का, पर सुबह उठकर फिर से पहना वो चट्टान जैसा इत्मीनान लिखूंगा। मैं लिख पाऊं कुछ तो मैं खुद को लिखूंगा, अपनी रूह के हर जख्म को अपने ही सम्मान लिखूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट और जज्बा होना चाहिए, मतलब गुड मॉर्निंग आपकी ऐसी होनी चाहिए एनर्जेटिक कि एवरीडे इज नॉट अ फिशरमैन डे, लेकिन हर दिन लड़ने के लिए हम तैयार हैं, वो जज्बा होना चाहिए ना। जगा लीजिए अपने आप को और जज्बा भी। ये कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो फिर तकदीर बन जाती है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, जैसे हम कर रहे हैं।

चल खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसी का दुखायो ना। वैसे आप तो मेरा नेचर जानते ही है ना, मतलब कितना नेचर फ्रेंडली हूं मैं। वैसे आपको भी आज नेचर के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहिए वीकडेज, और ऐसे में कोशिश कीजिए कि सवेरे सवेरे थोड़ा सा आप उठ जाएं और थोड़ा सा ताजगी का एहसास आपको हो, है ना। जिस तरीके से फ्रेशनेस का एहसास

ख्याल रखता है, ये तो मैं आपको बता ही देता हूं कि टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती के साथ करता है ना नेचर। बादल के टूटने पर पानी की फुहार बना देता है, मिट्टी टूटने पर खेती का रूप ले लेती है, और बीज टूटने पर पौधों की संरचना होती है। इसलिए जब कभी आप खुद अपने आप को टूटा हुआ पाए तो समझ लेना कि ईश्वर आपका इस्तेमाल बहुत अच्छे काम के लिए करने वाला है। देखिए, थॉट ऑफ द डे है ना। वैसे तो मैं अच्छी अच्छी बातें कर ही लेता हूँ, और इसके साथ तो मतलब अपना तो स्टाइल ही ऐसा ही है कि सवेरे सवेरे मतलब गूज़बम आ जाए आपको।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें

0: रहे हो जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

श्री गणेशाय धीमहि। एंड कैसे हो भाई सारे, दिखा दे एक बार फिर से आपको दिन में तारे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आएगा, लेकिन उससे पहले सुप्रभात एंड नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त। आ चुका है स्टूडियो में, 6:29 हो चुके हैं। एंड एक स्टोरी भी आपको सुनाना चाहूंगा ना। शुरुआती दौर में मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, आसमान भी देखना कितना ऊंचा होता है। कहानी छोटे कदम लेकिन बड़ी मंजिल, निगाहों में मंजिल है और वही तो है फाइनल डेस्टिनेशन। एक कहानी के जरिए आपको बताना चाहूंगा कि छोटे छोटे कदम से कैसे आप मंजिल की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बने, बड़ा वैज्ञानिक बने। लेकिन उसके पास ना अच्छे स्कूल की सुविधा थी, ना किताबें और ना ही कोई मार्गदर्शन। एक गॉडफादर होना लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको सही राह पर ला सके। कहते हैं जहां चाह है वहां राह है, लेकिन चाहतों के सफर में कहीं ना कहीं राह थोड़ी पीछे रह जाती है। ये स्टोरी आगे क्या मोड़ लेगी ये हम आपको लेकर चलेंगे आगे, लेकिन उससे पहले समय हो गया है। अजी समय हो गया है मस्ती का। मौसम जिस तरीके से सतरंगी हो रखा है ना, वैसे आप भी खो जाइए, झूम जाइए और घूम जाइए।

मस्ती तो रुकनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए आपकी मस्ती, एंड रुकने का नाम लेगी भी नहीं। लेकिन स्टोरी की तरफ एक बार फिर से आपको लेकर आते हैं 102.6 FM, दिल से दिल तक। ये कहानी है अर्जुन की। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम साइंटिस्ट बनोगे, तुम वैज्ञानिक बनोगे, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन इम्पॉसिबल में भी कहीं ना कहीं आई एम पॉसिबल तो है। अर्जुन ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। शुरुआती दौर में मैंने आपसे एक बात कही थी कि मेरी जमीन तुमसे गहरी रही है, आसमान भी देखना कितना ऊंचा होगा। वो हर रोज सुबह उठकर पुराने अखबार पढ़ता, टूटे फूटे रेडियो खोलकर समझने की कोशिश करता कि चीजें कैसे काम करती हैं, कैसे वो और भी ज्यादा टेक्निकल साउंड हो सके। धीरे धीरे उसने खुद से सीखना शुरू कर दिया। बहुत समय की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया जो गांव में बिजली बचाने में मदद करता था। उसकी मेहनत को अब पहचान मिली, एक उड़ान मिली और उसे आगे पढ़ने का मौका मिला।

है ना। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, दुनिया कहेगी तुम काबिल नहीं हो, लेकिन आप मुस्कुरा कर कहना कि वक्त बताएगा। बहरहाल वक्त हो चला है स्टूडियो में 6:36 और स्टोरी से कहीं ना कहीं ये सीख हमें मिलती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़े साधन नहीं, बड़े सोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज नहीं, बल्कि बड़ा हौसला चाहिए। छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसीलिए कहा जाता ना पंजाबी में, तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़ दी जान दिया। तो आप भी कभी हार मत मानिएगा,

अंगड़ाई है और आपको क्यों आई अंगड़ाई है। सुप्रभात लेकर मैं आ चुका हूँ स्टूडियो में, लेकिन ना अभी थोड़ा सा जाग जाइए तो मुझे लगता है यार लेजीनेस काफ़ी हो जाती है, और ऐसा मौसम हो तो फिर सबका मन करता है कि थोड़ा सा और सो लेते हैं, लेकिन जो सोता है वो खोता है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है। तो साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर जोर लगाना। अगर सुन रहे हो तो फिर एंजॉय करो इस शो को। सुप्रभात। जागो मोहन प्यारे।

वेल, थोड़ी बहुत बदमाशी तो होती रहनी चाहिए। कहते हैं ना कि दिलों के इस संसार में हम सच्चे ही अच्छे हैं, हमें बच्चा ही रहने तो जिंदगी में बच्चे ही अच्छे हैं, बचपन होना चाहिए। लेकिन बचपन से लेके 55 तक का ये जो सफर है, और अगर इसको और भी आरामदायक बनाना है तो वर्कआउट जरूर कीजिए। मैं भी हालांकि हर रोज ट्राई कर रहा हूँ, उठने की कोशिश कर रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा थोड़ा वन स्टेप एट अ टाइम, है ना। इसी के साथ कहते हैं कि मंजिल मिले ना मिले, या मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि एक लड़की थी रीना, बहुत होशियार लड़की थी, लेकिन जब उसने पहली बार एक प्रतियोगी परीक्षा दी तो वह असफल हो गई। वह बहुत निराश हो गई। अक्सर लाइफ में जब हम हार जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि बस अब नहीं हो पाएगा। खासकर जब आप माउंट एवरेस्ट को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कैसे होगी चढ़ाई, लेकिन कदम से कदम मिलाकर आत्मविश्वास और भी आगे बढ़ता है। वो बहुत निराश हो गई और उसने सोचा कि शायद वो इसके लायक नहीं है। कहते हैं ना कि जनाब, कि अगर 10 लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाओ तो वो चलेगा, लेकिन जब आप खुद ही की नजरों में आपको लगता है ना कि मेरा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं टूट रहा है, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। जाकिर खान की लाइनें हैं कि टूटता हूं हर रोज जब आईना देखता हूं, लहरा कर चलता हूं, मुस्का कर मिलता हूं, ना जाने में हर रोज ऐसे कितनों को दगा देता हूं। वाह। उनके जो टीचर थे, उन्होंने उनसे कहा कि अगर तुम गिरोगे नहीं तो उठना कैसे सीखोगी, आखिरकार जो लोग फेल होते हैं उन्हें तो वैल्यू पता होती ना, कि पास होने के बाद वो खुशी का एहसास, वो एहसास कमाल का होता है। और रीना ने भी हार नहीं मानी, उसने अपनी गलतियों को समझा और पहले से ज्यादा मेहनत की। मेहनत मेहनत मेहनत कि मेहनत पे बस मेहनत करते जाओ और बस पसीना बहाते जाओ, कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गर्मियों में थोड़ा सा नहाना धोना छोड़ दें यार, ये भी आपको फ्रेशनेस का एहसास कराता है। लेकिन उससे भी बेटर है कि आप हार नहीं माने कभी। रीना ने हार नहीं मानी और उसने अपनी गलतियों को समझा और पहले से ज्यादा मेहनत की। अगले साल उसने वही परीक्षा दी और इस बार वो सफल हो गई। जब उससे पूछा गया कि उसकी सफलता का राज क्या है, तो उसने मुस्कुरा कर कहा कि वो जो फेलियर्स थे ना, जो रास्ते में मिले थे, उन्हीं की बदौलत आज मैं यहां तक पहुंची। असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है जो उसे सीख लेता है, वही आगे बढ़ता है। कि मैं शून्य पर सवार हूं, मैं शून्य पर सवार हूं, अब आफतों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजारों। 102.6 FM, दिल से दिल तक। और सुन लीजिए आप, क्या सुन लीजिए, ये प्यारा सा गीत भी, और इसी के साथ ये भी कि सुबह होगी, उठ जाइए, थोड़ा सा आलस त्याग दीजिए।

सुप्रभात। और बातों ही बातों में पता ही नहीं लगता, ऐसी हंसी मुलाकातों में पता ही कहाँ लगता है कि समय कहाँ कट जाता है। और आप लोगों के साथ तो वैसे ही पता नहीं लगता है ना। दिल से दिल का ये सफर है और ये सफर इसी तरीके से और परवान चढ़ता रहे। वेल, मुझे पता है अब आप कहेंगे तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन मैं जाऊंगा तभी तो निशा आएंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। तो अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन निशा आपके साथ हाजिर होंगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर। लेकिन एक गुजारिश है आपसे ना, वो गुजारिश ये है कि गलतियां जरूर सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत फहमियों का शिकार मत होइए। एक दूसरे के बारे में बोलने के बजाय एक दूसरे से बोलें तो बहुत ही गलत फहमियां दूर हो सकती है। थॉट ऑफ द डे, चलिए चलता हूं। निशा आ चुकी है स्टूडियो में। लव यू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालू कबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय

राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गई। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा

मनसुख मांडविया तथा पुद्दुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 FM, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं निशा हूँ यहाँ पर और हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कहूंगी कि गौतम की ढेर सारी शायरी सुनने के बाद मेरा अब मैं बिल्कुल सीधे साफ सिंपल तरीके से अपनी बात आपके सामने बिल्कुल नहीं रखने वाली हूँ क्योंकि भाई ये जो बदलाव की लहर है ना हमारे देश में साफ लोग फील कर रहे हैं तो हम भी क्यों ना बदले। कहीं ऐसा लगता है ना कई बारी हमारी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड में चल रही है, सुबह उठते हैं वही सेम डेली चॉइसेस हमारी शुरू हो जाती हैं और हमारे दिन को स्टार्ट कर देती हैं। हमारी पुरानी प्यारी हैबिट्स जैसे कि चाय पीना, कॉफ़ी पीना या उसके अलावा जो कुछ भी आपको पसंद है वो करना हम शुरू कर देते हैं। हमारा सेम रूटीन रिपीट होता जाता है एंड द डे स्टार्ट्स टू लुक द सेम विदाउट एनी कॉन्शियस डायरेक्शन। तो ऐसा जब भी आपको फील हो ना तो सिंपल एक पॉज लेना है और वाइजली चूज करना है। डेलिबरेटली आपको अपने दिन में कुछ एक या दो चीजें डिसाइड करनी है। बड़ा सिंपल तरीका है इस मोनोटनस लाइफस्टाइल से बाहर निकलने का कि आप अपने दिन की एक या दो चीज़ें डिसाइड कीजिए कि आपका दिन आज आप अपना ये जो कीमती समय है ना वो किसके ऊपर स्पेंड करने वाले, बिकॉज स्मॉल इंटेंशनल डिसीजंस स्लोली चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइफ। तो अगर अपने लाइफ की दिशा और हर चीज़ को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं ना तो आपको ये छोटी मोटी चीज़ें तो बदलनी पड़ेंगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, वही सेम आपका अपना शो, बने रहिए मेरे साथ और मैं निशा

दिल्ली NCR में एक जगह से दूसरी जगह जाने में किसी भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल आप करते हो, आपको बस चलाकर ही एवरेज स्पीड पर ही जाना पड़ेगा। उड़ने की जो संभावनाएं हैं फिलहाल अपने दिमाग से आप बिल्कुल निकाल दीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, 7:11, मैं निशा हूँ आपके साथ में। और ये सब मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि बस आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मौसम विभाग ने बता दिया है दिल्ली NCR के कुछ इलाकों में अभी से थोड़ी देर बाद हो सकता है बारिश हो, ओले गिरे, तो आप बस स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। वैसे तो मई की जो शुरुआत हुई है ना, अच्छी हुई है। मौसम में बदलाव ज़रूर हो रहा है और दिल्ली NCR के मौसम में तो बहुत सारे रंग देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक पल को धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और दूसरी पर तरफ छुटपुट बारिश हो जाती है, और ये प्यारे से दिल्ली वाले हैं ना, उन्हें ये जो भीषण गर्मी है उससे राहत मिल जाती है। तो बस हमें तो बस गर्मी से बचना है और साथ ही साथ पेड़ पौधे लगाते रहना है, पक्षियों के लिए पानी रखना है, और बस इतना सा काम अपने एंड पे हमें करते जाना है, बाकी का काम प्रकृति अपने आप संभाल लेगी। ठीक है जी, तो आज आप मौसम की जो अपडेट है उसको ध्यान में रखते हुए अपने घर से बाहर निकले और बस इंजॉय करते रहें। दिल्ली का तापमान फिलहाल 24 बना हुआ है और मैक्सिमम ये 30 तक जाएगा, मतलब अच्छा मॉडरेट टेम्परेचर है। सो कीप हैविंग फन।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

एक बड़े ही खास इंसान की आज बर्थ एनिवर्सरी है, जिसके बारे में आपको बताऊंगी, जिनकी कहानी आपको सुनाऊंगी, उनकी वीरता की कहानी। तो आपका भी ये चेहरा ना ऐसे ही खिल उठेगा। वेरी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं निशा आपके साथ। मंगलवार का दिन है, 5 मई हो गई है आज। और एक बात आपको कई बार हम लोग बता चुके हैं, शायद आपको याद भी हो, कि साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना के 2 जाबाज सैनिकों को सर्वोच्च सैन्य सम्मान यानी कि परमवीर चक्र से नवाजा गया था। एक तो थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जिन्होंने अपने प्राण गंवाकर सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र का जो विजेता होने का ये सम्मान है पाया था, और दूसरे थे मेजर होशियार सिंह। आज 5 मई है और आज मेजर होशियार सिंह दहिया की बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 1936 में सोनीपत हरियाणा के एक गांव में हुआ था, और वो अभी रिसेंटली एक रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर 2 तो आपने देखी होगी, है ना। उसमें एक छोटी सी झलक वरुण धवन के कैरेक्टर ने मेजर होशियार जो सिंह थे उनकी बहादुरी की दिखाई है। अब हालांकि ये युद्ध के दौरान काफ़ी घायल होने के बाद भी बेपरवाह थे बिल्कुल अपने जख्मों को लेकर, और लगातार अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे थे। आज से तकरीबन 54 साल पहले आई थिंक मेजर होशियार सिंह दहिया ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए एक ऐसी जीत हासिल की थी जिसमें 85 दुश्मन सैनिक मारे गए थे। हमला खत्म हो चुका था, सोचिए, और जो इनकी पोस्ट थी जरपाल पोस्ट, वहां पर भारतीय सेना का कब्जा हो चुका था। मेजर होशियार सिंह बुरी तरह से घायल होने के बाद भी जब तक सीज फायर की घोषणा नहीं हो गई उन्होंने अपनी पोस्ट से हटने का के लिए इनकार कर दिया, और उनकी इसी वीरता को देखते हुए सरकार ने उन्हें सर्वोच्च वीरता

पुरस्कार परमवीर चक्र देने की घोषणा की। सोचिए, ये सम्मान किसी घटना का नहीं बल्कि एक बड़ी ही मुश्किल युद्ध के बीच कई दिनों तक अटूट साहस दिखाने का प्रतीक रहा है। ये सिर्फ कि एक इनकी कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची दास्ता है, जिसमें मेजर होशियार सिंह ने घायल शरीर लेकिन अडिग मन के साथ लगातार 3 दिनों तक दुश्मन के हमलों को नाकाम करते रहे। और ये वही कहानी है जिससे आज भी हमारे सैनिक प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं और सरहद पर गर्व से लिखते हैं, भारत माता की जय।

साल 2026 के पांचवें महीने की 5 तारीख है आज मंगलवार की सुबह। मैं निशा गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में आपका स्वागत कर रही हूँ। स्वागत है जी आपका। और आज विश्व अस्थमा दिवस है। इस दिवस का उद्देश्य है कि दुनिया भर में श्वसन से जितनी भी जुड़ी गंभीर बीमारी है उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए ताकि रोगियों में इसकी देखभाल को और बेहतर बनाया जा सके। हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। एंड आप सभी जानते हैं कि अस्थमा इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज दैट अफेक्ट्स ओवर

260 मिलियन पीपल, इजंट इट अ ह्यूज नंबर? और अनुमानों के अनुसार तो भारत में 35 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं, वायु प्रदूषण, मौसमी परिवर्तन और घर के ही अंदर बहुत सारे ऐसे एलर्जी ट्रिगर हो जाते हैं जिससे अस्थमा के पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो अस्थमा अटैक सिर्फ बाहरी कारणों से नहीं होता, ऐसा कई बार डॉक्टर्स को मैंने कहते सुना है, बल्कि शरीर के अंदर होने वाले बदलावों से भी जुड़ा होता है। अब जैसे कि ये सीजन जो है चेंज हुआ और गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन हो जाता है लोगों के शरीर में, थकान भी सांस की तकलीफ को बढ़ाने में योगदान ही देती है अपना। तो विश्व अस्थमा दिवस जो आज है, इसे पहली बार 1998 में स्टार्ट किया गया था और तभी से इसके विषय में लगातार जागरूकता बढ़ाई जा रही है और साल 2026 में एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड इस थीम के साथ में ये आज का जो दिन है उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और अगर आप अस्थमा के बारे में इससे जुड़ी कोई खास बातें जानना चाहते हैं या कोई सवाल आपके पास में, तो आज आप हमारे स्पेशल प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर में जरूर जुड़िएगा दोपहर 3 बजे से, जिसमें वर्ल्ड अस्थमा डे स्पेशल प्रोग्राम होने वाला है, डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे। और अगर आप इन डॉक्टर्स से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो 2342-1080 एंड 2342-1082, दीज आर द नंबर्स जिन पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो 102.6 FM पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

खूबसूरत गाने के बाद फिर से स्वागत है आपका. वेलकम बैक 102.6 FM, 7:41. मैं निशा हूँ आपके साथ में. आज 5 मई है और आज हमारे बहुत ही स्पेशल निशानेबाज कहूँ या फिर शूटर कहूँ या कहूँ कि अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित एक खास इंसान समरेश जंग आज ये अपना जन्मदिन मना रहे हैं. सिरमौर हिमाचल में इनका जन्म हुआ था और आज के दिन ही इनका जन्मदिन है. 1970 में इनका जन्म हुआ था और बहुत ही जाने माने पिस्टल शूटरों में से ये एक है. और याद है सभी लोगों को 2006 में मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेल खेले जा रहे थे जहां पर 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इन्होंने ये ऐसे भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी बन गए थे जिन्हें उन खेलों का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था. और पता है ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत के किसी खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया हो और ये पुरस्कार जीतकर तो इन्होंने एक इतिहास ही रच दिया था. तो आज इनको इनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से. पार्टी का मूड है तो ऐसे ही गाना आपके लिए प्ले करूंगी और साथ ही 5 मई

ऐसे ही सलाम करने वाला काम कल तो मुंबई इंडियंस ने कर दिया। आईपीएल की बात कर रही हूँ जी, अपने सबसे बड़ा रन चेज मुंबई इंडियंस ने कल के दिन कर डाला और ये टीम ने लखनऊ सुपर जायंट से 6 विकेट की जो जीत दर्ज की ना, अच्छा था, मतलब मजा आया मैच देखने में। और ये जो मुंबई इंडियंस है इस सीजन में लगातार 3 हार के बाद अब सोचे फाइनली इन्होंने जो है जीत का स्वाद चख ही लिया है ना जी। तो खैर आज की बात कर लेते हैं। आज 5 मई है और आज चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हमारे

दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ होने वाला है, तो वहां पर ये सब कैसा माहौल रहेगा वो तो तभी पता चलेगा। बस आप मैच देखना नहीं भूलेगा, ऑल्सो डोंट मिस दिस सॉन्ग, एंजॉय द सॉन्ग ओनली ऑन 102.6 FM।

5 मई का दिन है आज और मेजर होशियार सिंह दहिया की बर्थ एनिवर्सरी है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन आज 5 मई के दिन गुलशन कुमार जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। ये जाने माने निर्माता, निर्देशक और व्यवसायी रहे हैं। इन्होंने फिल्मी दुनिया की उन हस्तियों में शुमार करते हैं जिन्होंने काफी कम समय में ही शोहरत की बुलंदियों को हासिल कर लिया था। उनको जहां पर पहुंचना किसी का सपना ही हुआ करता है। बहुत संघर्षपूर्ण जीवन भी रहा था इन्होंने और संगीत के लिए उनका जो लगाव था, लगन थी, उसी की वजह से ये खास मुकाम

आपने इन्होंने हासिल किया और अब इनके बेटे भी अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गुलशन कुमार ने पूरे भारत में जो भक्ति संगीत है खासतौर पर उसकी एक लहर ला दी थी और इनकी कैसेट्स के माध्यम से देवी देवताओं के भजन जो है जो गीत है जनता के बीच पहुंचे और लोगों ने इनको बहुत सारा प्यार दिया था। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर बने रहिए। भजन तो ना सही लेकिन एक बहुत ही अच्छा गाना आपके लिए लेकर आई हूँ और ऐसी ही गानों की लिस्ट कंटिन्यू रहेगी 8 से 9 बजे भी गौतम के साथ। बने रहिए आकाशवाणी रेनबो पर।

ये संगीत, ये म्यूजिक ही तो है, ये लाइक्स टू फ्लाई वाली फीलिंग हमें दे जाता है। और ये संगीत देने वाले वो खासम खास इंसान को हम याद न करें वो कैसे हो सकता है। आज नौशाद साहब की पुण्यतिथि है तो आज इनके बारे में बहुत ज्यादा बातें मैंने नहीं की हैं, कुछ भी नहीं बताया आपको, लेकिन यस मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। दिल की तरह ने गाने नए पुराने में जो तीन खास रेट्रो गीत आज लेकर आई हूँ उसमें नौशाद साहब की ही बातें होंगी और ये जो तीन रेट्रो गाने होंगे वो उन्हीं को डेडिकेटेड होंगे। तो फिलहाल तो मेरा यहाँ से जाने का टाइम, बट यस आई विल बी बैक एट 9। और अभी गौतम यहाँ पर है स्टूडियो में मेरे पास में ही है, बातें मैं उन्हें नहीं करने दे रही हूँ क्योंकि वो बहुत बातें करेंगे 8 से 9 के बीच में आपके साथ। बने रहिए FM रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बिल्कुल, और जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदा भाई, कैसे हो भाई सारे, दिखा दे एक बार फिर से दिन में तारे। तो आ चुका है आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका है। जनाब जहां जाओगे वहीं हमें पाओगे। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर।

नहीं, कहीं नहीं जाना है आपको, दिल से दिल तक का ये सफर इसी तरीके से रहेगा। 102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR सुन रहे हैं आप। और हम अक्सर बात करते हैं क्रिकेट की, तेज रनों की गुहार या चढ़ता हुआ बुखार, इन दोनों का इलाज है जरूरी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विमेंस क्रिकेट भी अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है और लड़कियां भी हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिला के आगे तो बढ़ रही हैं, और मुझे लगता है कि हम पीछे रह गए कहीं ना कहीं। 12 जून से शुरू होने वाले विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम इंडिया में चंडीगढ़ की नंदनी शर्मा भी जगह बनाने में कामयाब रही, एंड 15 सदस्यीय टीम में उन्हें तेज गेंदबाज के रूप में जगह मिली है। वह बिना किसी इंटरनेशनल मैच के अनुभव के सीधे विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए चुनी गई हैं। हालांकि वह विमेंस प्रीमियर लीग WPL में खेल चुकी हैं और हैट्रिक भी ली है। टीम में सिलेक्शन को लेकर नंदनी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब सोचिए कि आप लंब दंड गोलपेंड धड़पकड़ प्रतियोगिता क्रिकेट इन इंग्लिश जेंटलमैन गेम के साथ साथ ये नाम रोशन कर रही हैं लड़कियां भी, नंदनी।

नंदिनी शर्मा तो अपना कर्मा करने के लिए एकदम तैयार हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी बात, 22 गज की ये दूरी और हर एक रन है जरूरी, लेकिन ताबड़ तोड़ पारी देखने को मिलती है T20 के महासंग्राम में। अनिश्चितताओं के इस खेल में अनिश्चितताओं की तब्दीली निश्चितताओं में होती है। क्रिकेट जेंटलमैन गेम, मुंबई इंडियंस। वैसे दिल्ली की बात करते हैं हम खाने पीने के मामले में, ना दिल्ली वाले तो है ही तेज, और मुंबई में भी मुंह में पानी आ गया। तीखा खाना काफी अच्छा मिलता है, वड़ा पाव। और वेल, मुंबई इंडियंस ने IPL में अपना सबसे बड़ा रन चेज किया है। चीते की चाल, बाजीराव की तलवार, संदेह नहीं करते। और टीम ने मंडे की बात करें यानी कि सोमवार की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स पर 6 विकेट की जीत दर्ज की है। टीम ने मौजूदा सीजन में लगातार 3 हार के बाद जीत का स्वाद चखा। वानखेड़े स्टेडियम में टॉस हारकर बैटिंग कर रही लखनऊ ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बनाए और मुंबई ने 229 रन का टारगेट 18.4 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। एंड अगर पार्टनरशिप की बात करें, हम शुरुआती दौर में बात कर रहे थे साथ ही साथ निभाते चलो, और बस यही है कि मतलब तुणका तुणका करके गुड्डी चढ़ दी जानती होती है। एक एक रन भी काफ़ी कीमती होता है, लेकिन जब बड़े बड़े शॉट देखने को मिलते हैं मैदान पर, हिटमैन शर्मा जहां पर खड़े होते हैं, रोहित रिकल्टन की 50, दोनों में शतकीय साझेदारी रन चेज में, ओपनर्स ने मुंबई को विस्फोटक शुरुआत क्या कमाल की दिखाई है। परफेक्ट ट्रीट टू द आइस हर क्रिकेट प्रेमी के लिए। लेकिन अभी ऑफिस जा रहे हो ना, अभी ऑफिस जा रहे हैं आप, तो उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। बाकी एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी।

बिल्कुल, ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको भी कहीं ना कहीं मिलते रहते होंगे। वेल, दो दिन से कहीं ना कहीं मौसम एकदम, हवाएं ऐसी चल रही है कि घूमने का मन कर जाता है हर किसी का। और मैं हर किसी के स्टेटस पे देख रहा हूँ, कोई कहीं गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, लेकिन आप कहीं भी हैं लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहिएगा। आने वाले समय में हीट वेव्स दस्तक देने वाली हैं, यानी कि 52 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है। तो ऐसे में प्रिकॉशन ज़रूर आपको लेना है। करना क्या है कि अपने आप को सबसे पहले हाइड्रेटेड रखना है, काम इन कंपोज करने के लिए, कूल करने के लिए बस पानी पीते रहिए। और बस ये कहूँगा, जुग जुग जियो और रज के पानी पियो। एंड इसी के साथ, जब तक ज़रूरत ना हो 12 से 4 के बीच में, कहीं ना कहीं कोशिश कीजिए कि अगर बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो फिर आप वर्क फ्रॉम होम अगर हो सकता है तो वो बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आने वाले समय में हो सकता है कि हीट वेव से कहीं ना कहीं हालात, मतलब गर्मी तो लगती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन काम एंड कंपोज होकर शो सुनिए हमारा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और इसके साथ बस हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। तैयारी जीत की भी होनी चाहिए और तैयारी गर्मियों के लिए भी।

किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है, वो तैयारी कर रहा है एक बड़ी उड़ान की। लोग सोच रहे हैं परिंदा हार मान रहा है। अरे इतने दिनों की छुट्टियों के बाद जब परिंदा ऑफिस आता है तो थोड़ा सा थकावट जरूर महसूस होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। एंड वही है ना कि मतलब राह में उनसे मुलाकात हो गई और जिससे डरते थे वही बात होगी। अगर आपको भी कहीं ना कहीं राह में, रास्ते में ट्रैफिक नजर आ रहा है तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं 9868107070। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। पहले नहीं, हर रोज मिलते हैं हम आपसे।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

102.6 FM, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR और आरजे गौतम के साथ। एंड कहते हैं कि खुद से बन रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, टाइम तो लगता है ना अच्छी चीजों को होने में। परफेक्शन वो एक दिन में नहीं आती लेकिन एक दिन जरूर आती है।

well, अखियां गुलाब हो ही जाती हैं, और जब खासकर वीकडेज, और जब आप इंतजार करते हैं कब आएंगे वीकेंड, मतलब सैटरडे संडे कब आप एंजॉय कर पाएंगे, और कहते हैं यार एचआर कि वो मेल का भी इंतजार कहीं ना कहीं आपको रहता है जहां पर लिखा होता है वी विल गेट बैक टू यू। अब आपकी छुट्टी लगेगी या नहीं, कबूल होगी या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन एचआर का डिसीजन, आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, ये फ्रेंडशिप हमारी भी अमर रहे, दोस्ताना सलामत रहे।

वेल, मेट्रो से ट्रेवल करने वालों के लिए डीएमआरसी की तरफ से एक तोहफा है। यात्रियों को मिलेगा सुरक्षा कवच। एंड मैं आपको बता दूं कि मेट्रो स्टेशन पर प्लेटफॉर्म

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगने से यात्रियों की सुरक्षा में बड़ा सुधार होने वाला है। ये दरवाजे ट्रेन आने पर ही खुलेंगे और जिससे ट्रैक पर गिरने, धक्का लगने या हादसों की संभावना काफी कम हो जाएगी। भीड़भाड़ के समय यात्रियों की आवाजाही व्यवस्थित रहेगी, जिससे भगदड़ जैसे हालात नहीं बनेंगे। इसके अलावा ट्रेन संचालन अधिक सटीक और समयबद्ध होगा और देरी कम होगी। स्वदेशी तकनीक के कारण सिस्टम का रखरखाव और भी तेज और सस्ता होगा, जिसका सीधा लाभ बेहतर और भरोसेमंद मेट्रो सेवा के रूप में यात्रियों को मिलने वाला है।

वेल ब्रेकफास्ट में ब्रेड पे लगा बटर और आईपीएल में यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में रनों का शटर, ये अनलिमिटेड तरीके से होना चाहिए ना। फेस ऑफ आज भी कमाल का है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉफी टू ऑल। आरजे गौतम आ चुका है स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मतलब गुड मॉर्निंग ऐसी होनी चाहिए पावरफुल तरीके से, जितना पावरफुल आज मुकाबला है। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स और दूसरी तरफ है चेन्नई का वसल फोड़ू, चेन्नई सुपर किंग्स। ये मुकाबला, ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले मैच में चेन्नई ने दिल्ली को 23 रन से हराया था जी, और ऐसे में दिल्ली के पास अपने घर में हिस्सा बराबर करने का मौका होगा। दोनों टीमों के लिए ये मैच प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दिल्ली पॉइंट्स टेबल में 7वें स्थान पर है। थला फॉर अ रीजन है ना, 7 काफी लकी साबित होता है, जबकि चेन्नई 9 मैचों में 4 जीत के साथ 6ठे स्थान पर है, और आज का मुकाबला भी काफी अहम होने वाला है। वेल, ये तो चलता ही रहेगा। बहरहाल आप इस एंटरटेनमेंट का भी मजा लीजिए, भूल भुलैया नहीं।

जिंदगी भी कहीं ना कहीं भूल भुलैया से कम नहीं है, और ऐसे में ट्विस्ट ढेर सारे आते हैं। कहते हैं ना कि चाहतों का मोहल्ला बहुत बड़ा होता है, जरूरत वाली गली से होकर यू टर्न लेना पड़ता है कई बार, लेकिन ड्राइविंग वो तो मैं स्लो करता हूं। ट्विस्ट एंड टर्न ये शो में भी आते रहेंगे, एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

दिल्ली का वेदर भी ना आपके बॉस के मूड की तरह कभी भी बदल सकता है, पलट सकता है, वक्त पलट सकता है, जज्बात पलट सकते हैं, हालात बदल सकते हैं। वेल, दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट ली है, जहां आंधी और हल्की बारिश ने तापमान में गिरावट जरूर लेकर आए और राहत जरूर काफी सारे लोगों को मिली होगी। और मौसम विभाग ने आज के दिन भी येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि अगले कुछ दिनों में फिर से तेज गर्मी लौटने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो सबको मुस्कुराकर मिलिए, ग्रीट कीजिए, बिकॉज मैं यही कहता हूं कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे। हर कोई यही कहना चाहिए जब आपसे मुलाकात हो तो, है ना, कि मैं इश्क में यारो कमाल कर बैठा, लिख के आई लव यू फॉरवर्ड टू ऑल कर बैठा। नहीं नहीं, ये मैसेज फॉरवर्ड मत करना, प्यार फॉरवर्ड करना। 102.6 FM, दिल से दिल।

इश्क कैसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, हर रोज होगा जब ऐसे बैक टू बैक सुपरहिट सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन क्या करें, ये समय जो है ना, पता ही नहीं लगता कहाँ चला जाता है। कहते हैं ना, समय किसी के लिए रुकता नहीं, चलता ही जाता है। तो चलते चला जाता है और मुझे भी जाना पड़ेगा। वेल जेंटलमैन, दिस इज द डे यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट यू ऑलमोस्ट गॉट कैप्टन जैक स्पैरो। नाउ कैप्टन जैक स्पैरो इज साइनिंग आउट, लेकिन मैं जाऊँगा तभी तो दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर निशा एक बार फिर से हाजिर होंगी और फिर पूजा आनंद आपके साथ होंगी वेस्टर्न

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 की म्यूजिकल जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल के दराने गाने नए पुराने लेकर मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मेरा नाम है निशा और ये ब्यूटीफुल नए और पुराने गानों की जर्नी इस गाने के साथ।

ये खूबसूरत गाने सुन रहे हैं आप, दिल के तराने, गाने नए पुराने में 102.6 FM. वेरी गुड मॉर्निंग, मैं निशा हूँ आपके साथ में. और एक सीन आपको बता दी हूँ, बस आप इमेजिन कीजिए, ठीक है. मुंबई में दादर के ब्रॉडवे सिनेमा के सामने एक फुटपाथ हुआ करता था. लखनऊ से भागकर एक नौजवान वहां पर आया और वो फुटपाथ ही उसका घर बन गया. यहीं खाना, रहना, संगीत की साधना करना. इस नौजवान का सपना था कि एक दिन इस सिनेमा में, वो जो ब्रॉडवे सिनेमा था, उसमें भी उनकी भी फिल्म लगेगी. और ये सपना सच में सच हो गया. 1952 में फिल्म बैजू बावरा जब ये आई और फिल्म सुपरहिट रही. इस सिनेमा के फुटपाथ पर सोने वाला वो नौजवान बैजू बावरा का संगीत जिसने दिया था, उनका नाम नौशाद साहब. आज इनकी पुण्यतिथि है और आज हम इस महान हस्ती को याद कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय संगीत जगत में बहुत सारे खूबसूरत सॉन्ग्स हमें दिए हैं जो आज तक हमारी मेमोरी में मौजूद हैं. 5 मई आज इनकी पुण्यतिथि है. 2006 में आज ही के दिन इन्होंने इस दुनिया से अलविदा कहा था. संगीत के लगाव के कारण ही लखनऊ से अपना घर छोड़कर भागे थे नौशाद साहब. और उस दौर में फुटपाथ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है गुजारा किया, वहीं सोना, उठना, खाना पीना और काम की तलाश करना. और आज जब हम बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम लेते हैं ना, तो इन्हीं के नाम इन फिल्मों के नाम से जुड़े हुए हैं. गंगा जमुना फिल्म का गाना फिलहाल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. ये नितिन बोस साहब ने इस फिल्म को बनाया था, क्राइम ड्रामा, और बहुत ही सुंदर फिल्म थी. दिलीप कुमार साहब की दमदार एक्टिंग को देखने को मिला था इस फिल्म में. वैजयंती माला उनके साथ ऑपोजिट लीड थी इस फिल्म के अंदर. वैसे काफ़ी टाइम पहले इस फिल्म बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन इसको रिलीज़ होने में 6 महीने का एक लंबा समय लगा था. लेकिन जैसे ही रिलीज़ होती है, दर्शकों के दिल पर छा जाती है. दिलीप कुमार साहब भी कुछ ऐसे ही थे. इसी फिल्म का जो निर्देशन किया था, संगीत निर्देशन, वो हमारे नौशाद साहब ने किया था. आप इंजॉय कीजिए गीत.

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

102.6 FM पर दिल की तराने, गाने नए पुराने, मैं निशा हूँ आपके साथ में और बात हो रही है संगीत के जादूगर नौशाद साहब की। बॉलीवुड और भारतीय संगीत जगत में नौशाद जी का नाम ना किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज 5 मई है और आज नौशाद साहब की पुण्यतिथि है और 25 दिसंबर के दिन इनका जन्म हुआ था लखनऊ में। और शुरू से ही, मतलब बचपन से ही, इनके घर में संगीत पर पाबंदी थी। सोचिए आप, इनके अब्बा ने कहा था कि अगर इस घर में रहना है तो संगीत को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन नौशाद साहब ने संगीत के लिए घर छोड़ दिया, भागकर सपनों के शहर मुंबई आए और कुछ एक दो दिन के लिए अपने किसी परिचित के यहाँ पर रहे, लेकिन मामला जमा नहीं तो फुटपाथ पर ही रहना शुरू कर दिया, मतलब वहीं अपना ठिकाना बना लिया। और यहाँ पर एक बड़े ही अच्छे कलाकार की नज़र उन पर पड़ी और 40 रुपये महीने की तनख्वाह पर उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया। बस इसी तरह नौशाद साहब की स्ट्रगल की जर्नी मुंबई के फुटपाथ से शुरू हुई थी। शुरू में 40 रुपये मिलना शुरू हुए, उसके बाद 60 रुपये, और फिर जब पहली फिल्म में इन्होंने संगीत दिया, प्रेम नगर नाम की वो फिल्म थी, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई। सोचिए एक आर्टिस्ट को कैसा लगता होगा, है ना। और जब अगली फिल्म आई इनकी 1944 में रतन नाम से, तो ये फिल्म चल निकली और यहीं से चल निकली थी इनकी संगीत की गाड़ी। आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इन्हीं के म्यूजिक दी हुई एक फिल्म का गाना लेकर आई हूं, लीडर। 1964 में ये फिल्म आई थी। एंड वंस अगेन देयर इज दिलीप कुमार साहब के साथ में वैजयंती माला इन द लीड रोल, और नौशाद साहब ने फिल्म का संगीत दिया था, साथ में शकील बदायूनी के बोल है। और इस फिल्म का ना एक बड़ा ही सुंदर पेट्रियाटिक गाना है जो कभी नहीं भूल सकते, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। लेकिन फिलहाल ये नहीं, एक बड़ा ही सुंदर गाना लता जी की आवाज में आपके लिए लिख रही हूँ, साथ में रफी साहब भी हैं। एंजॉय द सॉन्ग ओनली ऑन 102.6 FM।

102.6 FM, दिल के तराने, गाने नए पुराने सुन रहे हैं आप। मैं हूं निशा आपके साथ में और नौशाद साहब की आज हमने बात की, और जो तीन खास रेट्रो गीत इस पूरे प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं वो तीनों ही आज मैंने तो नौशाद साहब के ही चुने थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। नौशाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने न सिर्फ फिल्मों में उमदा संगीत दिया था बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब, सुरैया, शमशाद बेगम जैसे गायकों को पहला मौका भी दिया था। भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजे जाने वाली पहली फिल्म मदर इंडिया का संगीत भी नौशाद जी ने ही दिया था। और इसके अलावा अगर इनकी और फिल्मों के नाम बताऊं तो बैजू बावरा, कोहिनूर, पाकीजा, गंगा जमुना, बाबुल, मेरे महबूब, वंडरफुल फिल्में, और मतलब एक से बढ़कर एक, मुगले आजम फिल्म में इन्होंने संगीत दिया था। 1981 में इन्हें दादा फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2005 में आई फिल्म ताजमहल इनके करियर की आखिरी फिल्म थी, और 5 मई का ही वो दिन था जब इस दुनिया से अलविदा कहा था इन्होंने। और आज 5 मई ही है, आज इन्होंने हमने इनके संगीत को याद किया, सुना, इंजॉय किया और फिर से अपनी मेमोरी में ताज़ा कर लिया। फिलहाल साथी फिल्म का गाना लेकर आई हूँ। 1968 में फिल्म आई थी जिसमें संजीव कुमार थे, राजेंद्र कुमार थे, साथ में वैजयंती माला थी। इसका संगीत बहुत पसंद किया था लोगों ने, तो बस एक खूबसूरत गाना आपके लिए।

हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर हाजिर है।

102.6 दिल के तराने, गाने नए पुराने मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इन खूबसूरत गीतों के साथ में। 10:05 से मैचलेस म्यूजिक आवर जरूर सुनिएगा। पूजा होंगी आपके साथ। कीप लिसनिंग एफएम रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी भी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: विधानसभा चुनाव में दो तिहाई बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रचा है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर हार्दिक बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के साथ एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व कहा है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणाम

के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद कल फुजेरा तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने संघर्ष विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कल देश की ओर आ रही 12 बैलिस्टिक मिसाइलों, 4 ड्रोन्स और 3 क्रूज मिसाइलों को रोक दिया गया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर 4 गेंदों में 4 विकेट खोकर इसे हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए थे। रियान रिकल्टन को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: They are movies and then they are legends. Well, this movie was a par excellence movie. A movie from way back in 1963. Tere ghar ke saamne, Devanand Saab, Nutan Ji, looking exceptionally gorgeous, both of them. And what a movie, what songs, what love, you fall in love just looking at them. Songs like Sun Le Tu Dil Ki Sada and Tere Ghar Ke Saamne, Dekho Roota Na Karo, those kind of songs which have a masti of a different trend. Well, Vijay Anand was who directed this movie. A simple movie, all about an architect who falls in love with a girl whose father is his father's business rival. Well, both the set of parents assign him to build their house. And he does the unthinkable. What does he do and does he get his girl is what the movie's all about. And you have to see it to believe it. For all the smiles and for a walk in the past. Go ahead, see this movie. This is beautiful. And trust me, you will fall in love with it, just like I did. The yesteryear movies had a charm, a magic, a beauty of their own. And right now, I got something of my own, and that is a break. So stay close, stay tuned. I'll be back on this gorgeous channel, which is called FM Rainbow. And you are tuned in to the Matchless Music Hour.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां

गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, इसको सफल बनाएं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेशक अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है, वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकषगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्य विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्य विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर बिहार के

गया पहुंच रहे हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी होगा। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली आएंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजारा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 77,103 पर और निफ्टी 67 अंक गिरकर 24,053 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: लाइफ बिंदास, जरा रेडियो स्विच तो करो। यस, और आपने तो स्विच कर रखा है ऑलरेडी, और आकाशवाणी रेडियो एफएम रेनबो के साथ जुड़ गए हैं। तो भाई आपकी लाइफ तो बिंदास होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर हर घंटे हर मिनट सब कुछ नया, ताजा और बेहतरीन होता है। जैसे इस घंटे बॉलीवुड की ताजा तरीन और बेहतरीन खबरें बबिता त्रिपाठी के साथ, यानी बीटी विद बीटी शुरू हो चुका है। आपको अंदाजा भी है,

महफिल सच चुकी है बॉलीवुड की, और बॉलीवुड की ढेर सारी अपडेट्स के साथ आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। और ढेर सारी बॉलीवुड की अपडेट्स में बहुत कुछ छुपा है आपके फेवरेट स्टार्स के बारे में, क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सब अपडेट यही होगी इसी घंटे। और बॉलीवुड के गाने तो मजेदार एक से एक बिंदास बज ही रहे हैं।

डार्लिंग, आपको बता दूं यहाँ बॉलीवुड की खबरों के साथ साथ आपके लिए जो कुछ भी बॉक्स ऑफिस पर घटित हो रहा है वो भी बताया जाएगा। और आप सबको इंतजार भी रहता है भैया फिल्म कौन सी चल रही है, अगर देखने जाना है तो, नहीं जाना है तो, वो भी तो डिसाइड करना होता है। आपको बता दूं कि अगर आप इस समय ध्यान आपका दिलाना चाहूंगी कि बॉक्स ऑफिस पर क्या चल रहा है, राजा शिवाजी चल रही है, एक दिन चल रही है, भूत बंगला जैसी तमाम मूवीज हैं तो सही, बट चल कितना रही है ये गारंटी बहुत ज़्यादा हम नहीं ले सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि संडे वनडे में थोड़ा सा अच्छा चल जाती है, परफॉर्म कर देती है, उसके बाद क्या हो जाता है जाने पता नहीं। और कुछ कुछ मूवी जब चलना होता है तो उनको संडे मंडे किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं रहता, वो तो बस चल ही पड़ती हैं। अब इस समय राजा शिवाजी, भूत बंगला और एक दिन जैसी कई फिल्में हैं, लेकिन कितना कलेक्शन किया अगर आप जानना चाहते हैं तो राजा शिवाजी काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि रितेश देशमुख ने बनाई है, पहली बार डायरेक्ट किया है और काम भी कर रहे हैं, कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो सभी को इंतजार उनकी इस फिल्म का था। और रही बात भूत बंगला की, तो काफी कुछ हम इस पर बात कर चुके हैं, ये पहले ही रिलीज हो चुकी है, लेकिन हाँ शुरुआती दिनों में इस मूवी यानी राजा शिवाजी ने 1 मई को जो मूवी रिलीज हुई उसकी बात करती हूँ, उसने अच्छी कमाई की और अभी शुरुआती दिन ही है, अभी बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं गया है। लेकिन हाँ, अगर संडे आ जाता है तो हमें थोड़ा नापना तोलना होता है कि संडे में क्या हुआ, आखिर 12 करोड़ की कमाई कर ली है, बहुत है, 39.5 करोड़, आप 50 करोड़ अब तक की कमाई है। अब आगे क्या होगा तो ये तो आने वाली फिल्में कुछ रिलीज होंगी तो पता चलेगा, या फिर इसी तरह से कुछ चलती रही तो अच्छी खासी यानी ठीक ठाक कमाई कर ही सकती है। एक दिन रिलीज से पहले तो काफ़ी सुर्खियों में थी, एक दिन मूवी की बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कमाल इस मूवी ने अभी तक नहीं दिखाया है। संडे को 90 लाख की कमाई और इसके बाद 20 लाख की, और अब तक टोटल 3.25 करोड़ की ही कमाई ये मूवी कर चुकी है, कर पाई है। और रही बात भूत बंगला की, तो अब तक 144.25 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है। और रही बात आपके सवाल की, तो वो आएगा लगभग 11:30 बजे, जो आपको बना सकता है बॉलीवुड सरताज, और उसका जवाब देने के लिए आपको बस सुनते रहना होगा मेरी बातों को बहुत ध्यान से। मैं कौन? बबीता त्रिपाठी, शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स, तो सुनते रहिए ध्यान से बीटी विद मजेदार सॉन्ग्स। और रही बात गाने की, तो मैं जो गाना चुनाने वाली हूँ वो ये वाला है, वो वाला गाना जो अभी तक थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा था ना, उसका मैंने मुंह बंद करा दिया है, क्योंकि मुझे वो गाना बाद में चलाना है।

देखिए, समझ नहीं है तो समझ आ जाएगी और मुझे तेरा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं हमारी विकी कौशल। क्यों और किसे वो अब आप जान लीजिए। थ्री इडियट्स की सीक्वल बन रही है, आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता तो बता देती हूँ। और इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है और ये कन्फर्म वाली न्यूज है, थ्री इडियट्स की सीक्वल तो पक्का आएगी। लेकिन किस नाम से आएगी और कौन कौन होगा, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो हम भी बताने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। विकी कौशल को फोर इडियट्स की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आ गई है। यस, फोर इडियट्स आएगी, जो सीक्वल थ्री इडियट्स की होगी उसका नाम होगा फोर इडियट्स। और विकी कौशल को लिए जाने की बात चल रही है और विकी कौशल को वो स्क्रिप्ट भी पसंद आ चुकी है। वैसे संजू और डंकी जैसी मूवी राजू हिरानी के साथ उन्होंने की है और अब इस फिल्म को बनाने के लिए, मतलब इस फिल्म के साथ जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे हैं विकी कौशल, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी चौथे इडियट यही होंगे। और अब जब ये कन्फर्मेशन हो चुकी है कि फोर इडियट्स शामिल होने के लिए एकदम एडवांस स्टेज पर हैं ही, तो ऐसे में विकी कौशल भी बहुत उत्सुक है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसी खबरें उड़ती हुई आ रही हैं कि इस मूवी में उनको लिया जा सकता है, इस पर बात चल रही है। आमिर खान, आर माधवन, शर्मन जोशी, मशहूर तिगड़ी ऑलरेडी है इस मूवी में। अब चौथा इडियट कौन होगा, इस पर बात चल रही है और मोस्ट प्रोबली विकी कौशल हो सकते हैं। राजकुमार हिरानी ही निर्देशन कर रहे हैं फिल्म में। अभी फिल्म की स्टोरी लिखी जा रही है और मतलब अभी काफ़ी कुछ इसमें लिखा जाना है और काम किया जाना है। प्रोडक्शन, जो पोस्ट प्रोडक्शन होता है, प्री प्रोडक्शन होता है, उस पर काम चल रहा है। पोस्ट प्रोडक्शन फिल्म बनने के बाद होगा, ठीक है? तो अभी उस पर काम चल रहा है और अभी देखते हैं कि विकी कौशल फाइनल होते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, लगभग फाइनल हो चुके हैं और हम सब की एक्साइटमेंट बढ़ती रहेगी क्योंकि ऐसी ऐसी न्यूज़ जब आती रहेंगी। अभी तो हीरोइन कौन होगी वो भी न्यूज़ आनी बाकी है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे शूट होगा। 2027 के सेकेंड हाफ में क्या पता ये फ्लोर पर जाए, मतलब शूटिंग शुरू हो, और तब जो भी न्यूज़ आएगी आप तक पहुँचती जाएगी। आप बस ऐसी उत्सुकता बना कर रखिए, बॉलीवुड रील्स सुनते रहिए, सारी न्यूज़ आप तक पहुंचती रहेगी, गारंटी है। फिलहाल चल रहा है बीडी विद बेटी, बॉलीवुड रील्स, बबीता त्रिपाठी के साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

ऐसे ही फिल्मों का हल होता है, बनने से पहले पता ही नहीं होगा उसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन जो मेकर्स हैं, प्रोडक्शन के लोग हैं, एक्टर्स हैं, जो भी जुड़े हुए लोग हैं, वो होठ घुमाते होंगे, सीटी बजाते होंगे और जोर से बोलते होंगे भैया ऑल इज वेल। और ऐसा ही कुछ पेडी के बारे में बात कर लेते हैं, ऐसा ही हाल हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर रिलीज डेट में बदलाव भी हो रहा है और सुर्खियां इसलिए भी बटोरी जा रही कि इसमें आइटम सॉन्ग में कौन होगा। और अब भी एक ऑल वेल करके अभिनेत्री का नाम जुड़ रहा है। पहले नाम जुड़ा था मृणाल ठाकुर का और ये खबर आई थी कि पेडी में वो ठुमके नजर लगाते हुए नजर आएंगी, मतलब आइटम सॉन्ग करती हुई नजर आएंगी, लेकिन ऐसा हो न सका। और आलम ये है कि ये एक्ट्रेस अब चेंज हो गई हैं, खूबसूरत हसीना कोई और हैं जो एक आइटम सॉन्ग करने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर है पेडी और मशहूर साउथ अभिनेता रामचरण कि इसमें हीरो होंगे और जानवी कपूर होंगी हीरोइन, लीड रोल में ये दोनों होंगे। और जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है तब से ये मूवी चर्चा में है। तो अब आइटम सॉन्ग में कौन होगा, जिसकी तलाश अब पूरी हो चुकी है पैन इंडिया बनने वाली मूवी की, तो पैन इंडिया सिनेमा की बज गर्ल श्रुति हसन इस फिल्म में हाई एनर्जी स्पेशल डांस करती हुई नजर आने वाली है, जिसकी शूटिंग चल रही है। कहने का तात्पर्य ये, अब नो कन्फ्यूजन, ऑल इज वेल। और अब इसी बात पर एक आइटम सॉन्ग सुन लीजिए और फिर लौट कर आइए। टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है, आपके लिए सवाल भी लेकर आना है जिसका जवाब देंगे तो आप बन जाएंगे बॉलीवुड सरताज, और नहीं भी तो भी आपका नाम शामिल तो जरूरी होगा, है ना। अब इस लड़के की बात सुनते हैं।

हर साल मेट गाला का आयोजन होता है, आप सबको पता होगा, और दुनिया भर से मशहूर हस्तियां फैशन का जलवा बिखेरती हैं वहां पर। और इस बार न्यूयॉर्क में जो जलवा बिखेरा गया हमारी तरफ से, मतलब इंडिया की तरफ से, वो कुछ अनोखा ही था। पहली बार डेब्यू किया करण जौहर ने, और क्या डेब्यू किया है। आप सबको बता दूं कि उन्होंने राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स हैं वो अपने परिधान में दिखाई, और वो कुछ खास अंदाज में दिखाई गई। और राजा रवि वर्मा के बारे में अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, भारतीय चित्रकार थे और पेंटिंग्स के से सस्ते लिथोग्राफ आम लोगों तक उन्होंने पहुँचाकर एक चित्रकार के तौर पर उन्होंने बहुत नाम कमाया, और सार्वजनिक हस्ती के तौर पर उन्होंने अपने प्रभाव को बढ़ाया। और हिंदू देवी देवताओं के उनके धार्मिक चित्रणों और भारतीय महाकाव्यों व पुराणों पर आधारित उनके कार्यों को काफ़ी सराहना मिली। और अब इन पेंटिंग्स को जब दिखाया गया परिधान में तो अलग ही छाप उसमें नज़र आई। अब इसमें क्या कुछ खास था आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। पहली बात तो चर्चा इस बात की भी है कि करण जौहर ने डेब्यू किया है यहाँ पर रेड कारपेट पे, और उन्होंने क्या जलवा बिखेरा, फैशन का जलवा। और उसके बाद दूसरी खबर ये, जो उनकी जो डिज़ाइन है

0: वो मनीष मल्होत्रा ने की, और इसमें कुछ ख़ास जो थी वो बात आपको बता देती हूँ। कॉस्ट्यूम आर्ट, ये इस कार्यक्रम की थीम थी, और ड्रेस कोड फैशन इज आर्ट था, और इसी वजह से ये चीज़ें दिखाई गईं। फ्रेम्ड इन इटर्निटी इस नाम का ये आउटफिट था जो करण जौहर ने पहना था। 53 साल के करण जौहर स्ट्रक्चर्ड पावर शोल्डर वाली विंटेज जैकेट पहने नजर आए, और इसके ऊपर पेंट किया हुआ था एक केप जो लगभग 6 फीट का लंबा था, और बहुत बारीक कारीगरी की गई थी जिसे 80 से ज़्यादा कारीगरों ने, एक टीम की टीम ने 85 दिनों में इसे तैयार किया था। मतलब ये कि ये जो आउटफिट था ज़बरदस्त था, इसकी चर्चा गर्म है। और इसी तरह से भारतीय जो सिनेमा है उसकी भी चर्चा गर्म है, और इसके बाद आप सबका जो टाइम है वो भी आ चुका है, तो मुझे लगता है कि मैं गाना सुनवाने की बजाय एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ और लौट कर आती हूँ, और आपके लिए सवाल बताती हूँ जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: तो दीजिए आप बिल्कुल भी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: तो हमारा कंप्यूटर कह रहा था कि अब मैं बता देता हूँ एक बार फिर से कि यह आकाशवाणी है और आप सब सुन रहे हैं FM रेडियो। आपके साथ हूँ FM रेनबो में बबीता त्रिपाठी। तो बबीता त्रिपाठी अभी क्या कहने वाली है, आपके लिए सवाल लेने वाली है और सवाल जो जिसका जवाब आप देंगे तो बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं, हमसे बात करने का मौका मिल सकता है। और उसके लिए आपको करना क्या है, व्हाट्सएप मैसेज ही तो करना है और सवाल भी क्या ही सवाल है, छोटा सा सवाल जो मैं ऑलरेडी जिसका जवाब बता चुकी हूँ। एक मूवी का नाम बताया था मैंने जो आने वाली है, थ्री इडियट का सीक्वल, उसका नाम क्या है? वैसे थ्री इडियट के सीक्वल का नाम क्या होगा, यही तो आज का सवाल है। और आपको आंसर देने से पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर जरूर जरूर लिखना है और उसके बाद आंसर लिखना है और भेज देना है। आपको तो पता है नंबर, तो एकदम पता है क्या नंबर है, 9868107070, जिस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है और भेज देना है। सही जवाब गलत होगा तब भी आपका नाम शामिल जरूर होगा आपके एफर्ट्स के लिए। और रही बात बॉलीवुड सरताज की, तो बात तो जरूर होगी बॉलीवुड सरताज की। आज देखते हैं बॉलीवुड सरताज कौन बनता है, आंसर तो दीजिए।

तो वही हिमेश रेशमिया की अगर बात करें तो उनका एक अलग तबका है जो उनके गाने को बहुत पसंद करता है, उनकी आवाज़ को बहुत पसंद करता है, और उनके गाने की ख़ास बातें जो होती हैं, उनके आवाज़ की कुछ ख़ास बातें हैं वो पसंद करता है, और हर तरह के गाने के लोग, पसंद करने वाले लोग मिल ही जाते हैं। और हिमेश रेशमिया की बात करें तो उनके जो गाने आते हैं तंदूरी नाइट्स, मतलब आपको बताया तत् ऐसा कुछ करके वो गाते हैं, और अलग अंदाज में गाते हैं, अलग अंदाज में गाने के बोल भी होते हैं, जैसे हुक्का बार और तंदूरी नाइट्स, लॉन्ग ड्राइव, ऐसे तमाम झलक दिखला जा जैसे गाने जो कि चार्ट बस्टर्ड थे और उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है अभी तक, और ये हमेशा यादगार रहते हैं। अब जब उनका नया गाना आ रहा है तो खबर तो बननी है, और हम सबको भी देखना ही होगा ना कि आखिर क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं। इस बार शराब, मतलब समझ नहीं आया हुक्का बार शराब ऐसे गाने वो क्यों बनाते हैं। चलिए उनकी पसंद है, लेकिन उनके गानों को अगर हम पसंद कर रहे हैं तो ये हमारी भी पसंद है, शायद इसी वजह से वो हमारी पसंद का ख्याल रखते हैं। और देखिए एक गाना जिसका टीज़र आज रिलीज होने वाला है, उनका आने वाला है, और फिल्म का गाने का टाइटल मैंने आपको बता ही दिया है, और जल्दी ये गाना आपको सुनने को मिलेगा। कोरियोग्राफ किया है इस गाने को पीयूष साजिया ने, और अब जल्द ये मूवी, ये गाना आपको सुनने को मिल सकता है, और पैन इंडिया इस म्यूज़िक को दिखाए, मतलब आपको सुनने को मिलेगा और रिलीज़ किया जाएगा इस गाने को। और अब इस गाने को तो नहीं, लेकिन उनके एक गाने को सुन ही लेते हैं। समझ तो गई होंगे किस गाने की मैं बात कर रही हूँ, चलिए सुन लेते हैं। सुनते रहे बीटी विद बीटी, आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड रील्स बबिता त्रिपाठी के साथ।

वैसे आप सबका प्यार आपके मैसेजेस के थ्रू दिख रहा है, और अगर आपने सवाल अभी तक नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, एक मूवी आने वाली है थ्री इडियट्स की सीक्वल नाम से, मतलब नाम तो उसका कुछ और ही है, थ्री इडियट्स का की जो सीक्वल आ रही है उस मूवी का नाम क्या है, यही तो आज का सवाल है और यही मैंने आपसे पूछा है, जिसका जवाब आपको देना है। और व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद अगर आप का नंबर चुना गया, मतलब नाम चुना गया, तो क्या पता आज बॉलीवुड सरताज आप ही हो, आपसे बात करने का मौका मिल जाए मुझे। 9868107070 पर व्हाट्सएप मैसेज करके अगर अभी तक आपने आंसर नहीं दिया तो दे दीजिए, क्या पता बॉलीवुड सरताज आप ही हो। और इस गाने के बाद लौट कर आऊंगी तो आप सबके नाम जरूर शामिल करूंगी जिन्होंने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया, लेकिन हाँ उन्हीं का जिन्होंने सबसे पहले अपना नाम लिखा, अपने शहर का नाम लिखा, उसके बाद जवाब दिया है। फटाफट दीजिए 9868107070 पर अगर आपने अभी तक जवाब नहीं दिया।

देखिए, ये हमारी और आपकी परीत ही है कि आप मैसेजेस करते हैं और हम उन सभी मैसेजेस को शामिल भी करते हैं, जबकि बॉलीवुड सरताज तो किसी एक को ही बनाना है। दिव्यांशु यादव, सूर्य नारायण यादव कहाँ से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं। विजय कुमार शालीमार बाग से लिख रहे हैं। तरुण कुमार सूरजकुंड से लिख रहे हैं। सलीम मेरठ से लिख रहे हैं। रोहित श्रीवास्तव दिल्ली से। और मोहम्मद राशिद कहाँ से लिख रहे हैं, ये जगतपुरी से लिख रहे हैं। और दिव्यांशु यादव का नाम ले चुकी हूँ। प्रवीण चौहान का एमपी से मैसेज आया है। बसंत तोमर का मेरठ से। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से। हरीश गौर मेरठ से। और आसिफ का मैसेज मेरठ से आया है। मोहम्मद फुरकान सियाल से। पूरा मेरठ मुझे सुन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नौशाद चौधरी दिल्ली से लिख रहे हैं। चितरंजन सक्सेना का भी मैसेज दिख रहा है मुझे, कहाँ से, नोएडा से। और इस बार मेरा मैसेज शामिल करें, ये बात आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैसेज तो हमेशा शामिल होता है। इरशाद, और ये कहां से लिख रहे हैं, राजस्थान से। और हैरी सिंधु भटिंडा से लिख रहे हैं। शिव मेरठ से लिख रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के जवाब सही है, लगभग सभी के जवाब सही हैं। उमेश कुमार खयाला से। और दानिश खतौली से लिखते हैं। और कांट से मोहम्मद फुरकान। विजय कुमार कुशीनगर से। देवेंद्र कहां से, अंगलोंग ये कहाँ पर है भाई, ये कहीं से तो लिख रहे हैं। और ये पटना बिहार से मैसेज कुंदन का दिख गया है। सुदर्शन मुखिया अनीता मुखी का दिल्ली से। और हरप्रीत का मैसेज भी दिख रहा है मुझे, लेकिन उसके आगे की बातें लंबी हैं तो जगह का नाम नहीं दिख रहा है। ऋषु कटारिया, पवन कटारिया पंजाब से लिख रहे हैं। और जो मैसेजेस हैं उनमें अगर आपने अपना नाम पहले लिखा होता तो शायद ज़रूर शामिल हो जाता। आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ, आप सबका बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यार से मैसेजेस इतने सारे ढेर सारे किए हैं। अब इसमें से कोई एक बॉलीवुड सरताज बनेगा, आप नहीं बने तो नेक्स्ट टाइम जरूर बनेंगे। आप कोशिश करते रहिए, इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो सुनते रहिए। अब बॉलीवुड सरताज को मैं ढूंढ कर लाती हूँ और अपने मैसेजेस अगर आप चाहते हैं कि शामिल हो तो प्लीज, अगर आप बॉलीवुड सरताज भी बनना चाहते हैं तो नेटवर्क में जरूर रहिए और अलर्ट रहिए, ठीक है। लौट कर आती हूँ।

0: आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ बीटी विद बीटी। और अब आपका हुआ इंतजार खत्म क्योंकि हमारे साथ हैं बॉलीवुड सरताज। और आज बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं वो खुद बताएंगे। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं इरशाद बोल रहा हूँ, राजस्थान से।
0: इरशाद राजस्थान से बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी रेनबो पर। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैडम।
0: राजस्थान का माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, कुछ बताएंगे?
1: मौसम तो अभी बहुत तेज गर्मी है, शाम को बारिश आ जाती है तो मौसम वापस ठंडा हो जाता है।
0: अच्छा, डेली आपको आपके यहाँ बारिश हो रही है?
1: हाँ, वो शाम को मौसम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है।
0: अच्छा, गड़बड़ हो जाता है, ये तो अच्छी बात है ना, वो अच्छा हो जाता है मुझे लगता है जब।
1: हाँ, वो शाम को मौसम बहुत सुहाना हो जाता है।
0: बहुत अच्छा।
1: दिन भर तो गर्मी रहती है बहुत तेज।
0: ओके, तो फिलहाल इस गर्मी में आपको ठंडक दे रहा है आकाशवाणी रेनबो कि नहीं?
1: जी हाँ जी हाँ, इस वक्त तो बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो इस वक्त यहाँ के जो FM के जो सॉन्ग सुनते हैं ना, उससे बहुत ठंडक मिलती है।
0: अच्छा, तो चलिए आज बॉलीवुड सरताज आप बने हैं क्योंकि आपने सही जवाब दिया है। एक बार फिर से ऑन एयर आपसे पूछ लेते हैं कि आने वाली थ्री इडियट्स मूवी के सीक्वल का नाम क्या है?
1: उसका सीक्वल का नाम फोर इडियट है मैडम।
0: फोर इडियट, कांग्रेचुलेशंस आज के बॉलीवुड सरताज बनने के लिए इरशाद।
1: धन्यवाद, थैंक यू मैडम।
0: तो कैसा लग रहा है आपको आकाशवाणी पर बात करके?
1: बहुत अच्छा लग रहा है मैडम।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं टेलर का काम करता हूं मैडम।
0: अच्छा, तो
1: मेरे क्या दिन भर FM रेनबो चलता ही रहता है।
0: ओ, FM रेनबो ही चलता है पूरे दिन?
1: जी हाँ मैडम।
0: तो सारे शोज अच्छे लगते हैं, एंजॉय करते हैं आप?
1: जी हाँ, एंजॉय करता हूं, बहुत अच्छे लगते हैं शो आपके, जिसमें बॉलीवुड सरताज तो बहुत बहुत फेवरेट है मेरा।
0: चलिए, बॉलीवुड सरताज
1: मैसेज करता ही रहता हूँ, मेरे कई बार नंबर आता ही नहीं है।
0: चलिए कोई बात नहीं, आज आपका नंबर आ ही गया, मतलब आप ये बता सकते हैं लोगों को कि अगर आप कोशिश करते रहेंगे तो बॉलीवुड सरताज जरूर बनेंगे।
1: हाँ हाँ, ये बात सही है।
0: और कुछ कहना
1: चाहेंगे? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मैडम।
0: ये क्या बात कही है आपने। और कुछ कहना है इरशाद सबको, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता आपको ऑन एयर आने का।
1: जी हाँ जी हाँ, ये तो प्रोग्राम ही आप सुनो, बहुत मजा आता है। क्या
0: और जिंदगी में क्या रखा है ना, एंजॉय करते रहना चाहिए।
1: एंजॉय करते रहो जिंदगी, बस कितने दिन की, 4 दिन की जिंदगी एंजॉय करो।
0: बिल्कुल, चलिए इसी बात पे इरशाद का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और कांग्रेचुलेशन एक बार फिर से बॉलीवुड सरताज बनने के लिए। बाय
1: बाय।
0: तो ये थे इरशाद आज के बॉलीवुड सरताज। और जनाब, अब बबीता त्रिपाठी को कहना होगा टाटा बाय, क्योंकि आप भी पूजा आनंद आ जाएंगी प्लेट को लेकर, और उन आपके साथ रहेंगी 12:05 से लेकर 1 बजे तक, और 1:05 पर बबीता त्रिपाठी एक बार फिर से हाजिर होंगी रेनबो हेल्पलाइन लेकर। और रेनबो हेल्पलाइन में आपको पता है कि आप ही के काम की बात होती है, और डिफरेंट टॉपिक्स पर बात होती है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स के साथ बात होती है। आज का टॉपिक, जैसे अभी गर्मी की बात हो रही थी, तो द साइलेंट स्कॉच, वॉट हीट वेव्स डोंट टेल यू, ऐसा भी है क्या? मुझे ये जानना है कि हीट वेव्स से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हीट वेव्स नहीं बताती हैं और हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए इस पर हम राय लेंगे किसकी, एक्सपर्ट की, उनसे जानेंगे कि आखिर हीट वेव्स क्या हमें नहीं बताती हैं। कृष्ण एस वत्स ये हैं जो कि आज के मेहमान होंगे, और ये कौन है? मेम्बर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। तो इनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि हीट वेव्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं बताती हैं, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वो जानें। आप अपने सवालों के साथ बिल्कुल रेडी रहिएगा, इस अवसर को बिल्कुल मिस मत करिएगा। जानिए हीट वेव्स से किस तरह से छुटकारा पाएं और इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो फिलहाल 1 बजे तक इंतजार कीजिए, उससे पहले प्ले इट कूल में कूल कूल गाने सुनिए, वेस्टर्न म्यूजिक एंजॉय कीजिए। फिलहाल बबीता त्रिपाठी से इस टाटा बाय, लौट कर आती हूँ 1 घंटे बाद। बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस लियो कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरू मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉ अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुच्चेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद

बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमरीका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के CR पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट

दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़ककर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी पर समय है आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन का। और आज आपके साथ बबिता त्रिपाठी और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे जो एक खास टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं हमेशा की तरह। और आज का जो टॉपिक है ना, हम सब से जुड़ा हुआ है। हम सब इस समय गर्मी से परेशान हैं, हम सब लू से परेशान हैं। हम सबको कॉमन बातें पता है कि गर्मी बढ़ती जा रही है, लू चल रही है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी है, जैसे धूप में कम निकलना है, पानी खूब पीना है, छतरी लगानी है, सनग्लासेस का इस्तेमाल करना है, सनस्क्रीन लगाना है, जैसे तमाम चीजें तो हम सबको पता है। लेकिन क्या हमें पता है कि ये जो हीट वेव्स है ना, कुछ और भी इफेक्ट डाल रही हैं हम पर भी और हमारे एनवायरनमेंट पर भी, और हमें उनके बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रह सके। और वो जो अवेयरनेस है उसके लिए तो किसी खास एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। लीजिए, हाजिर हैं आज हैं श्री कृष्ण एस वत्स हमारे बीच, जो कि है मेंबर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, और वो आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो सबसे पहले आकाशवाणी रेनबो पर श्री कृष्ण एस वत्स जी का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आभारी हूँ
1: जी। तो आप सब अपने सवालों के साथ कब तैयार होंगे? हम तो बिल्कुल रेडी हैं। आप सब अपने सवाल भेज दीजिए फटाफट, क्योंकि आपका जानना, आपका अवेयर रहना आप ही के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो फोन कीजिए 2342-1080 या 2342-1084 पर, या फिर आप चाहिए तो सिंपली आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपना सवाल लिखकर। नंबर है 9868107070 पर। अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए।

0: बिल्कुल हमें छांव छांव में ही रहना है, कोशिश तो यही करनी है कि धूप में ना जाएं, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है, कई बार ऐसे काम पड़ जाते हैं जब हमें बहुत तेज धूप में निकलना, हमें जाना ही पड़ता है किसी भी काम से, किसी भी जरूरी काम से, तो ऐसे में बहुत ज्यादा हेल्थ पर असर डाल सकती हैं ये गर्म हवाएं, और ऐसे में साइलेंटली वो बहुत कुछ कर रही होती हैं जो हमें नहीं पता होता है, और ये क्या काम कर रही होती हैं ये गर्म हवाएं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, ऐसे तमाम सवाल आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हैं, और इन सब का जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं एक्सपर्ट श्री कृष्ण एस वत्स, जो कि है मेंबर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में, तो उनसे हम ये सभी सवालों के जवाब लेंगे। आप अपने सवाल फटाफट भेज दीजिए, वैसे आने शुरू हो गए हैं, आप फोन मिला सकते हैं या चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फोन मिलाने के लिए नंबर है 2342-1080 या 2342-1084, व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए 9868-1070 70। तो सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट से पूछते हैं कि भाई ये हीट वेव्स मतलब क्या है, इसका कितनी खतरनाक और कब खतरनाक हो सकती हैं ये?
1: भारत देश जो है वो विविधता से भरा देश है, और ना इसका लंबा चौड़ा भौगोलिक विस्तार है
0: जी,
1: और उस विस्तार के हिसाब से हर क्षेत्र की अपना औसत तापमान होता है। जैसे तटीय प्रदेशों का औसत तापमान और पहाड़ी क्षेत्रों का औसत तापमान अलग होता है
0: जी।
1: तो जो ये हीट वेव की बात होती है, गर्म हवाओं की बात होती है, तो उस जगह के तो औसत तापमान से जुड़ा रहता है। अगर उस जगह का औसत तापमान 30 डिग्री है और उससे आप 4.5 डिग्री ज़्यादा अगर वहाँ तापमान है और 6.4 से कम है, तो वो एक आप हीट वेव की स्थिति होती है, और अगर 6.4 से ऊपर होती है तो वो एक है ना अति हीट वेव की स्थिति बनती है। तो इसका संबंध उस किसी भी जगह के औसत तापमान से जो उस से जो वृद्धि होती है उससे होता है।
0: अच्छा।
1: और फिर एक सीधा साधा है कि हम एक 45 डिग्री के बाद अगर पहुंच जाए गर्मी, तो फिर वो एक एब्सोल्यूट हीट वेव होता है।
0: ओके।
1: तो वो एक दूसरी स्थिति बनती है जहां एक पूरा जो थ्रेशहोल्ड होता है वो निर्धारित होता है, नहीं तो बाकी जगह जो है वो औसत तापमान से ये जुड़ा रहता है।
0: ओके।
1: और इसका और भी एक होता है कि कम से कम 2-3 दिन ये चले।
0: अच्छा।
1: इसका स्पेल होना चाहिए, 2-3 दिनों का स्पेल होना चाहिए। तो ऐसा होता है किसी एक दिन हुआ, तो वो एक दिन की जो स्थिति है वो हीट वेव की स्थिति नहीं कहलाती है, कम से कम 3 दिन। और अगर WMO का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर जब बात करें तो वो 5 दिनों की बात करते हैं। तो इसमें एक है कि एक समय सीमा होती है, 2-3 दिन 4 दिन चले, और जो वहाँ का औसत तापमान है उससे एक ज़्यादा 4-4.5 डिग्री से ऊपर बढ़ जाए तो हीट वेव की स्थिति होती है।
0: तो आपने बताया हीट वेव्स क्या हैं और ये कब खतरनाक हो जाती हैं, जैसा आपने बताया 2-3 दिन लगातार होने चाहिए या फिर 45 डिग्री से ऊपर
1: होने चाहिए तापमान, या तो तटीय जो वहाँ पर औसत तापमान है जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री औसत तापमान है, उससे अगर 4.5 डिग्री ज्यादा है।
0: अच्छा, उससे ज्यादा हो गया।
1: हाँ, तो फिर वो हीट वेव की स्थिति बनती है।
0: ये दिल्ली NCR में क्या रहेगा?
1: दिल्ली NCR में जैसे है कि मान लीजिए 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री आप 45 डिग्री जब पहुंच जाएगा तो वो आप हीट वेव की स्थिति कहलाएगी।
0: ओके।
1: क्योंकि अभी जो है मान लीजिए अगर दिल्ली का औसत तापमान होगा 37-38 डिग्री, तो 42.5 डिग्री से शुरू हो जाता है।
0: अच्छा।
1: और फिर 45 डिग्री वगैरह पहुंचने पर वो एक हीट वेव की स्थिति बन जाती है।
0: तो ये ज्यादातर मेरे ख्याल से रहती है और ये 2-3 महीने मुझे लगता है लगातार।
1: हाँ, वो बीच बीच में आते रहती है, कभी कभी वो बढ़ जाता है तापमान और वो 2-3 दिन 4 दिन। हाल के वर्षों में देखा गया है कि ये जो स्पेल है उसकी जो अवधि है वो उसमें वृद्धि होती है, वो हो रही है। पहले 1 दिन या 2 दिन होता था, अब 3 दिन 4 दिन और लगातार चलते रहता है।
0: बिल्कुल। तो और ये डिग्री बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है।
1: ये बढ़ जाती है, तो उस हिसाब से जब लगातार वो स्थिति रहती है। और दूसरी बात और भी कि दिन का तापमान और रात के तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अच्छा। पहले क्या था कि दिन का तापमान ज्यादा होता था और रात का तापमान गिर जाता था, तो शरीर को आराम मिलता था। जब रात में सोने समय आप आराम से सो सकते हैं, लेकिन अगर रात का तापमान में भी वृद्धि है और दिन का और रात के तापमान में अंतर कम है,
0: कम हो गया,
1: तो फिर सोने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। शरीर को जो आराम मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता,
0: और नहीं मिलेगा तो बीमारियां बढ़ेंगी,
1: उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर।
0: तो उससे पहले ही एक सवाल आता है कि जो अभी लिखकर भी बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, बैंगलोर से मुझे एक सवाल आया है, नाम इन्होंने लिखा है बिमल छेत्री। इन्होंने लिखा है कि गर्मी पड़ने के कौन कौन से मुख्य कारण हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है।

0: है ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा फ्यूचर हो, तो कारण पर सबसे ज्यादा हम फोकस करना चाहेंगे इस वक्त।
1: एक तो जो अभी ग्लोबल वार्मिंग का जो ट्रेंड है ना, जो वैश्विक स्तर पर है ना तापमान बढ़ रहा है
0: जी,
1: और इसके लिए तमाम तरह के अध्ययन भी हुए हैं, और यह माना जा रहा है कि हमारा जो तापमान है वो 1.5 डिग्री के आसपास है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आशियाना और बातें हो रही हैं कि क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए मी टाइम। जी हाँ, मी टाइम, जैसे मैंने जिक्र किया कि सुबह से रात तक घर और बाहर की जिम्मेदारियों के उस सिलसिले से थोड़ी सी छुट्टी, वो छुट्टी जो आप खुद को दे रही हैं, और इस छुट्टी में आपको किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है बल्कि आपको अपनी खुशी के लिए कुछ करना है। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात यह भी है कि महिलाएं अक्सर, उनकी थिंकिंग ये होती है कि वो सबको खुश रखने की सोचती है। घर परिवार में सबकी खुशी का ख्याल रखना महिलाओं को लगता है कि उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। मैं इसे गलत बिल्कुल नहीं कह रही हूं, लेकिन यहां ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी की खुशी का ख्याल रखना चाहती हैं, अगर आप अपने अपनों की खुशी का ख्याल भी रखना चाहती हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद को खुश रखें। अगर आप खुद खुश नहीं हैं, अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप चिड़चिड़ा महसूस कर रही हैं, परेशान हैं, बहुत इरिटेशन हो रही है, तो आप कैसे ही किसी और को खुश रख पाएंगी। और खुद को खुश रखने के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें करना जो आपको खुशी देती हो, और ये चीज़ें आप कर सकती हैं उस मी टाइम में जिसका जिक्र यहाँ पर हम लगातार कर रहे हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। यहाँ पर आशियाना बातें हो रही हैं कि क्यों बहुत ज़रूरी है मी टाइम महिलाओं के लिए। वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है मी टाइम, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अक्सर अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती हैं। और सबसे पहले इस बात को भी उन्हें सीखना और समझना चाहिए कि मी टाइम कोई लग्जरी नहीं है, कि बहुत बड़ी चीज़ है, कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि अरे आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक ज़रूरत है जो आपकी हेल्थ के लिए, आपके अपने आप के लिए बहुत ज़रूरी है। इसे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्यों ज़रूरी है मी टाइम? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मी टाइम से आपको मिल सकती है वो है मेंटल पीस। जब आप वो चीज़ें करते हैं जो आपको करना पसंद है तो स्ट्रेस कम होता है, एंग्जाइटी कम होती है, आपको मेंटल पीस मिलता है। इससे जो हमारी दिन भर की थकान होती है ना, वो भी दूर होती है। आप खुद के लिए वक्त निकाल पाती हैं, ओवर थिंकिंग से आप बचती हैं, आपका मन खुश होता है। और जब मन खुश होता है ना, तो आप न केवल प्रोफेशनली, पर्सनली, हर लेवल पर अच्छा महसूस करती हैं और ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जी पाती हैं।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं FM रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। और यहाँ पर बातें हो रही हैं कि आखिर क्यों ज़रूरी है महिलाओं के लिए मी टाइम, वो मी टाइम जो उन्हें मिल नहीं पाता है, वो मी टाइम जिसे वो खुद के लिए मांगने से भी कतराती हैं, क्योंकि उन्हें कई बार उसकी ज़रूरत समझ में नहीं आती। तो कई बार लगता है कि क्या ये सही होगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जब आप दूसरों के लिए, यानी कि दूसरों से मेरा मतलब ठीक है आपके अपनों के लिए ही बहुत कुछ करती हैं, तो वहाँ पर एक पॉइंट, एक ज़रूरत अपने लिए भी कुछ करने की है, और उसके लिए अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। मी टाइम क्यों मिलना चाहिए, हमने बात की इस बारे में। लेकिन आपको पता है, मी टाइम जब नहीं मिलता है तो क्या नुकसान हो सकते हैं? एक तो आपका चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आप माने या ना माने, जब बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपके सर पर होती हैं, आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हैं, तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, बर्नआउट, ये सारी फीलिंग्स मन में आती हैं, और इनकी वजह से कहीं ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अफेक्ट होती है, आपकी कैपेबिलिटीज़ अफेक्ट होती हैं, और इनका असर आपकी पूरी जीवन शैली पर, आपकी पूरी दिनचर्या पर पड़ता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों पर आप ध्यान दें। और अगर आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि आप बहुत थक गई हैं, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही हैं, तो ज़रा रुक जाइए। कभी कभी ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। आपके साथ है आपकी दोस्त दीपिका। बातें हो रही हैं कि क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए निकालना वक्त खुद के लिए, वो वक्त जिसे हम कह देते हैं मी टाइम, लेकिन असल में वो वक्त है कुछ पल जो वो चुराती हैं इस भागती दुनिया से, जिस पल में वो खुद को ढूंढती हैं, खुद को पहचानती हैं, खुद को तलाशती हैं, अपने किरदार को ज़रा सा संजोती हैं और ये पल उनके लिए बन जाते हैं बहुत खास। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस मी टाइम में कर सकते हैं, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, लेकिन अक्सर सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि मी टाइम निकाला कैसे जाए। अब इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, घर की हैं, ऑफिस की हैं, बाहर की हैं, इस सब के बीच कैसे निकाला जाए ये मी टाइम। तो देखिए, बहुत आसान है। आपको आपके शेड्यूल को कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि कहीं पर आप वो विंडो क्रिएट कर पाएं जिसमें आधा घंटा ऐसा होगा जब आप किसी भी काम में खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगी, वो आधा घंटा आप खुद को देंगी, उस आधे घंटे में आप खुद के साथ वक्त बिताएंगी। ये आप सुबह कर सकती हैं, ये आप दिन भर की थकान के बाद जब शाम को घर आएं तो रात को जो घर के रूटीन आपके काम है उन्हें रिज्यूम करने से पहले आप खुद के लिए वो वक्त निकाल सकती हैं, या फिर सोने से पहले आप ये वक्त खुद को दे सकती हैं। कुल मिलाकर उस वक्त का जो मेन मकसद है वो खुद को रिलैक्स करना और खुद के लिए कुछ पल खुशी तलाशना है। अब उसे आप अपने विंडो में, अपने दिन भर में किस तरीके से एडजस्ट करेंगी या आपको आपके शेड्यूल के हिसाब से तय करना है, पर हाँ, अगर आप एक बार इसे तय कर लेंगी तो इसे मैनेज करने में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी।

जी हाँ, मोहब्बत ज़रूरी है करना, लेकिन जितना ज़रूरी है मोहब्बत किसी और से करना, उतना ही ज़रूरी है मोहब्बत खुद से करना। और जब आप खुद से मोहब्बत करते हैं तो यकीन मानिए आप दूसरों के लिए भी चीज़ें बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाते हैं। क्योंकि आपको याद रखना है कि ये जो आपके ज़िंदगी की कहानी है, इसमें बहुत सारे किरदार हैं, बहुत ऐसे किरदार हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन इस कहानी का सबसे ज़रूरी किरदार आप खुद हैं। जी हाँ डियर लेडीज़, इस कहानी का सबसे ख़ास किरदार आप खुद हैं, और ऐसे में उस किरदार को लीड रोल तो लेना होगा ना। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को अहमियत दें, आप खुद को वक्त दें, आप खुद के सपनों को पहचानें, आप खुद के लिए जीना भी सीखें, और इसमें गिल्ट महसूस ना करें बल्कि इसे अपना हक मानें। क्योंकि मी टाइम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कोई ख्वाब नहीं है, कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि आपका हक है, और इस हक को आपको अपने लिए लेना होगा, बिल्कुल पूरे हक के साथ लेना होगा। बहुत सारी बातों का जिक्र यहाँ हम कर चुके हैं, और यकीन मानिए जब आप ऐसा करना शुरू करेंगी, यानी कि जब आप खुद के लिए मी टाइम निकालना शुरू करेंगी, तो आप अपने बिहेवियर में खुद अंतर महसूस करेंगी, और आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बदल रही हैं, कैसे जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही थी, अब आप उनसे आसानी से डील कर पा रही हैं, कैसे जिन पॉइंट्स पे आपको चिड़चिड़ापन या ब्रेकआउट जैसा फील हो रहा था, आपका ब्रेकडाउन हो रहा था, वहां पर अब आप थोड़ा बेटर तरीके से खुद को और बाकी चीजों को संभाल पा रही हैं। तो बस आप ये छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में करके देखिए और समझिए कि इससे क्या असर आपको आपके बिहेवियर में, आपको आपके रूटीन में, या फिर आपको आपकी लाइफ में महसूस हो रहा है।

वो खुद में एक पूरी कहानी है, उसे भी हक है रुकने का, थमने का, कभी चाय की चुस्की में सुकून ढूंढने का, कभी खामोशी में अपना जुनून ढूंढने का, कभी ना कहने का, कभी खुद को चुनने का, कभी अपनी मुस्कुराहट के लिए लड़ने का, कभी खुद के संग बैठने का, कभी खुद की ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने का, कभी जिम्मेदारियों की वो जो चादर उसने ओढ़ रखी है उसे ज़रा हटा देने का, कभी खामोशियों में शोर ढूंढने का, तो कभी हर ओर बस खुद को तलाशने का, खुद से मुलाकात करने का, उसे भी हक है। जी हाँ, यही बात मैं जाते जाते कहूँगी सभी डियर लेडीज से कि अपने लिए मी टाइम ज़रूर निकालें, क्योंकि आपको इसका पूरा हक है, आपको पूरा हक है कि आप अपने लिए वक्त निकालें, कुछ पल जो है वो अपने लिए चुराएं, ताकि ज़िंदगी को आप बेहतर तरीके से जी पाएं। फिलहाल के लिए आपको इस प्रोग्राम में यानी कि आशियाना में देनी होगी मुझे इजाज़त। 3 बजे से आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर और 4 बजे से आप

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपको सेहतमंद बनाए रखने का संकल्प है हमारा। इसी प्रयास में हमारा आज का विषय है अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। आपको जानकारी दे दें कि विश्व अस्थमा

0: परमात्मा दिवस प्रतिवर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को पूरे विश्व में मनाया जाता है। आज के इस विशेष दिन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मानसिंह, ENT स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। यदि आज के विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल है तो तुरंत हमें कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 011-2342-1080 और 011-2342-1082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070। आप नंबर डायल करें। इधर मैं स्वागत करती हूं अपने दोनों विशेषज्ञों का, डॉक्टर अजीत मानसिंह सर और डॉक्टर रेहान सर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: जी डॉक्टर अजीत सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि अस्थमा क्या है और अस्थमा किस तरह से शरीर को प्रभावित करता है?
1: अस्थमा ज़्यादातर छाती की परेशानी है, जहाँ छाती बाहर के प्रदूषण और जो ट्रिगर फैक्टर कहते हैं उससे ज़्यादा तेज़ रिएक्ट करते हैं, तो सांस के रास्ते जो हैं वो सिकुड़ जाते हैं
0: जी।
1: तो पूरी तरह छाती में हवा नहीं जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है
0: जी। बहुत सारे सवाल हैं अभी हमारे पास और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ने शुरू हो गए हैं, लेकिन पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और इस समय गीत हम सुनेंगे जो डॉक्टर रेहान सर ने ऑफलाइन मुझे बताया था। चलिए सुनते हैं।

0: जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा पर। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो के नंबर से 01123421080, 01123421082। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं 9868107070 पर। और डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं कि उनका क्या है सवाल। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, अपना नाम बताएं सर।
1: जी, रविंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली से।
0: जी रविंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं आप?
1: जानकारी चाहिए मैम, जैसे सर्दी जुकाम हो गया है, प्रेजेंट में है भी, सर्दी जुकाम हो जाता है, खांसी आ जाती है। खांसी आती है तो सीने में तो हल्का फुल्का जकड़न होता है, लेकिन जब खांसी तेज आती है तो पीछ की जो पसलियां की हड्डियां हैं उनमें दर्द होने लगता है। फिर क्या कारण हो सकता है?
0: क्या कारण हो सकता है, आप ये जानना चाहते हैं?
1: जी जी जी।
0: अच्छा,
2: जैसा कि आप बता रहे हैं, बार बार खांसी लेने से आपको दर्द हो रहा है, यही तकलीफ आपकी?
1: जी जी।
2: देखिए, जब आप बार बार खांसते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दबाव पड़ता है, तो उसी वजह से दर्द होता है। तो जैसे अगर आप खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो धीरे धीरे आपका दर्द भी चला जाएगा।
1: जी, यानी वैसे और कोई लक्षण तो नहीं सर?
2: नहीं, देखो, अस्थमा के मेन लक्षण ये होते हैं कि सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी जैसी आवाज आती है।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं।
2: हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर खांसी को कंट्रोल में रखेंगे तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो पहले अभी आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि खांसी को अभी कंट्रोल कीजिए।
0: जी, थोड़ी सी एहतियात बरतें, मौसम बदलने का भी असर हो सकता है। और बाकी लक्षण तो आपको बता ही दिए हैं और आगे भी हम चर्चा करेंगे, तो प्रोग्राम गौर से सुनते रहें। हम अपने सभी श्रोताओं से यही करेंगे। डॉक्टर रेहान सर, आपसे एक सवाल मेरा अब ये है कि अस्थमा होते कितने प्रकार के हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों को ज़रा से इस मौसम में खांसी जुकाम होता है तो ये लगने लगता है कि कहीं बीमारी तो नहीं कोई है ये।
2: देखिए, अस्थमा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक होता है इंट्रिंसिक।
0: जी,
2: जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो मेनली एलर्जेंस के कारण होता है, जैसे डस्ट हो गया, धुआं हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये मेनली बच्चों में होता है, लेकिन ये टाइम के साथ ठीक होने लगता है। जबकि जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा होता है वो मेनली बड़ों में होता है, एडोलसेंस के बाद होता है
0: जी।
2: और ये मेनली इन्फेक्शंस के कारण होता है, लेकिन ये जहाँ तक रहता है थोड़ा लाइफ लॉन्ग चलता है ये अस्थमा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंट्रोल रहती है चीज़ें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं
0: जी। और ट्रीटमेंट क्या होगा आगे आपसे जानेंगे। डॉक्टर अजीत सर, आपसे सवाल है मेरा कि अस्थमा के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं?
3: अस्थमा के सबसे बड़े लक्षण ये होते हैं कि खांसी होती है, उसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत होती है, खासकर सांस

0: निकालने में तकलीफ ज़्यादा होती है, अंदर फिर भी लेते हैं, और जब सांस बाहर निकालते हैं तो सीटी की आवाज़ बनती है।
1: अच्छा.
0: कई बारी तो ये सीटी की आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि आसपास के लोगों को भी सुनाई देती है, पर मरीज़ यही कहता है कि सीटी की आवाज़ है। और ये परेशानी रात को जब लेटे होते हैं तो और ख़राब हो जाती है।
1: अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि रात में या दिन में अस्थमा ज़्यादा अटैक करता है, ऐसा कहा जा सकता है? इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे. अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में. मुझे लगता है कि इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा. बताएं अजीत सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
0: अस्थमा के लक्षण और जो सांस लेने में तकलीफ़ होती है ज़्यादातर रात को ही होती है, क्योंकि जब आदमी लेटा होता है तब हवा कम जाती है फेफड़ों में। तो दिन में अगर आदमी खड़ा है और थोड़ा बहुत काम कर रहा है, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो कई बारी अस्थमा के लक्षण कम होते हैं, सांस लेने में दिक्कत कम होती है। सुबह सुबह अगर एकदम बाहर निकलो, ठंड में जाओ, तब भी ट्रिगर फैक्टर होते, तब भी अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं।
1: तो ये थोड़ी सी एहतियात रखनी होती है कि जब आप सोकर उठें तो थोड़ा सा तापमान लेवल पे आ जाने दें, तब कहीं जाके हमें बाहर निकलना चाहिए,
0: एकदम
1: ऐसा
0: से
1: कहना
0: अपने
1: चाहिए.
0: पैरों को ठंडी फर्श पे नहीं टच करने दें, अचानक ठंडी हवा नहीं लगने दें।
1: जी, अस्थमा के रोगियों की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे रेहान सर?
2: जी देखिए, धीरे धीरे जैसे जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है और जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, धूल हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, तो जैसे जैसे इनसे एक्सपोजर बढ़ रहा है उसी हिसाब से इसके मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं।
1: डॉक्टर अजीत सर, मौसम बदलाव की वजह से अस्थमा जो है गंभीर रूप ले सकता है क्या?
0: मौसम बदलाव के दो चीज़ें हैं, एक तो अभी जो मार्च अप्रैल में है मौसम बदलता है, उसके साथ ही पोलन सीजन है, पेड़ का जो पोलन है जो कि सबसे बड़ा कारण है अस्थमा का, एक अभी होता है, एक सितंबर अक्टूबर में होता है, दोनों ही टाइम मौसम बदलाव के साथ ही पोलन होते हैं। उसके बावजूद अचानक सरद गर्म के और जब मौसम बदलता है तब भी छाती के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, अस्थमा के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अस्थमा किस तरह से आपको अटैक करता है और किस मौसम में आपको सावधान रहना चाहिए और क्या क्या सावधानियां हैं, ये आपको ज़रूर बताएंगे. यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080 और 01123421082. आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी करें और उसके लिए नंबर है 9868107070. डॉक्टर रेहान सर, अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या हो? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जिनको जानकारी है वो तो ठीक है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जानकारी नहीं भी होती है तो अचानक से ऐसा अटैक आने पर लोग परेशान हो जाते हैं. इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे, लेकिन अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर. जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
3: नमस्कार मैम.
1: नमस्कार, शुभ नाम बताएं अपना.
3: जी सर को भी नमस्कार. मैं यामिन भाई, रेडियो वाला.
1: जी जी जी बताएं.
3: मैं सबसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि जिन के मम्मी पापा को अस्थमा या ये सांस की बीमारी होती है, क्या उनके बच्चों में भी ये बीमारी होने का संभावना रहती है? ये बताएं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं बच्चे?
2: देखिए, जो अस्थमा होता है उसके दो कारण होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर भी रहता है, जेनेटिकल भी रहता है। तो जेनेटिकल फैक्टर में अगर एक पेरेंट को अस्थमा है तो लगभग चांसेस 20 से 30% रहते हैं कि वो बच्चों में जाए। अगर दोनों पेरेंट्स को अस्थमा है तो उस केस में चांसेस 40 से 60% भी हो सकते हैं। तो आपको यही है जो ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसा कि हम बता रहे हैं, धूल हो गया, मिट्टी हो गया, स्मोकिंग हो गया, इन सब चीज़ों से दूर रहें और प्रॉपर इनहेलर का जो आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट का ध्यान रखें।
1: हाँ सर, ये भी अब सवाल उठता है कि अस्थमा का अटैक आने पर प्रथम उपचार क्या करना चाहिए, जैसा कि मैं कॉल लेने से पहले आपसे पूछ रही थी.
2: देखिए, सबसे प्रथम तो जो पेशेंट रहता है अस्थमा का, उनके जो ट्रीटमेंट होता है तो सबसे पहले तो पेशेंट अस्थमा अटैक आते ही सीधे बैठ जाना है।
1: जी
2: उसके बाद में जो इनहेलर होता है, इनहेलर के 2 से 3 जो पंप होते हैं वो इनहेलर के वो लेने होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे गहरी सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है, और अगर हर 20 मिनट में ये रिपीट करना है, अगर सही नहीं होता है फिर जल्दी से जल्दी आप हॉस्पिटल पहुँचें।
1: जी, तो ध्यान रखें कि बहुत नॉर्मल उसको ना लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अटैक है अस्थमा का, तो तुरंत अवेयर हो जाएं और हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करें और तमाम जानकारी जो लें और तुरंत हॉस्पिटल पहुंचें, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: हेलो
1: जी, आपका स्वागत है
4: डॉक्टर साहब। नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, नमस्कार कर रहे हैं, सुन रहे हैं आपको। बताइए क्या सवाल है आपका।
4: दिल्ली से बोल रहा हूँ सर।
1: कहाँ से बोल रहे हैं सर?
4: मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ
1: जी। शुभ नाम बता दें अपना।
4: वीपी सिंह नाम है मेरा
1: जी। वीपी सिंह जी, बताएं क्या सवाल है आपका
4: डॉक्टर साहब से। मेरा सवाल ये है कि कुछ दिन मैंने आपसे टेस्ट कराए थे, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल थे
1: जी,
4: और 2 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी और खांसी का तो ट्रीटमेंट हो गया
1: जी,
4: अब खांसी है नहीं। लेकिन जब कभी कभी धीरे धीरे जब हम खांसते हैं तो पेन होता है चेस्ट के।
1: अच्छा।
4: हल्का सा खांसी जोर से नहीं आती है जैसे नॉर्मल तरीके से कई बार खांसी आ जाती है
1: जी,
4: उस वजह से उस पेन होता है चेस्ट में, तो ये क्या कौन सा लक्षण हो सकता है ये मेरा जानना है।
2: देखिए, आप जो बता रहे हैं आपको खांसी के साथ में चेस्ट में पेन है, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो ये चेस्ट की बीमारी हो सकती है या फिर आपके जो कार्डियक इशू हो सकता है वो हो सकता है। तो इसको रूल आउट करने के लिए बेसिक टेस्ट होते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके अलावा एक मेजर डिफरेंस जो होता है सांस की बीमारी और कार्डियक में, कि सांस की बीमारी में मेन सीटी जैसी आवाज़ आती है, जबकि जो कार्डियक बीमारी है उसके अंदर सीटी जैसी आवाज़ नहीं आती, लेकिन सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रेथलेसनेस जिसको बोला जाता है। तो आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल जाइए और स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डिफरेंशिएट कर पाएंगे इस चीज़ को।
4: एक सेकंड, आप फोन काटिएगा नहीं, मुझे दिक्कत कुछ नहीं है, सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है
1: जी। आपकी उम्र क्या है सर? उम्र क्या है आपकी लगभग?
4: मेरी एज है 65 प्लस।
1: अच्छा, तो ये नॉर्मल भी हो सकता है इस मौसम में, देखिए किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इनको जो
2: जी? आपको मेन चेस्ट में पेन रहता है ये बता रहे हैं आप?
4: पेन नहीं रहता चेस्ट में
2: जी,
4: जैसे हम खांसते हैं नॉर्मल
2: जी जी।
4: तो उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, 2-3 महीने पहले मुझे खांसी हुई थी, वो तेज खांसी थी
2: जी जी,
4: उससे पहले ये दिक्कत नहीं थी
2: जी जी।
4: अब खांसी तो मेरी ठीक हो गई, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया उसके अकॉर्डिंग ठीक हो गई
2: जी जी,
4: और ट्रीटमेंट भी यहाँ से मैक्स से चला मेरा।
2: तो अभी अभी क्या दिक्कत हो रहा है बताइए आप?
4: दिक्कत ये है जैसे कभी कभी खांसी आ जाती है ना नॉर्मल, उसमें
2: जी जी
4: तो कष्ट होता है चेस्ट के अंदर।
2: देखिए वो तो नॉर्मल है, वो तो सब में ही, जैसे खांसी अगर होता है तो उस टाइम इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस टाइम वो टेम्पररी है वो चीज़। एक सेकंड डॉक्टर साहब ऐड करना चाहेंगे।
0: अभी डॉक्टर हयान ने पहले भी बोला, अगर तेज़ी से खांसी करे, कुछ भी खांसी करे, तो जो चेस्ट के मसल वगैरह हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है, हल्का फुल्का दर्द किसी भी खांसी से हो सकता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है
1: जी। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास मैसेज आ चुका है, नाम तो इन्होंने नहीं लिखा, लिख रहे हैं कि नमस्कार, मेरी बहन को अस्थमैटिक प्रॉब्लम है और उसे ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके साथ उसको छींक भी बहुत ज़्यादा आती है, उसके लिए उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए एक बात, और उसे कई बार घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है और नाक से सांस बिल्कुल नहीं आती है, किस तरह की सावधानी बरतें?
0: ये जो आप अपने सिम्टम बता रहे हैं ये ज़्यादातर एलर्जिक राइनाइटिस के हैं, जो एलर्जी प्रॉब्लम नाक की है कि छींकें आती है, नाक से पानी आता है, नाक से सांस बंद हो जाता है। एलर्जी, नाक की एलर्जी और अस्थमा में काफ़ी संबंध है, लगभग 60% मरीज जिनको एलर्जिक राइनाइटिस होते हैं, पॉलिप होते हैं, उनको अस्थमा भी होता है और अस्थमा वालों को भी नाक के सिम्टम होते हैं, दोनों इकट्ठे ही चलते हैं। तो जो नाक के सिम्टम हैं उनके लिए तो एंटी एलर्जिक गोलियां, एंटी एलर्जिक स्प्रेज आते हैं, वो लगातार लेने पड़ेंगे, साथ के साथ दमा अस्थमा का जो गोली और इनहेलर डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं वो साथ के साथ चलेंगे, दोनों ही इलाज इकट्ठे चलेंगे, और टेस्टिंग करके देख सकते हैं कि किस चीज़ से एलर्जी है। एलर्जी के टेस्टिंग 2 किस्म की होती है, या तो स्किन प्रिक के टेस्ट होते हैं, या आजकल ब्लड टेस्ट भी आ गए हैं, थोड़े महंगे टेस्ट ज़रूर हैं, पर वो एक सिंगल ब्लड टेस्ट से पता लगा सकते हैं कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, और उसको अवॉइड करने से आपकी चीज़ें कंट्रोल में रह सकती हैं।
1: जी, और इससे डॉक्टर साहब ये भी क्लियर हो जाएगा कि अस्थमा है या नॉर्मल एलर्जी है, इनको ये भी जानकारी हो जाएगी।
0: कई बार दोनों इकट्ठे साथ के दोनों ही साथ चलते हैं, पर अगर छाती की दिक्कत ज्यादा है, सांस लेने में दिक्कत ज्यादा है, तो वो अस्थमा की लक्षण ज्यादा है।
1: जी, क्या फेफड़ों

0: बच्चे हैं जो स्कूल में जाते हैं, तो पेरेंट्स एक हमेशा ध्यान रखें कि एक इनहेलर जो होता है वो उनके बैग में ज़रूर रखें, साथ में जो उनके टीचर्स हैं स्कूल में उनको भी ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि ये बच्चा अस्थमेटिक है, कभी कोई ज़रूरत पड़े तो इस हिसाब से इस इनहेलर का यूज़ करना है वो, ताकि उनको बता सकें तो प्रिकॉशनरी इमरजेंसी केस में वो संभाल सकें उस चीज़ को।
1: तो बहुत सावधानी बरतिए, और किस तरह की सावधानियां आपको रखनी है आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते मैडम।
1: नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
2: मैं रघुवीर सिंह उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
1: जी सर बताएं क्या सवाल है आपका।
2: डॉक्टर साहब एक सवाल पूछना है। डॉक्टर साहब
1: सुन रहे हैं, दोनों विशेषज्ञ हमारे सुन रहे हैं, आपको बताएं।
2: एक हमारे गांव का कोई आदमी था, तो वो शुरू में बहुत सिगरेट पीता था, तो अब सिगरेट पीने से उसको क्या हो गया, अस्थमा या एलर्जी कुछ बीमारी हो गया था, अब तो एक्सपायर भी हो गया। अब डॉक्टर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे सिगरेट पीने से तो या तो माउथ ओरल कैंसर हो सकता है, तो इस हिसाब से हम सिगरेट पीने से अस्थमा का और ओरल कैंसर का क्या अंतर होगा, आप ये बताइए।
0: देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सिगरेट होता है वो हर बीमारी का एक जो ईटियोलॉजी होती है, कोज होता है, वो सिगरेट होता ही है। तो सिगरेट माउथ कैंसर भी कोज कर सकता है, सिगरेट लंग कैंसर भी कोज सकता है, और सिगरेट जो है अस्थमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर होता है। तो जितना हो सके सिगरेट स्मोकिंग जो होता है हमें अवॉइड करना चाहिए।
1: जी तो इनको आपने गाइड कर दिया है। आलोका जी का हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लिख रही है कि आई एम 54 ईयर ओल्ड फ्रॉम नोएडा। इन्होंने नोएडा से ये सवाल भेजा है। आई एम वेरी एलर्जिक और पोल्यूशन, स्मोक, डस्ट, कोल्ड वेदर एक्सेट्रा, कभी कभी वीजिंग होती है सोते हुए। डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती हूँ लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या इनको करना चाहिए। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं, लिखती हैं।
0: दोहराएंगे एक बार सवाल को।
1: जी इन्होंने लिखा है कि इनको काफ़ी एलर्जेटिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो है पॉल्यूशन की वजह से, स्मोक की वजह से, डस्ट की वजह से, कोल्ड की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है, और सोते समय इनको वीजिंग की प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह से इनको कंट्रोल करना है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी ये ले रही हैं।
0: देखिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो मेन इन्होंने खुद ही बता दिया ट्रिगरिंग फैक्टर, जो डस्ट से एलर्जी होती है इनको, स्मोक से एलर्जी होती है
1: जी।
0: तो इन सब चीज़ों से, ट्रिगरिंग फैक्टर से आपको दूर रहना है, वही सबसे बड़ा इलाज होता है इस चीज़ में।
1: तो क्या ये साथ में जो मेडिसिन ले रही हैं होम्योपैथिक, अगर ये कुछ और भी ट्रीटमेंट लें तो क्या दोनों साथ साथ पॉसिबल है?
0: जी जी मेनली अब इनको अगर कंटिन्यू रहता है तो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस तो जब भी अटैक होता है उस टाइम साथ में लें, और स्टीरोइड्स का जो इनहेलर जो होता है उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें, वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसके बारे में कैसे इस्तेमाल करें ये हम आपसे जानेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: हेलो नमस्कार जी।
1: जी नमस्कार सर, शुभ नाम बताएं अपना।
3: निर्भय सिंह मेरठ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
1: जी
3: डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना था कि मुझे कुछ दिन पहले खांसी हुई थी, और खांसी के बाद ना खांसी तो ठीक हो गई है मगर बलगम बहुत आ रहा है, और ये 2-3 साल में लगभग रिपीट हो जाता है। मेरी उम्र लगभग 40 साल है। इस बारे में
4: आपको ये बताना पड़ेगा कि खांसी के साथ बलगम आ रहा है, नाक से गले में बलगम गिर रहा है, किस किस्म का बलगम की बात कर रहे हैं?
3: गले गले में रहता है मलगम बस।
4: तो यानी छाती से खांसी करके अगर बलगम नहीं निकल रहा है तब ये दमा और अस्थमा नहीं लग रहा है, ये ज्यादातर साइनस की प्रॉब्लम लग रही है कि नाक से अगर पीछे बलगम गले में गिरे तो वो गले में इकट्ठा होता है और फिर आपको वो बार बार साफ करना पड़ता है।
3: घबराने की तो कोई बात
4: नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, पर ये आपको चेकअप करा के इसका जो इलाज है वो करवाना पड़ेगा।
3: नहीं वैसे वो तो डॉक्टर साहब से चल रहा है इलाज, वो यूँ कहते हैं 1 हफ्ता दवाई खानी पड़ेगी, मगर फिर भी मेरे मन में थोड़ी शंका हुई, मैं डॉक्टर साहब से पूछ पता करता हूँ।
4: नहीं ये साइनस के लक्षण लग रहे हैं, दमे अस्थमा के नहीं लग रहे हैं, जो इलाज है वो लेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाना चाहिए।
1: जी और डॉक्टर साहब लगातार आप सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेडियो डॉक्टर आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपके साथ लगातार बना हुआ है। तो यहाँ ले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ अनुराधा। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर अजीत मान सिंह जी, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रेहान चौधरी, मेडिकल ऑफिसर, सीजीएचएस, न्यू दिल्ली। आपसे आज हम चर्चा कर रहे हैं अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन विषय पर। और आपका भी कोई सवाल है तो हमें तुरंत कॉल करें। स्टूडियो के नंबर्स हैं 0112342108 और 0112342108। डॉक्टर रेहान सर, आपसे मेरा सवाल है कि इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस पर क्या थीम रखी गई है और किस तरह से उसका हम जो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, क्या कहती है ये थीम?
2: जी, इस बार की जो थीम है वो है एक्सेस टू एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा, स्टिन एंड अर्जेंट नीड। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टीरोइड्स होता है, मेनली एंटी इन्फ्लामेटरी इनहेलर्स स्टीरोइड्स को बोला जाता है
1: जी,
2: उसका सबको एक्सेस मिले, कि मतलब सबको इजीली प्रोवाइड हो जाए, वो सबको मिले और वो एक अर्जेंट नीड है।
1: तो क्या कहना चाहेंगे कि इनहेलर लेने का सही ढंग क्या है और प्रिकॉशन क्या रखने चाहिए इसके इस्तेमाल में?
2: देखिए, इनहेलर लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ
1: जी।
2: पहले अब स्ट्रेट नाइन सीधा होके बैठना है, देन जो इनहेलर पंप होता है उसको हाथ में लेना है, देन माउथ स्पेसर जो होता है उसको यूज़ करिए, माउथ में रख के फिर 2 से 3 बार पहले धीरे धीरे गहरी सांस छोड़नी है, बाहर सांस छोड़नी है, उसके बाद में 2 से 3 पफ लेने हैं, देन उसके बाद में धीरे धीरे सांस अंदर लेनी है, उसके बाद में थोड़ा होल्ड लेना है 4 से 5 सेकंड का, उसके बाद में धीरे धीरे एक्सहेल करना है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो रेगुलर स्टीरोइड यूज़ करते हैं उनके अंदर जो ओरल कैंडिडियासिस, जो कि फंगल इन्फेक्शन के चांस हो जाते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इनहेलर यूज़ करने के बाद में माउथ वॉश करना या गार्गल करना बहुत ज़रूरी है।
1: जी, बहुत छोटी सी बात डॉक्टर साहब ने बताई है, लेकिन श्रोताओं इसका बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि उससे बहुत सारी जो आपको दिक्कत हो सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा पूरा ध्यान रखिए। हमारे एक कॉलर फोन लाइन पर है, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
3: जी, मेरे को अस्थमा है काफी साल से, तो एक बार दमा की शिकायत हो गई थी
1: जी।
3: तो ये किस कारण होती है? और दूसरा सवाल है कि मैं पंप लेती दो, एक तो कैप्सूल डाल के लेती हूँ, एक दवाई वाला लेती हूँ। तो ये कहते हैं कि पंप ज्यादा नहीं लिए, ये गलत है, नहीं लेना चाहिए, सही है गलत है?
1: जी, आपके सवाल का जवाब हम जरूर देंगे। आप अपना शुभ नाम बता दें मैम, कहाँ से बोल रही हैं?
3: हम कमलेश्वर में, ब्लाइंड हूँ।
1: अच्छा अच्छा, जी जी, कोई बात नहीं। हाँ बताएं, कहाँ से बोल रही हैं आप?
3: ग्रेटर नोएडा से।
1: ग्रेटर नोएडा से जी। डॉक्टर साहब हमारे दोनों विशेषज्ञ आपको सुन रहे हैं और आपका सवाल जो है उसका जवाब जरूर देंगे। बताएं, और कुछ कहना चाह रही थी आप?
3: नहीं, और मैम मेरे सर में ना इतना दर्द होता है, मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहती, सर में बहुत दर्द होता है, रात में नींद नहीं आती, दिन में आती, इसका क्या कारण है? आंखों नींद भरी रहती है और आपको आती नहीं है, धूप में खुल जाती
1: है। ये भी कोई अस्थमा का लक्षण है डॉक्टर साहब?
4: आपका
1: बताएं,
4: जो सरदर्द है, नींद नहीं आती है, इसका अस्थमा से कोई जोड़ नहीं है, अस्थमा का कोई लक्षण नहीं है। अगर आपको जुकाम भी रहता है और आँख के आसपास भारीपन रहते हैं तो हाँ, ये साइनस का हो सकता है जो कि अस्थमा के साथ जुड़ा हो सकता है। जहाँ तक अस्थमा का आपका पंप सही तरीके से लेना है, ज़्यादा है या कम है, डॉक्टर रेहान जवाब दे देंगे।
2: देखिए
3: मैडम,
1: जी थोड़ा जोर से बताएं, डॉक्टर साहब समझ नहीं पाए क्या कहना चाहते हैं।
3: पंप लेती हूँ सांस में, दो पंप लेती हूँ, एक तो कैप्सूल डाल के एक दवाई वाला।
2: जी जी
1: जी।
3: एक छोटी सी गोली खाती हूँ, तो मैंने टेस्ट भी कराया था तो बोलते हैं मेरे सीने में भी दर्द होता है तो नॉर्मल आता है, सीटी स्कैन कराती हूँ तो मैं सब नॉर्मल आता है मेरा, तो सीने में दर्द भी रहता है मेरे।
2: जी जी जी, जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि जो पंप होता है वो बिल्कुल सेफ है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस सही तरीके से लेना है और रेगुलर लेना है।
3: अच्छा,
2: हाँ हाँ हाँ, क्योंकि यही सबसे सबसे जो बेहतरीन इलाज है अस्थमा का वो पंप ही होता है, तो पंप आपको रेगुलर लेना है और इसको अवॉइड नहीं करना आपको बिल्कुल भी।
1: जी, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, इनको आपने बता दिया है। हमारे पास मैसेज आया हुआ है, ये छवि जी का मैसेज है, लिख रहे

0: आई एम छवि चौधरी फ्रॉम जयपुर राजस्थान. कैन वी डू हार्श स्पोर्ट्स इन अस्थमा? डिफरेंस बिटवीन कंट्रोलर एंड रेस्क्यू इनहेलर.
1: देखिए, जो इनका पहला सवाल है हार्श स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेनस एक्सरसाइज तो बेसिकली अवॉइड ही करनी चाहिए
0: जी.
1: क्योंकि ये अस्थमा का अटैक हो सकता है। दूसरा इन्होंने सवाल पूछा है कंट्रोलर और रेस्क्यूअर, ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। जो कंट्रो एक तो होता है रिलीवर मेडिसिन, रिलीवर मेडिसिन वो होती है जो कि जब अस्थमा का अटैक होता है उस टाइम हम यूज़ करते हैं, जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया, वो रिलीवर मेडिसिन होता है।
0: जी
1: एक होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर वो होता है कि अगले अटैक को होने से रोकता है या लंबे टाइम तक डिजीज़ को प्रिवेंट करता है। तो उसमें बेसिकली एंटी इन्फ्लामेटरी स्टीरोइड्स जो कि इन्फ्लामेटरी जो इनहेलर्स होते हैं वो इसके अंदर आते हैं।
0: जी तो बहुत सारी बातें श्रोताओं आपको जानने को मिल रही है. उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा. आगे बढ़ते हैं और एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है. जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में.
2: ओम शांति.
0: ओम शांति सर, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ.
0: जी सर बताएं क्या
2: मुझे
0: सवाल है
2: पूछना
0: आपका.
2: है कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है और ब्रोंकल अस्थमा का कोई वैक्सीन वैक्सीन भी बनाया कि नहीं. ओम शांति.
0: जी
1: देखिए, जैसा कि आप वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक तो
3: अभी
1: कोई
3: तक नहीं है.
1: अभी तो कुछ है नहीं, हो सकता है आगे इस पे अभी रिसर्च चल रही हो, आगे आगे आ जाए।
0: जी तो जागरूक लगातार हम आपको कर रहे हैं कि किस तरह से आप अस्थमा से बच सकते हैं और क्या प्रिकॉशन आपको बरतने हैं और किस तरह से आपकी जीवनचर्या हो और क्या क्या आपको खुद सावधानी बरतनी है, क्योंकि हम तो सिर्फ आपका मार्गदर्शन अपने विशेषज्ञों के माध्यम से करवा सकते हैं लेकिन आगे जो कुछ करना है वो आपको ही करना है. डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि मौसम बदलता है और खान पान, खास करके मुझे लगता है कि जिनको अस्थमा की शिकायत है खान पान पर भी कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्या, कि ठंडी चीज़ों से बचना है. गर्मी का समय है तो लोग फ्रिज का पानी नॉर्मली घर में घुसते ही पी लेते हैं, क्या इन सब चीज़ों से बचना है?
1: जी जी बिल्कुल, इन चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं बहुत प्रोन होते हैं इन चीज़ों से। अगर थोड़ी भी ठंडी हवा लग गई या फिर सुबह मॉर्निंग में जैसे ठंडी हवा होती है वो ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकते हैं।
0: जी
1: ठंडा पानी हो गया वो एक तरीके से ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। तो रेगुलर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां खाइए, रेगुलर हल्का फुल्का वॉक कीजिए तो डिजीज़ कंट्रोल में रहती है, और प्रॉपर इस्तेमाल करिए इनहेलर का जो रहता है।
0: जी लेकिन अब एक समस्या आती है कि क्या अगर मेडिसिन शुरू हो गई है तो वो कंटिन्यू चलती रहेगी या क्या, कितने समय तक ट्रीटमेंट होता है, कुछ ऐसा भी नियत होती है चीज़ें?
1: देखिए, अगर लंबे टाइम तक, जैसे जो गाइडलाइन जो कुछ कहती है कि अगर 5 दिन से ज़्यादा हफ्ते में अगर उसको सिम्टम्स रहते हैं तो उनको उनको कंटिन्यू करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है तो वो मेडिसिन छोड़ सकते हैं। उसके अलावा जो अगर एक्यूट अटैक आता है जब भी, तो उस टाइम इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल करें।
0: जी और हमारे पास आया हुआ है मैसेज, ये है, लिख रहे हैं, हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार. मेरा नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, हाँ मेरा नाम वीरू बख्शी है और अपनी उम्र ये 62 साल लिख रहे हैं. लिख रहे हैं कि मेरे साथ एक माइनर कुछ इन्होंने दिक्कत बताई है कि इनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऐसा क्यों है जानना चाहते हैं. क्या ये सिर्फ मौसम का असर है या ऐसा कुछ इन्होंने बाकी दिक्कतें नहीं लिखी हुई हैं?
1: देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि सांस लेने में दिक्कत है
0: जी
1: तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक बार आप जल्दी से जल्दी फिजिशियन से मिलिए, वो एक बेसिक टेस्ट होता है पल्मोनरी फंक्शन
0: जी
1: टेस्ट, उससे वो पता चल जाएगा कि बेसिकली ये सांस की बीमारी है या कुछ और कारण है।
0: जी घबराहट भी इन्होंने लिखी हुई है कि इनको घबराहट होती है, ऐसा किस वजह से होता है? मतलब अस्थमा जैसी कोई समस्या तो नहीं है, इनको ये जानना चाहते हैं.
1: उसी को रूल आउट करने के लिए बेसिकली आपको वो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है, वो करवाना चाहिए जल्दी से जल्दी।
0: जी तो श्रोताओं लगातार आप सभी का मार्गदर्शन यहाँ पे डॉक्टर साहब कर रहे हैं. यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं. स्टूडियो के नंबर्स हैं 01123421080, 01123421082. आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, उसके लिए नंबर है 9868107070. तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चर्चा आप लोगों से जारी है, क्या कहना चाहेंगे कि इस समय जो गर्मी का मौसम है और कैसी सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि खान पान आपने बता दिया है, और कैसी दिनचर्या हो, क्या व्यायाम भी होना चाहिए, किस तरह का व्यायाम होना चाहिए?
3: समझा नहीं, व्यायाम
0: एक्सरसाइज किस टाइप की?
3: एक्सरसाइज जैसे अभी पिछला सवाल का जवाब दिया था, हार्श स्पॉट्स तेज एक्सरसाइज से जब अक्यूट अस्थमा हो रहा हो वो अवॉइड करना चाहिए। जेंटल व्यायाम ज़रूरी है क्योंकि उससे वो फेफड़ों की पावर बढ़ेगी। अगर जो

0: आधा घंटा चलना या जो एरोबिक है बहुत हार्श नहीं करें, पर रेगुलर एक्सरसाइज से अस्थमा के कंट्रोल में काफ़ी फ़ायदा आएगा
1: जी। हमारे कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: हाँ, मेरा, मैं पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ। मेरा
1: जी,
2: एक सवाल का उत्तर छूट गया था
1: जी, अभी बात हुई थी आपसे, बताएं क्या सवाल छूट गया था आपका?
2: जी मैंने कहा था कि ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकाइटिस में क्या अंतर है,
1: क्या अंतर है, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके का अंतर है। और देखिए, संपर्क तो श्रोताओं इनसे टूट गया है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, हो सकता है कि ये सुन ले रेडियो पर कि किस तरह की समस्या है।
3: देखिए, जो ब्रोंकाइटिस जो होता है वो बेसिकली टेम्पररी होते हैं, और उसमें जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सूजन होती है, वो रिवर्सिबल होती है। जबकि जो ब्रोंकाइटिस है वो एक क्रोनिक बीमारी है, और उसमें जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है। तो मेजर डिफरेंस ये है दोनों में, एक टेम्पररी है, एक परमानेंट है।
1: तो चलिए, आपका जो सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया है, और संयोग है कि आपका फ़ोन मिल गया दोबारा से। अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन लाइन मौजूद नहीं रहती है, और मतलब मौजूद तो है लेकिन मिलता नहीं है फ़ोन जल्दी से, तो ये समस्या आपकी दूर हो गई है। और अगला जो हमारे पास मैसेज है, लिख रहे हैं दोनों डॉक्टर साहब और एंकर मैम को गुड आफ्टरनून। मैम, अस्थमा में पॉल्यूशन का क्या रोल है? अपने क्षेत्र में स्वच्छता रखने से क्या कोई फ़र्क पड़ता है, कृपा करके बताएं। नरदेव सिंह चौहान जी कोटद्वार उत्तराखंड से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कर रहे हैं।
3: देखिए, जो साफ़ सफाई अगर रखेंगे हम तो डस्ट होगा, जो पोल्यूशन होगा वो कम होगा। तो बेसिकली जो ट्रिगरिंग फैक्टर होंगे वो हम कम कर रहे हैं, तो उससे अस्थमा बेहतर रहेगा, जिससे कि अस्थमा कंट्रोलेबल रहेगा
1: जी।
3: तो साफ सफाई का तो हमें हमेशा ही विशेष ध्यान रखना चाहिए,
1: ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगला सवाल हमारे पास आया हुआ है, मैसेज है हमारे पास। गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैंप कीर्ति नगर नई दिल्ली से लिख रहे हैं। आज इतने महत्वपूर्ण विषय के लिए धन्यवाद। मेरा सवाल है कि टीबी और अस्थमा में क्या अंतर है, और मेरा लड़का 11 साल का है, 3 साल से नाक से ब्लड आता है, ESI में उसका सारा इलाज हुआ है, मगर नाक जब बंद होने लगती है तो कोल्ड की वजह से ब्लड आने लगता है, किस तरह से उसका क्या इलाज किया जाए?
0: आपने दो सवाल पूछे हैं। पहला तो कि टीबी और अस्थमा में क्या फ़र्क है। टीबी एक छाती की इन्फेक्शन है, अस्थमा से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। अस्थमा फेफड़ों की हाइपर रिएक्टिव प्रदूषण वगैरह की वजह से होता है, तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों का अलग अलग, सिवाय के दोनों में खांसी होती है, और कोई सिमिलरिटी नहीं है।
3: देखिए, एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा, जो अस्थमा होता है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता है, जबकि टीबी जो होता है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है ये चीज़।
0: और जहाँ तक नक्सीर का सवाल है, वो अस्थमा से कोई ताल्लुक है नहीं, पर उसका अगर कहीं भी खांसी ज़ुकाम हो, नज़ला हो, तो नाक के अंदर थोड़ा ये ब्लड बढ़ जाता है, और छोटे बच्चों में छोटी नक्सीर अक्सर होती है। तो यही है कि खासकर गर्मियों में उसका थोड़ा लुब्रिकेशन रखना चाहिए, तो क्रीम या कुछ लगाएं कि आगे सूखापन नहीं रहे, और नाक में उंगली वगैरह नहीं डालें
1: जी। अगला हमारे पास मैसेज आया हुआ है, मनीषा जी रांची से लिख रही हैं कि इनकी उम्र 75 वर्ष की है, और लिख रही हैं कि मैं हृदय रोग की मरीज़ हूँ, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, मुझे नेबुलाइजेशन और इनहेलर दोनों दिया गया है, क्या ये एक है या अलग अलग है?
3: देखिए, मेजर डिफरेंस जो नेबुलाइजर और इनहेलर में जो होता है, इनहेलर जो होता है बेसिकली पंप होता है, जिसको पंप की मदद से हम लेते हैं। जो नेबुलाइजर होता है वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको एक मशीन में डाला जाता है और उसके बाद में उसको भाप दी जाती है।
1: जी, तो इसका अलग अलग प्रयोग है, और दोनों ही जरूरी होता है।
3: दोनों ही जरूरी
1: स्थिति है, उम्र भी ज्यादा है, 75 वर्ष की उम्र है, तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप निश्चिंत रहें, डॉक्टर साहब ने आपका मार्गदर्शन कर दिया है।
0: जो आप कह रहे हैं कि हृदय के मरीज हैं, डॉक्टर साहब ने बोला था दो किस्म की दवाइयाँ, एक जो कंट्रोल करती हैं, प्रिवेंट, जो दवाई कंट्रोल करती है, जिसे ब्रोंकोडाइलेटर कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लेने से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उससे हृदय में असर पड़ सकता है। वही एक चीज़ के लिए आपको संपर्क रहना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताई है। उम्मीद है कि आप सभी इसको नोट डाउन करिए, ताकि आप भूल ना जाएं कि आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: जी हाँ, अस्थमा विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दो दो विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लगातार आप सभी का जो सवाल है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। हमारे पास अगला मैसेज आ चुका है रमेश कुमार जी का, न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। नमस्कार एवरीवन, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, सबको बहुत धन्यवाद। कैन अस्थमा पेशेंट कैन लीड नॉर्मल लाइफ?
1: जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। अस्थमा पेशेंट होते हैं बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से मेडिकेशंस लें, सही तरीके से लें, सही टाइम पे लें। जैसा कि हम देखते हैं ओपीडी में, मैंने देखे हैं 85 ईयर्स 90 ईयर्स के पेशेंट भी आते हैं, अस्थमेटिक हैं, वो पूरी लाइफ लॉन्ग अच्छे से दवाई लेते हैं और अच्छा जीवन जी लेते हैं वो लोग।
0: जी तो जी डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
2: मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो सीजनल अस्थमा होता है जो ज़्यादातर पोलन से रिलेटेड होता है, जैसे दिल्ली में मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर, और दिल्ली में उसके बाद अब प्रदूषण से दशहरा के बाद जनवरी तक चला है पिछले साल, वो उस किस्म के अस्थमा में जब नॉर्मल हालात हो जाते हैं, जैसे अब मई में एक दो हफ्ते में बिल्कुल पोलन ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ आदमी लीड कर सकते हैं दवाइयों के बगैर भी। सिर्फ जब ये ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं तब दवाइयाँ लेनी पड़ती है, बाकी टाइम वो जैसे बोला था हार्ट स्पॉट्स भी कर सकता है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, नेजल पॉलिप साइनसाइटिस और एलर्जी का अस्थमा से क्या रिलेशन है?
2: नेजल एलर्जिक राइनाइटिस जो कि नाक की एलर्जी होती है उसकी वजह से नेजल पॉलिप्स होते हैं, ज़्यादातर आसपास जो फंगस होते हैं उसके अगेंस्ट जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं उससे नाक में पॉलिप होते हैं। नाक के पॉलिप मतलब नाक के अंदर अंगूर जैसे छल्ले बन जाते हैं, नाक बिल्कुल बंद रहती है, स्नीजिंग होती है, साइनसाइटिस जहाँ जो नाक के आसपास साइनसिस में बलगम इकट्ठी हो जाती है। इनके दमा अस्थमा से दो ताल्लुक है, एक तो पॉलिप्स और अस्थमा, ये दोनों ही चीज़ें बाहर के ट्रिगर फैक्टर से प्रवोक होती हैं। लगभग 60% चांस है कि मरीज अगर जिसको पॉलिप है उसको अस्थमा भी होगा, प्लस अस्थमा वाले मरीज को पॉलिप्स भी हो सकते हैं। दूसरा, साइनस से अगर रेशा गले में गिर के छाती में गिर रहा है तो वो भी फेफड़ों को इरिटेट करके दमे को प्रवोक कर सकता है।
0: जी,
2: एलर्जी दोनों में ही रहती है, ट्रिगर फैक्टर एलर्जी दोनों में ही कॉमन रहता है।
0: जी डॉक्टर साहब, लंबी खांसी चल रही है और सूखी खांसी है तो अक्सर लोग फिक्र में पड़ जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे, कहीं ये अस्थमा का लक्षण तो नहीं है?
2: ये पेशेंट मरीज से पूछना पड़ेगा, लंबी खांसी है, सूखी खांसी है, बलगम वाली खांसी है, खांसी के साथ सीटी बजती है नहीं बजती है, खासकर बलगम है या सूखी है, लेटते हुए, सारी खांसी ज़्यादातर लेटने से ख़राब होती है, चाहे साइनस का रेशे बलगम से हो, अस्थमा से हो। तीसरा फैक्टर खांसी का है पेट का तेजाब ऊपर आके जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा लक्षण है सांस में दिक्कत और सीटी। क्यों?
1: जी, ये एपिसोडिक रहता है, ये तीनों सिम्टम जो रहते हैं एपिसोडिक रहते हैं।
2: एपिसोडिक, अगर अकेले लंबी चल रही है बिना इन तीनों के सिम्टम के तब ये अस्थमा नहीं
0: हो सकता। जी, अब डॉक्टर साहब सवाल ये उठता है कि हृदय रोग में और अस्थमा में दोनों में ही दिक्कत होती है सांस लेने में और हार्ट में, तो कैसे इसका डिफरेंस कैसे किया जाए?
1: जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका। मेनली जो कार्डियक की वजह से अगर सांस लेने में दिक्कत है तो वो होता है कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। जबकि जो अस्थमा होता है उसमें फेफड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत रहती है। तो बेसिकली अस्थमा के केस में ये सीटी की आवाज़ रहता है, जबकि कार्डियक केस में सीटी की आवाज़ नहीं बल्कि शरीर में सूजन रहती है, पाँव में सूजन रहती है, वो अलग फैक्टर्स होता है, इन दोनों को डिफरेंस कर सकते हैं उस चीज़ों से।
2: और उसमें खड़खड़ की इसी भी आवाज़ रहती है?
1: जी,
2: छाती में।
1: जी,
2: सीटी की जगह।
1: जी, ये दोनों में डिफरेंस करने के लिए, और बाकी जो स्पेशलिस्ट के पास जाके जो टेस्ट होता है वो इम्पोर्टेंट है ही, वो डिफरेंस कर देगा उस चीज़ को।
0: जी, तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे अस्थमा के पेशेंट हैं उनको किस तरह की और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने मौसम का भी आपसे जिक्र किया कि मौसम बदल रहा है, और हमारे जो श्रोता थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, एक बार शॉर्ट में उनको बता दीजिए कि किस तरीके से इस मौसम में उनको सावधानी रखने की ज़रूरत है।
1: देखिए, अभी जो मौसम है, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, मौसम थोड़ा बदल रहा है, थोड़ी गर्मी हो रही है, काफ़ी सीजनल है
0: जी।
1: तो इस सीज़न में पोल्यूशन भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, उसके साथ साथ जो एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनका भी अभी एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो जो ऐसे पेशेंट्स हैं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि बाहर जब भी निकलें थोड़ा मास्क लगाकर थोड़ा परहेज रखें इन चीज़ों से। बाकी जो इनहेलर होता है वो हमेशा अपने साथ रखें, जब भी उनको अटैक आए उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। और अस्थमा जो है एक कंट्रोलेबल डिजीज है, इससे बिल्कुल भी हमें घबराना नहीं है।
0: जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप?
2: ये सबसे बड़ी चीज़ है जो एलर्जन है, अगर पता लग जाता है एलर्जी टेस्ट से कि क्या आप कुत्ते से एलर्जी

0: है, बिल्ली से एलर्जी है, किसी फूड से एलर्जी है,
1: या
0: तो
1: स्ट्रॉन्ग परफ्यूम दो।
0: स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, कई किस्म की बरमूडा ग्रास और आसपास घास होती है, उनसे अवॉइड करना सबसे ज़रूरी है। आपने मास्क के बारे बोला था, यही है कि थोड़ा सबको मास्क पहनने की आदत तो हो ही गई है,
2: जी
0: पर अगर प्रदूषण में जाएं तो वो N95 अगर मास्क पहने तो बचाव हो सकता है, पर फिर दूसरी प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वैसे ही उनको सफोकेशन है तो मास्क पहना नहीं जाता,
1: मास्क तभी पहने जब वो एक्सपोजिंग
0: एक्सपोजर
1: एनवायरनमेंट में जा रहे हों।
0: एनवायरनमेंट में जाए।
1: जी जी
2: जी, तो बहुत ही यहाँ पे उम्दा चर्चा रही है कि उम्मीद है कि आपको बहुत सारे यहाँ पे लाभ जानने को मिले हैं, और जो भी पेशेंट हैं उन्होंने मुझे लगता है कि बहुत गौर से कार्यक्रम सुना होगा। अगर आपका कॉल नहीं लग पाया है तो भी जानकारी आप तक पहुँची है तो उसका लाभ आपने ज़रूर लिया होगा। चलते चलते बस यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए, क्योंकि आरोग्यम परम धनम। बाकी धन के प्रति हम सजग रहते हैं लेकिन इस धन के प्रति हम थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। आपका साथ देने के लिए लगातार रेडियो डॉक्टर आपके साथ है, इसका लाभ लीजिए और कार्यक्रम सुनते रहिए। आपको बता दें कि आज हमने जिस विषय पर चर्चा की वो था अस्थमा कॉजेज ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ स्टूडियो में मौजूद थे। आप थे डॉक्टर अजीत मानसिंह जी, ENT स्पेशलिस्ट न्यू दिल्ली, और डॉक्टर रेहान चौधरी जी, मेडिकल ऑफिसर CGHS न्यू दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुँचाई।
0: आपका धन्यवाद कि हमें बुलाया।
2: जी
1: जी,
2: सर,
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का और हमारे श्रोताओं का भी जो हमारे साथ बने रहे। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जल डमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है।

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी है। तमिलनाडु में टीवीके राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी नेता जोसेफ विजय ने द्रविड़ राजनीति के संस्थापक सीएन अन्नादुरई को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज नवनिर्वाचित टीवीके विधायक चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में अभिनेता से राजनेता बने जोसेफ विजय को अपना विधायक दल का नेता चुनने के लिए एकत्रित हुए। पार्टी राज्यपाल से संपर्क कर राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने की तैयारी कर रहा है। भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य देखभाल पर संयुक्त समिति की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा तथा जापान में स्वास्थ्य देखभाल नीति प्रभार के मंत्री किमी उनोदा ने किया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने कहा कि यह बैठक सहयोग को और सुदृढ़ करने में दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में नई भागीदारी को मजबूत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवा दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका। प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं इस वक्त। जी हाँ, इस वक्त मैं प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ अल्फा जैन, जिसमें आज हम बातें करते हैं करियर की। क्या कुछ खास करियर में आप कर सकते हैं, क्या कुछ ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि करियर एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाने के बारे में हम बहुत सोचते हैं। सभी लोग सोचते हैं अलग अलग फील्ड में किस तरह से हम करियर बना सकते हैं, इस बारे में जानना भी चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है। अपने पैशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, अपने स्किल्स को निखारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप गलत करियर चूज़ कर लेते हैं, मतलब जिसमें आपके स्किल्स ज़्यादा नहीं है या फिर जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर मुश्किल आती है। ऐसे में अपनी हॉबीज़ को समझें, क्या वो हॉबीज़ पैशन में करियर में बदल सकती हैं ये समझें। करियर को किस तरह से आपको आगे बनाना है, क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपके पास हैं, ये सारी बातें समझना बहुत ज़रूरी हैं। आज किस

करियर के बारे में मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाली हूँ, क्या कुछ खास जानकारी आप तक पहुँचाने वाली हूँ, सब बताऊंगी। फिलहाल के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में इस बेहद ही खूबसूरत गाने के साथ करते हैं शो की शुरुआत।

दीपिका के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। प्रोग्राम है अल्फा जैन। बातें हो रही हैं करियर ऑप्शंस की। बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक वक्त पर सिर्फ ट्रेडिशनल जो करियर ऑप्शंस हैं उनका जिक्र होता था, लेकिन आज कई ऐसे करियर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं जो पहले नहीं होते थे। चाहे बात AI फील्ड की करें, गेमिंग की करें, या फिर बात करें कॉन्टेंट क्रिएट

क्रिएशन की। जी हाँ, कंटेंट क्रिएशन और सोशल मीडिया ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिनमें आजकल करियर बनाना काफी अच्छी चॉइस माना जाने लगा है, क्योंकि ये एक मजबूत करियर ऑप्शंस बन चुके हैं आज के वक्त में। एक वक्त पर सोशल मीडिया को सिर्फ वक्त बिताने का एक जरिया माना जाता था, कंटेंट क्रिएशन को सिर्फ एक हॉबी के तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब इनके जरिए न केवल लोग नाम, पैसा और पहचान कमा रहे हैं, बल्कि एक एक मजबूत करियर भी उन्हें मिल रहा है। कंटेंट क्रिएशन बहुत तरीके का होता है, अक्सर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन, अगर आपको लिखना पसंद है, अगर लिखने में आपकी रुचि है, तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं, जिसे आप अपने करियर के रूप में चुन सकते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन में सिर्फ एक लिखना ही नहीं है, कंटेंट क्रिएटर बनने की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा स्किल जो आपको लग रहा है कि आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कॉमेडी हो, या फिर व्लॉगिंग हो, या और भी कुछ हो जिसे आपको लग रहा है कि आप बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया पर प्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप एक कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर, या फिर सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। हाँ, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। क्या कुछ खास है इस करियर से जुड़ा, करेंगे इस बारे में बात। फिलहाल के लिए इस गाने को कीजिए एंजॉय, और दीपिका के साथ अपने साथ को बनाए रखिए।

आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, यहाँ पर आप अल्फा जैन। बात मैं कर रही हूँ कि किस तरह से कंटेंट क्रिएशन आज के वक्त में करियर का एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन में आप कैसे अपना करियर बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वीडियोस पोस्ट करना हुआ, फोटोज पोस्ट करना हुआ, ब्लॉगिंग हुआ, ऑडियो पॉडकास्ट, इस तरह के बहुत अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग वर्जन्स हैं। क्योंकि कॉन्टेंट क्रिएशन का मतलब सिर्फ लिखना नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं इंटरनेट के लिए एक क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करना है जिस पर इंगेजमेंट आए और जिसके जरिए फिर आपको भी वहां से अर्निंग होती है। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका स्किल या इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस में आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया। मसलन अगर आपका इंटरेस्ट डांसिंग में है तो आप डांसिंग के वीडियोज बनाकर पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, ऑनलाइन आप इन्हें पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन डांसिंग की कोचिंग भी दे सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है ऑनलाइन या सोशल मीडिया के जरिए करियर ऑप्शन को अपने सेटल करने का। बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, आपको कई स्किल्स हैं जो आने चाहिए। मतलब मैं कुछ बेसिक स्किल्स की बात कर रही हूँ जो कंटेंट क्रिएशन में आने ज़रूरी हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएशन के किसी भी तरीके को चुन रहे हो। कौन से हैं वो स्किल्स बताऊंगी। फिलहाल के लिए एक और गाना यहाँ आप तक पहुंच रहा है, इसे एंजॉय कीजिए दीपिका के साथ। अपने साथ को बनाए रखिए। और हाँ, करियर के बारे में जैसा हमेशा सब कहते हैं, जरूरी नहीं होता है कि आप वही करें। अगर आप ऑफ बीट कुछ चुनना चाहते हैं, अगर ट्रेडिशनल किसी करियर फील्ड में आपकी रुचि नहीं है, तो अपने स्किल्स को समझिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उसके बाद अपने करियर ऑप्शन को आप फाइनलाइज कीजिए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं

तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 आपके साथ मैं हूं दीपिका। प्रोग्राम है अल्फा जैन। बातें हो रही है कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया पर किस तरीके से बनाया जा सकता है करियर। जैसे मैंने जिक्र किया, सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर कंटेंट क्रिएशन में किस तरह का कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, आपका स्किल क्या है, आपका इंटरेस्ट किस तरीके के कंटेंट में है, और इसके बाद आपको उस तरह का कंटेंट क्रिएट करना शुरू करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जिसकी जानकारी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो मैंने बात कही थी कि कुछ ज़रूरी स्किल्स जो हर तरह के कंटेंट क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आपको बेसिक डिज़ाइनिंग आना बहुत ज़रूरी है। कई ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो बेसिक डिज़ाइनिंग आपको सिखाते हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग बहुत ज़रूरी है जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। इसके अलावा अच्छा कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी तरह की वीडियोज़ बना रहे हों, किसी भी तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हों, फ़नी कंटेंट हो, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला कंटेंट हो, या किसी भी तरह का हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने ज़रूरी हैं। इसके अलावा बेसिक वीडियो शूटिंग और एडिटिंग आपको आनी चाहिए। ये भी आप ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। आजकल कई कोर्सेज अवेलेबल हैं, कई एप्स हैं जिनकी मदद से आप आसानी से इसे कर पाएंगे। अब जब आपने डिसाइड किया कि आपको कॉन्टेंट क्रिएशन करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो यही है कि आप किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। आपने ये भी फाइनल कर लिया, आपने बेसिक स्किल्स भी खुद में डेवलप कर लिए। उसके बाद कंटेंट पोस्ट करते वक्त सबसे ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में आपको एकदम से अर्निंग आना पॉसिबल नहीं है। इसमें आपको धीरे धीरे लगातार कंटेंट पोस्ट करना है, और उसके बाद आपका कंटेंट जो है वो जब ग्रो करेगा, आपको अच्छी ऑडियंस मिलेगी, तो आपको एक स्टेबल कमाई जो है वो मिलने लगेगी। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंसी के लिए ये भी डिपेंड करता है, कई बार हमें लगता है कि इतने मंथ हो गए हमारा कुछ नहीं हो रहा, या किसी और ने तो तब कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, उसका तो जल्दी ही अच्छा होने लगा या जल्दी ही उसको रीच मिलने लगी। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि सबका कंटेंट क्रिएशन करने का तरीका अलग होता है, और किसको कितनी ऑडियंस किस समय पर मिलेगी, कौन सी वीडियो वायरल होगी या नहीं, इसकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में शुरुआत में कम व्यूज़ आना बिल्कुल लाजमी है, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ाना कंटेंट बनाना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसे फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है फुल टाइम करियर। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पहले आप कॉन्टेंट क्रिएशन में ट्राई करके देखना चाहते हैं, या फिर आपका कोई और करियर है, क्योंकि कई ऐसे भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट जॉब्स कर रहे हैं पर साइड बाय साइड वो कंटेंट क्रिएशन को मौका देना चाहते हैं, तो बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, कंटेंट क्रिएशन को आप एक फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं। कंटेंट क्रिएशन में राइटिंग भी एक बहुत अच्छा जरिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियोस ही बनाने हैं या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर ही बनना है। राइटिंग भी, कंटेंट राइटिंग भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ज़रिए आप अर्निंग कर सकते हैं। कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन

पर आप लिख सकते हैं, चाहे आप इसे फुल टाइम के तौर पर या फ्रीलांस के तौर पर या प्रोजेक्ट बेस्ड कर सकते हैं, जिसकी आपको बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर मिल जाएगी। यहाँ भी आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो की तरफ जाना चाहते हैं या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, तो आपको इन चुनौतियों को ध्यान रखना होगा कि शुरुआत में वक्त लगेगा, आप तुलना नहीं कर सकते किसी से, हो सकता है रोजाना कंटेंट बनाना भी आपको मुश्किल लगे। अगर आप इसे किसी फुल टाइम जॉब के साथ कर रहे हैं तो ये और डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप में पैशन है तो डेफिनेटली चीजें बेटर होंगी। यहाँ पर कुछ टिप्स भी हैं जो कंटेंट क्रिएटर्स ध्यान रखते हैं और जो आपको भी ध्यान में रखने चाहिए, उनके बारे में बात करेंगी। फिलहाल के लिए एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। दीपिका के साथ बने रहिए, और कंटेंट क्रिएशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर अगर मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके बारे में जानकारी लीजिए और फिर उस चीज को पूरी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और शुरुआत जरूर करके देखिए। सीधे डर जाना या ये सोचना हम कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए।

सोनू निगम की आवाज में फिल्म परदेस से आपने इस ट्रैक को सुना। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपके साथ मैं हूँ दीपिका। प्रोग्राम है अल्फा जैन। बातें हो रही है कि किस तरीके से आप बना सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर, सोशल मीडिया पर किस तरीके से आप करियर बना सकते हैं, क्योंकि जैसा शुरुआत में मैंने जिक्र किया था, सोशल मीडिया सिर्फ वक्त बिताने का एक जरिया नहीं है बल्कि कमाई का भी एक बेहतरीन जरिया आज के वक्त में बन गया है। और आप सभी इस बात को जानते ही हैं क्योंकि हम सभी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से लोग इसके जरिए कमाई कर रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं या अपना नाम कमा रहे हैं। अब अगर आप कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको नियमित रूप से पोस्ट करना होगा। इसके अलावा ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर काम करना भी बहुत जरूरी है। हालांकि ये काफी हद तक इस पर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके का कॉन्टेंट बना रहे हैं। अगर आप जिस तरीके का कॉन्टेंट बना रहे हैं उसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कॉन्टेंट बनाया जा सकता है तो इस पर काम कीजिए, इस पर रीच अच्छी मिल सकती है। ऑडियंस से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑडियंस से कनेक्ट नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंटेंट को रीच मिलने में और एंगेजमेंट मिलने में मुश्किल आती है। क्वालिटी बहुत जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि कुछ भी पोस्ट कर देने से काफी है, उतना कि कुछ भी बस पोस्ट कर दिया जाए, पर नहीं, क्वालिटी और ओरिजिनल कंटेंट पोस्ट करना बहुत जरूरी है जब आप बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की। तो इन छोटी छोटी सी बातों का आपको शुरुआत में डेफिनेटली ध्यान रखना होगा जब आप कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत, जब आप कंटेंट क्रिएटर बनने की कर रहे हैं कोशिश।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में

0: गीत, वीडियो कॉल, ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: आए हाय,
2: तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दीपिका है आपके साथ। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बात कर रहे हैं हम कंटेंट क्रिएशन में कैसे बनाया जा सकता है करियर। बहुत सारी बातें यहाँ डेफिनेटली हो चुकी हैं और अब एक टॉपिक, एक पॉइंट जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये है कि सबके मन में ये ख्याल आता है कि आखिर सोशल मीडिया से कमाई होती कैसे है। तो देखिए, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन मिलता है, मतलब कुछ पर्टिकुलर व्यूज के बाद आपका कंटेंट जो है वो मोनेटाइज होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ब्रांड कोलैब से आपको सोशल मीडिया के जरिए पैसे मिलते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स या क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं तो पेड पोस्ट से भी आपको से मिलते हैं। अब बात आती है कि इसमें कितनी कमाई हो सकती है। तो देखिए, इसमें शुरुआती ग्रोथ में वक्त लगता है। कमाई कितनी हो सकती है ये भी काफी हद तक आपके कंटेंट की रीच, आपके कंटेंट की क्वालिटी, आपके फॉलोअर्स, आपकी एंगेजमेंट पर डिपेंड करता है। तो एक प्रॉपर फिगर कोट करना यहां पर मुश्किल होगा, लेकिन हाँ, कॉन्टेंट क्रिएशन एक अच्छा करियर बन सकता है, एक अच्छा करियर ऑप्शन आज के टाइम में निकल कर आया है। अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आप डेफिनेटली इसे अपने करियर के तौर पर चुन सकते हैं। और अगर आप साइड बाय साइड इसे एक ट्राई देने की सोच रहे हैं या फिर एक मौका देने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप दीपिका के साथ है प्रोग्राम यहाँ पर आप सुन रहे हैं, या यूं कहूं प्रोग्राम यहाँ पर आप सुन रहे थे अल्फा जैन। जी हाँ, आज करियर पाथवे में हमने बातें की कि आखिर कंटेंट क्रिएशन में सोशल मीडिया में किस तरीके से बनाया जा सकता है करियर, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आजकल अवेलेबल हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन भी बढ़ रहा है। बहुत ज़रूरी है आप अपने स्किल्स को समझें, आप अपने इंटरेस्ट को समझें, आप अपनी हॉबीज़ को समझें, और ये भी समझें कि आपकी जो हॉबी है कि क्या उसे करियर में कन्वर्ट किया जा सकता है या फिर उसे एक हॉबी ही रखना होगा। आपको इन सारी बातों पर गौर करना है, अपने बड़ों की सलाह लेनी है और उसके बाद किसी भी करियर ऑप्शन पर पहुंचना है। इसके अलावा अगर कई बार करियर स्विच करते वक्त हमें थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई करियर जो आपने चुना है जिसमें आप ठीक से फिट नहीं बैठ रहे हैं, अपने करियर के साथ या अपने साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं और स्विच करने का सोच रहे हैं, तो उसमें भी आपको फैसला लेना चाहिए, लेकिन हाँ, सोच समझ कर लेना चाहिए। पर जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। हाँ, एकदम से गुस्से में या फिर जिद में आकर कोई फैसला लेना करियर के लिए या किसी भी बात के लिए सही नहीं है, पर अगर लग रहा है कि कुछ बदलना चाहिए तो आप ज़रूर बदल सकते हैं। बाकी बात रही कंटेंट क्रिएशन की, सोशल मीडिया की, तो एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आज के वक्त में निकल कर आया है जिसमें काफ़ी लोग करियर बना रहे हैं। जेन ज़ी हुए वो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन 90s बॉर्न जो है वो भी ऐसा नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन में, बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी जो सीनियर लोग हैं जो हमसे भी ज़्यादा हैं उम्र में, वो भी इस तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। तो ऐसे में आप भी इसे एक ऑप्शन बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको देनी होगी दीपिका को इजाज़त। जी हाँ, इस प्रोग्राम में आज के लिए दीपिका को आपको इजाज़त देनी होगी। जाते जाते वही कहूँगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते ज़िंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे, क्योंकि यही

अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। 5 बजे से आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, गीतांजलि जुड़ेंगी आपके साथ, शहर की हलचल से करवाएंगी आपको रूबरू। तो बस आप आकाशवाणी रेनबो के साथ बने रहिए और दीपिका को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल का नेते के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी में मनादीपेट में निर्वाचित विधायक ए नमस्शिवम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी,

0: देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोगों और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और उनके अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। दिल्ली में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र में आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: जी बिल्कुल, इस वक्त इस वाणी की बहुत जरूरत है क्योंकि आपकी और हमारी वाणी मिलकर क्या मैजिक क्रिएट करती है। टाइम हो गया है आपके अपने सिटी लाइट्स का और मैं वही हूँ आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी। हमेशा की तरह सिटी लाइट्स खास रहते हैं, आज भी बहुत स्पेशल है। मौसम के बारे में जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे, इवेंट क्या हो रहे हैं सिटी में वो बताएंगे और फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जानकर आपको वाकई बहुत खुशी होगी, उसके लिए तो आपको मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट टाइम है, अभी 5 बज चुके हैं। जी बिल्कुल, 5 मिनट हो चुके हैं 5 बज के और स्टूडियो में मेरे साथ 6 बजे तक रहने वाले हैं। नंबर आप जानते हैं हमारे व्हाट्सएप का, लेकिन हम इस शो में उसी लिए यूज़ करते हैं जितना आप अपना हमें मैसेज बता सकें। कुछ ऐसी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है कि प्लीज़ टॉक अबाउट इट, तो उसको हम पढ़ लेंगे।

आपको पता है प्रॉपर मैसेजेस सिटी लाइट्स में नहीं पड़ जाते 9868107070। दिस इज द मैजिकल नंबर और अभी आपकी मैजिकल बातें हम भी जानेंगे आपके मैसेजेस से। फिलहाल सबको बुला लो, स्टार्ट हो चुका है सिटी लाइट्स।

जी बिल्कुल, ढोलना से तो बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं आप। अभी तो देखिए हम आके बैठे हैं, अभी आए अभी बैठे, कई बार मैं सुना चुकी हूँ आपको, लेकिन आपकी जो फरमाइशें हैं वो शुरू हो जाती हैं। अभी जो समय की फरमाइश है वो ये है कि भाई मौसम का क्या हाल है। तो देखो एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, मैंने अपनी खिड़की से बाहर मुड़कर देखा है तो बड़ा प्यारा वेदर लग रहा है। स्टूडियो में बैठ के तो वेदर बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अभी वेदर कल से थोड़ा सा अच्छा, इनफैक्ट परसों रात से थोड़ा सा अच्छा प्लेजेंट सा लग रहा है, लेकिन आप जानते हैं मौसम का मिजाज, देखिए गर्मियां तो आई गई हैं, पदार्पण हो ही गया गर्मियों का, तो ये थोड़ा सा गर्म थोड़ा सा ठंडा माहौल चलता रहेगा। लेकिन आज वैसे एस्थेटिकली बताऊँ तो 31 डिग्रीज़ मैक्सिमम और 21 डिग्रीज़ मिनिमम टेम्परेचर, और अभी के लिए जो इस वक्त टेम्परेचर है 27 डिग्री है दिल्ली में। तो ये मुझे आप बताइए कि आप मौसम से अच्छे से डील करना सीख गए हैं कि नहीं सीख गए हैं, कि अभी तक वही बातें होती हैं कि क्या करें, गर्मी है तो गर्मी से खुश नहीं है, सर्दी है तो हाय राम सर्दी में मर गए, बारिश है तो छी ओ गॉड इतना कीचड़, कैसे चलेगा काम। हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं कि हम भारत में रहते हैं, सारे वेदर हमें देखने को मिलते हैं, सूर्य देवता आते हैं, फिर चंद्र देवता तो ऐसे ही बहुत ही प्यारे लगते हैं, और दूसरी बात क्या है कि जब बारिश होती है ना तो फिर जितनी भी हमारी कुकरी एक्सपर्ट्स मदर्स हैं सिस्टर्स हैं वो सब पूरा कमाल कर देती हैं हमें खिला खिला के। और क्या चाहिए, आज जैसा भी वेदर है उसको एंजॉय कीजिए, बस इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपको गर्मी लगती है तो एकदम बर्फ़ वाला ठंडा पानी पी के बाहर ना निकलें, थोड़ा सा रेस्ट करें, बेसिक चीज़ें सबको पता ही है, समझदारी से काम लेंगे तो आप भी इंजॉय करेंगे और आने वाले जितने भी वेदर हैं ना वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सिटी लाइफ में बहुत सारी और अच्छी बातें सुनते रहेंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें फिर से आपकी तरफ से लिटली एज एन एडवाइस और प्यार मुझ तक पहुंच गई हैं। लेकिन देखो, मुझे पता है बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहे होंगे कि फिर कल सुबह जल्दी निकलना है या फिर कुछ अच्छा सा प्लान करके निकलेंगे, होता ही है ना। तो भाई, कल के लिए मैं अभी आपकी प्लानिंग सेट कर देती हूँ। उसका कारण ये है कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो लाइकली अफेक्टेड एरियाज़ रहेंगे कल ट्रैफिक के मामले में। वो क्यों, कैसे, वो बताती हूँ आपको। क्योंकि ऐसा है कि कल एक विज़िट होने वाली है VVIPs की एट राजघाट, तो बहुत स्पेशल ट्रैफिक अरेंजमेंट किए गए हैं विच विल बी इन प्लेस फ्रॉम 9 AM टू 11 AM। एक ऑफिशियल फंक्शन है एट महात्मा गांधी स्मृति स्थल। तो अब आपको कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको एब्सोल्युटली अवॉइड करने हैं? दोज आर राजघाट चौक, ITO चौक, दिल्ली गेट चौक, गुरु नानक चौक, राजघाट DTC डेपो एंड IP फ्लाईओवर। ये तो आपको 100% अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपका ये डेली का रास्ता है, यहाँ से जाते हैं, तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मतलब बंद कर दीजिए मतलब उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं जाना आपने। और उनके लिए खासकर ये एडवाइजरी है कि जो प्लान कर रहे हैं ना ट्रैवल अपना, एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, या फिर उनको कोई अर्जेंट काम है इन्हीं रस्तों से, तो प्लीज़ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम ले कर निकलें, बिकॉज़ यू कैन हैव अ डिफ़िकल्ट टाइम अगर आपको ट्रैफिक मिलता है तो। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ डू नॉट पार्क योर व्हीकल्स एनीवेयर। जहाँ पे पार्किंग की डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं वहीं पे अपनी गाड़ियाँ या बाइक पार्क करना, वरना आपको पता है फिर क्या होगा, उठ जाएंगी, फिर भागोगे आप, परेशान होगे। तो भाई, कोई भी ऐसी चीज़ जो ट्रैफिक के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको ट्रैफिक पुलिस बहुत ही सीरियसली लेगी। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ अबाउट टुमारो मॉर्निंग, यानी कि 6 तारीख 6 मई 2026। और आज क्या है, मुझे हंसी आती है, आज तारीख वही है जो आप जानना चाहते हैं जी, 5 तारीख है। बिल्कुल, बहुत ही प्यारी डेट है उनके लिए जिनके बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, और ऑलरेडी बहुत सारी विशेस के लिए रिक्वेस्ट आ गए हैं। देंगे विशेस सबको, बैठने तो दो, सुनने तो दो कि क्या सुनना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं लोगों को। फिलहाल मैं भी बहुत सारी बातें आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन बस यही सोचती हूँ, इतने प्यारे हैं आप, ज़्यादा आपकी तारीफ़ें कर दूँ तो कहीं नज़र ना लग जाए आपको।

कौन कौन लोग नज़र में मानते हैं, मतलब वाकई लगता है कि अरे नज़र लग जाएगी, नज़र लग जाएगी कहते हैं ना बच्चों को, तो बहुत बड़े बड़े प्यारे से टीके बिल्कुल राइट ऑन द फोरहेड माएँ लगा देती हैं, नानी दादियाँ लगा देती हैं कि हमारे बच्चे को नज़र ना लग जाए. बट अदरवाइज आई थिंक ये अब तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन फिनोमिना हो गया. मैंने बड़े बड़े बच्चों को बोलते हुए देखा है कि प्लीज़ बार बार मत बोलो नज़र लग जाएगी, ये काम करने जा रही हूँ किसी को बताना मत नज़र लग जाएगी. या फिर एक और मुझे लग रहा है जो ख़बर मैं आपको देना चाहती हूँ, टचवुड कर लूँ नहीं तो नज़र ना लग जाए, जी नज़र ना लग जाए कहीं पॉल्यूशन को. क्योंकि देखिए ऐसा है कि अभी दिल्ली NCR से हट गया है ग्रैप वन. वो इसलिए हट गया क्योंकि पीछे जो 5-6 दिन है उसमें थोड़ा प्रदूषण कम है. ऐसे में क्या होता है, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट होती है ना, वो डिसाइड करती है कि भाई अभी कम है पॉल्यूशन तो ग्रैप हटा दें क्या. सो दे हैव डिसाइडेड ड्यू टू दैट रीज़न कि चलिए ग्रैप वन को हटा दिया जाए. आपको तो पता ही है कि 16 अप्रैल को दिल्ली NCR में ग्रैप का जो फर्स्ट चरण जिसे हम कहते हैं वो स्टार्ट किया गया था. और अब देखिए बिकॉज मौसमी जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल हैं, इट्स नाइस एंड ब्रीजी एंड ब्रीदेबल, टचवुड कर लूँ नज़र ना लग जाए. ये बातें होती हैं पता है, ये बहुत लोग करते हैं. खैर जब तक आप हमारे साथ हैं नज़र नहीं लगने देते, नज़र तो लगेगी नहीं आपको. आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना और चाहते हैं, तो भाई सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ अभी आप हमारे साथ बहुत ही प्यार से जुड़े हैं. अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आपको पता है आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, और अगर आप सालों से जुड़े हैं तो आप जानते ही हैं आप सुन रहे हैं आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के ओनलियन स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 मेगा माइंड ब्लोइंग हर्ट्ज. और माइंड ब्लोइंग सी बातें हम करते ही हैं सिटी लाइट्स में. आप भी बहुत सारे माइंड ब्लोइंग सॉन्ग्स भी सुनना चाहते हैं, लगातार प्ले कर रही हूँ, सुनते रहिए.

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

जी बताइए बताइए, बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन दीजिए. आई एम ऑलवेज वेटिंग. और थैंक यू सो मच, थैंक यू. एक बार फिर से आपको कह देती हूँ, मैसेज आया है कि पहले हम लोग चिढ़ते थे ना जब बारिश आती थी, लेकिन जब इतनी बार आपने बता ही दिया तो बारिश अच्छी लगने लगी. मैंने क्या बताया, मैंने तो रियलिटी बोली है भाई. हम लोग हमेशा किसी ना किसी चीज़ को लेकिन अनहैप्पी हो जाते हैं कि ये नहीं जम रहा, वो नहीं जम रहा, इसीलिए मैंने बोला था. बट आई एम ग्लैड दैट आप लोग एडजस्ट करना सीख गए हैं और बहुत सारी चीज़ों से एडजस्ट आप कर सकते हैं. आपको पता है, ये तो आपको खबर मिली गई होगी कि आपका पासपोर्ट जो इंडियन पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है, बिकॉज 58 कंट्रीज़ में अगर आप ट्रैवल करते हैं ना तो अब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है वीज़ा के लिए भागने की. सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी सीरियस अपग्रेड, आपको पता होना चाहिए है ना. मज़ा क्या है ना, जब आप वीज़ा फ्री या फिर वीज़ा ऑन अराइवल या बहुत एक्सेसिबल वीज़ा होता है ना, तो जाने में आसानी हो जाती है. आप वेकेशन प्लान अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आपको मालदीव जाना हो, नेपाल जाना हो, श्रीलंका जाना हो, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं. तो यहाँ पर आपको वीज़ास की दिक्कत नहीं होगी. बाकी जो जगह हैं वो तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज नाम इतने वो डिफरेंट है कि आप कहेंगे मतलब ये जगहें हैं कौन सी, आप मुझे नया बता रहे हैं. तो वी विल सी एंड गो, बट राइट नाउ जो बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस है वे यू वांट टू गो, एट दोज प्लेसेस आप आराम से जा सकते हैं, बिकॉज जहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है वहाँ पर भी सुख है, और जहाँ पर आपको वीज़ा नहीं देने की ज़रूरत वहाँ पर भी सुख है. सो इट्स ग्रेट. लेकिन और भी सुखी रखने का आपको एक मैं तरीका बताती हूँ अपने आप को, कि जितनी भी चीज़ें आप अपनी सराउंडिंग्स में सुनते हैं देखते हैं उसको ना सीरियसली अपने दिमाग में बिठाया कीजिए. जैसे हम मोस्टली लोग जो मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, हम भी मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है. आए दिन मेट्रो में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता रहता है, लड़ाई झगड़ों के वीडियोज़ आते हैं और चोरी के वीडियोस आते हैं कि वो जेब कतरे हैं, जेब काट ली. आपको जान के खुशी होगी कि एक तो फ़ोन चोरी का गैंग पकड़ लिया गया जो मेट्रो में फ़ोन चोरी कर रहा था. लेकिन इसका मतलब ये है कि आप चाहे कितना सरकार से एक्सपेक्टेशंस कर लें, जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं रखेंगे कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहेगी. क्योंकि आप देखते हैं ना कितने साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, कितने सारे ऐसे फर्जी आपके पास फ़ोन आते हैं कि आपका लोन पास हो गया, लोन ले लीजिए, इसके

दैट इज एक्चुअली रियल माई फ्रेंड. ये ट्रेंड मजाक की बात अलग है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, सोचेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सिविक सेंस कहते किसको हैं. बिकॉज सिविक सेंस का मतलब होता है कि जब आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मुझे किसी ने बोला क्या ये ओवररेटेड चीज़, सिविक सेंस क्या होती है. देखिए, सिविक सेंस होती है जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना, तो आपको कैसे बिहेव करना है आपकी सोसाइटी के अराउंड, दैट इज़ कॉल्ड योर सिविक सेंस. कैसे आप खा रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, अगर कोई बात कर रहा है तो उसको धक्का दे के ना निकल जाए, अगर कोई हड़बड़ी में भाग रहा है तो आप साइड होके जगह दे दें, अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप उसको जगह दे दें उसकी गाड़ी को जाने की. दीज आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सिविल सेंस. बहुत सारी और चीज़ें आप डाल सकते हो, लेकिन ये मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप रेगुलर ट्रैवल करते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि हर दूसरे दिन लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाइए. बिकॉज एवरी सिंगल डे मेट्रो हैज सम और दी अदर इंसिडेंट, जस्ट बिकॉज एक सिविक सेंस मिसिंग है. लोग नहीं बात करना चाहते उस बारे में, लेकिन मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेट्रो में बैठ के, अगर सामने लिखा है खाना ना खाएं, तो प्लीज़ मत खाएं. अगर आपको इतनी भूख लगी है बाहर बैठ के, हर दो मिनट में मेट्रो आती है, प्लीज़ खा लें. कुछ लोग जो जेन्युइनली आपको बोलते हैं उनका दिल खराब हो रहा है, दे विल प्यूक, दे मीन इट. लोग भेलपूरी लेके मेट्रो में घुस जाते हैं और भेलपूरी के जो प्याज की स्मेल है ना, वो बिल्कुल नहीं जाती है. ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ. मैंने उस वजह से भी लड़ाई देखी कि लेडी थी, शी सेड कि मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी, मैं आई एम गोइंग टू प्यूक, आप निकलें बाहर. वो भी बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया. कोल्ड ड्रिंक पी के, मिल्क शेक पी के, बिल्कुल मेट्रो की सीट्स के नीचे रख देते हैं और उसका रेजिड्यू जैसे ही वो ब्रेक्स लगती हैं वो गिर के पूरा फैल जाता है. प्लीज़ ये चीज़ें नेवर एंडिंग है, मैं लगातार बोल सकती हूँ, बट राइट नाउ मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ एक बार फिर, प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें. एंड नाउ जिस हिसाब से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, प्लीज़ डू नॉट टेक मैटर्स इन योर हैंड. आप मेट्रो अथॉरिटीज़ को वहाँ पे टेलीफोन नंबर दिए होते हैं, फ़ोन कर दें, उनको बता दें, एंड जस्ट मेक श्योर कि पीसफुली चीज़ों को हैंडल कर लें. बट इंडिविजुअली प्लीज़ ध्यान रखें, ये चीज़ें रिपीट ना हो, आपके पीस के लिए, आपके आसपास वालों के पीस के लिए बहुत ज़रूरी है.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जी बिल्कुल, ये है आकाशवाणी रेनबो और आप सुन रहे हैं आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनिक ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। नेशन का प्यार इतना अथाह है ना कि जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। अब मुझे फील होने लगता है इस वक्त से कि हाँ भाई, अब मुझे थोड़ा और ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी ले लेनी चाहिए, बिकॉज़ इट्स ओनली अबाउट 23-24 मिनट्स लेफ्ट। तो अगर आप कुछ और भी कहना चाहते हैं तो फटाफट से लिख दीजिए, मैं सुन भी रही हूँ आपकी दिल की बातें अपने दिल से, क्योंकि दिल से दिल तक का कनेक्शन है ना, और फिर पढ़ तो रही हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, बिकॉज सिटी लाइट्स है, भी सिटी में जो भी हो रहा है लगातार आपको बताया जाता है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं तो पहले बता दी जाती हैं। एक मैं और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको इंडिकेट किया था कि आजकल आपके पास बहुत सारे साइबर क्राइम के नए नए इंसिडेंट्स आ रहे हैं, और उनमें नए नए तरीके, जितने पकड़ लिए जाते हैं उसे दुगनी स्पीड से खोज लिए जाते हैं। तो आपके पास आ रहे होंगे मैसेजेस मेरे फ़ोन पे, बिलीव यू मी, इतने मैसेजेस आते हैं कि कोई आपका अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। आप अपना OTP दीजिए, हम मतलब बैंक से उसका अपना कार्ड का नंबर दीजिए, तो हम उसको आप कनेक्ट कीजिए, मतलब किसी ना किसी बहाने से डिटेल मांगते रहते हैं। देन लोन अप्रूव हो गया आपका, इंस्टेंटली लोन लेने के लिए इस नंबर पे डायल करें, आप डायल करोगे तो उसमें वो ऑटोमेटेड होता है, वो कहता है अपना अपना पिन बताएं, और फिर आपके डिटेल्स लेके और आपके बैंक से पैसे निकल जाते हैं। तो लोन तो आपको क्या ही मिलना है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ, बिकॉज़ ये हमने कई बार बहुत डिटेल में बातें कर ली हैं। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि सावधानी कैसे बरतनी है एक बार फिर समझ लीजिए आप। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ही आसानी से मिल रही है, माय फ्रेंड, इट्स नॉट वर्थ इट। देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी आपको मुफ्त में नहीं मिलता है, ये बात मान के चलिए। हर चीज़ की कीमत होती है, कहीं आपको समय देना पड़ता है, वो भी कीमत है आपकी, पैसे देने पड़ते हैं वो तो कीमत है ही, कहीं आपको अपने स्किल सेट को फ्री में देना पड़ता है वो भी कीमत है आपकी। तो देखिए, सबसे बड़ी जो बात है ना, वो आपको ये समझनी है कि अपने घर के बड़ों को खासकर, उनको आप बता दीजिए कि इस तरीके की किसी चीज़ों में ना आए। अगर फ़ोन लेके कोई डिटेल मांग रहा है तो प्लीज़ उसको कोई डिटेल ना दें। अगर ये फ़ोन करके कह रहा है कि देखिए फलां फलां आपके बच्चे को, आपकी बेटी को, आपके भतीजे को, आपके कज़न के साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आप वहाँ पहुँचिए, फलाना अस्पताल में ढलाना, जब तक आप मारामारी करने की कोशिश करते हैं वो आपको फिर फ़ोन कर देते हैं, ये कह के कह रहे वो इमरजेंसी है, इमरजेंसी है, आप बताइए वो पैसे सबमिट करने हैं तो आप किसी को भेज सकते हैं, या फिर आप मेरे को पेटीएम कीजिए अर्जेंटली, पैसे तो ज़्यादा हैं, आप मुझे अभी खाली इतने पेटीएम कर दीजिए, बाकी मैं दे देता हूँ, मेरे पास इतने। तो मतलब सिंपथी भी ले लेते हैं और पैसे भी ले लेते हैं। तो कहने का मुद्दा ये, चीज़ों का जो लबोलुभाव ये है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत अर्जेंसी में हो रही है, घबराएं ना, पहले आप डबल कंफर्म कर लें, लोगों को फ़ोन करें अपने नोन को कि ये मुझे कॉल आ रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बात है, किसी से मदद चाहिए आपको, सो डू रीकन्फर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात एक बार फिर मैं दोहराना चाहती हूँ कि घर के बड़ों को खासकर, आप घर में अगर अकेले होते हैं किसी को भी ईजी एंट्री ना दें, ये कह के कह रहे कोई कुरियर डिलीवरी आया है, कोई गैस ठीक करने वाला आया है, कोई AC सर्विस करने वाला आया है, किसी को आपके बिजली के मीटर चेक करने हैं। आप एक चीज़ बोलें कि हमें अभी आपको नहीं बुलाना क्योंकि हमें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने आपको बुलाया नहीं, आप जब बच्चे घर में हों तब आप आइएगा, उनको पता होगा। डू नॉट लेट एनीबडी एंटर अननेसेसरीली, जिसको आप नहीं जानते बिल्कुल भी, और मैं तो कहूँगी जिसको जानते भी हो ना, आप उसको भी बहुत ईजी एक्सेस ना ही दो आजकल जहाँ पर जो ज़माना जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, मैं यंगस्टर्स को खाली इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपने

जो बड़े हैं ना, बुजुर्ग हैं आपकी सोसाइटी में, आसपास घर में, अगर आप उनको डायरेक्टली नहीं भी जानते हैं तब भी आप कोशिश करें, अगर आप कभी देखें उनको ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं ये फंस सकते हैं, इमीडिएटली यू गो हैड एंड मेक श्योर कि दे आर फाइन। और अगर आपको लगता है कि उनको कोई एक्सटेंडेड हेल्प, कहीं पुलिस में फ़ोन करना है या कोई अदर हेल्प करनी है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू हेल्प देम। बिकॉज पता है क्या होता है ना, हम लोग को लगता है कि हमारे लिए चीज़ें ईजी हैं तो उनके लिए भी ईजी हैं, बट ऐसा नहीं होता है ना, बिकॉज उन्होंने देखी नहीं है ये सब चीज़ें, उनको पता ही नहीं है, वो लोग इतने शार्प नहीं हैं। तो इसलिए यू मेक श्योर कि आप हेल्प करें उनकी भी, और मेक जनरल पीपल अवेयर ऑल्सो अबाउट थिंग्स अगर आपको पता है तो। इट्स इम्पॉर्टेंट है।

कई गाने हैं ना थोड़े से ऐसे लगते हैं कि यस्टर यस टाइप हैं, लेकिन होती है एक बीट होती है ये गाने में। पलक मुंचाल की एक बहुत ही टिपिकल आवाज़ है ना, ऐसा क्यों हा ना ना ना ना ना, ऐसे है ना थोड़ी सी बीट है तो आती है। लेकिन मेरे मेरे दिल की जो बीट है ना वो इसलिए बहुत क्या बोलूँ तेज़ी से बजती है, बिकॉज इतने सारे लोगों की एनिवर्सरीज बर्थडेज और सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि प्लीज़ हमारा नाम ज़रूर से ज़रूर ले लेना, आज इतना बड़ा दिन है, दिल टूट जाएगा। आपको पता है हम भी बहुत कड़ा दिल करके ना, मतलब कड़ा नहीं मैं कह सकती, कुछ चीज़ें जो नियमों से हाथ बंधे होते हैं ना, तो सबके नाम कैसे ले सकते हैं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये

हमारे पास जो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, अगर आप सुन रही हैं ना इस वक्त, आई होप आप सुन रही हैं. क्या होता है ना, लोग बोलते हैं कि आपने हमारा नाम नहीं लिया, कई बार हम ले भी देते हैं तो आप सुनते ही नहीं हैं. आई होप आप सुन रही हैं इस वक्त, और मेक श्योर जिनको भी अपनी बर्थडेज और एनिवर्सरी की विशेज सुनिए, फटाफट से आ जाओ अपने रेडियो सेट के पास, या फिर अपने मोबाइल को अपने कानों के बहुत पास ले जाओ, और अपने कज़न्स को जिनके बर्थडेज़ की आप विशेज़ मांग रहे हैं, अपने सिस्टर्स की, अपने भाभी की एनिवर्सरीज़ की विशेज़ मांग रहे हैं, तो सबको बता दीजिए मैं विश दे रही हूँ सबको अपनी तरफ से. जी बिल्कुल, आपके अपने गज़ब की गीतांजलि सोनी की तरफ से, हमारे पूरे आकाशवाणी फैमिली की तरफ से, रेनबो फैमिली की तरफ से. और अमरावती में मैं ये मैसेज इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि क्या है ना, उनकी शादी को 27 साल हो गए, वो कह रही हैं, और हंसते खेलते हमारा संसार अभी आपकी दुआ से शुरू, अच्छा शुरू है, वेरी नाइस. और वो ये कह रही है, अच्छी बात ये है कि हम दोनों बहनों की शादी एक साथ हुई थी, तो इसीलिए मुझे लगा ये बड़ा आप लोगों के लिए यूनिक ओकेजन होगा. सो आई जस्ट विश यू अ वेरी वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी. और जितने भी बच्चों का आज बर्थडे है उनके लिए विशिंग यू अ वेरी हैप्पी

और देखिए बात करते करते ना मैसेज आ गया, प्लीज़ मायरा डोगरा के लिए विश कर दीजिए, उनकी प्यारी भांजी हैं अमर कॉलोनी गोकुलपुर से दिनेश ने लिखा है। सो मायरा थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव लाइट एंड प्रेजेंस। हमारे शो में ना बहुत सारी अच्छी चीज़ें ये होती हैं कि लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हैं और हम तो कनेक्टेड हैं ही हैं। बाकी अब जाने का स्टूडियो से समय बहुत ही पास आ रहा है और अभी मुझे लगता है ना ये जो मैं आपके लिए गाना प्ले करने वाली हूँ ये सब का पार्टी मूड बना देगा, क्योंकि मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ अपना कोई फेवरेट सॉन्ग ज़रूर प्ले कर दीजिए हम सब के लिए। सारे गाने मेरे फेवरेट हैं लेकिन इससे थोड़ा सा ना डांस का मूड बन जाता है, बस ये बात है।

0: लड़के।
1: देखिए इनके आवाज़ को भी कितना लोगों ने, इनके अंदाज को कितना क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन नेहा कक्कड़ की बात कर रही हूँ। तो अप एंड डाउन हर जगह आते हैं, अप्स आर ऑलवेज अप्स बट डाउन्स आर रियली डाउन व्हेन इट कम्स। बट राइट नाउ मैं आपको बहुत ही अपलिफ्टिंग स्पिरिट के साथ छोड़ के जाना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए इतनी सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो हमें अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सरकार करती है, दिल्ली पुलिस करती है, और लगातार हम आपको बताते रहते हैं। अब देखिए जैसे समर हॉलीडेज आ गई है ना, तो समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रही है दिल्ली पुलिस, जिसको कहते हैं 22वां ग्रीष्मकालीन शिविर 2026, या सशक्तिकरण और आत्मरक्षा तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा, यानी कि अपनी सेफ्टी के लिए। तो इसमें स्कूल और कॉलेज की जितनी भी लड़कियां हैं ना, चाहे फिर वो कामकाजी महिलाएँ हों, गृहिणियाँ हों, सबके लिए। तो आप अपने कन्वीनियंस से यहाँ पंजीकरण करा सकते हैं, सुबह 10 बजे से 4 बजे तक, सिर्फ संडे को नहीं होगा। अरविंद गुप्ता डीएवी स्कूल है मॉडल टाउन में, सरस्वती बाल मंदिर है अशोक अपार्टमेंट के पास है पश्चिम विहार में, सरकारी सह शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है द्वारका सेक्टर 2 में, और बाल भवन पब्लिक स्कूल है पॉकेट बी मयूर विहार में। तो यहाँ पर पंजीकरण हो रही है। अगर आपको लग रहा है आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ आप कॉल करके पता कर सकते हैं, 6828400654 एंड 011 कोड है अगर आप लैंडलाइन से फ़ोन करेंगे, या फिर मोबाइल से 2086549। एक बार फिर से आपको मोबाइल नंबर बता देती हूँ, क्योंकि लोगों को वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, 6828400654। बिल्कुल यहाँ का रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है, 4 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये 20 मई तक चलेगा। सो मेक श्योर अगर आप चाहते हैं, अगर और भी कोई हेल्पलाइन आप चाहते हैं महिलाओं के लिए, तो वो 1091 है और नंबर है 7835075012। ये आपको इसीलिए बताया जाता है कि कई बार लोग कहते हैं ना, हम ये कर नहीं पाए हैं क्योंकि हमें लगा कि फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन आ जाएगा। तो जब ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं ना, जिसमें आपका पैसा नहीं खर्च होना, बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता, तो प्लीज़ उसको यू मेक श्योर आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करें, एंड यू कैन एनकरेज ऑल द फीमेल्स हु आर देयर, एंड मेक श्योर कि आप अपना ध्यान रखें, अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, ट्रैफिक के रूल्स का ज़रूर पालन करें, और अगर हम लोग अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखेंगे, तो हम अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे, अपने देश का ध्यान रखेंगे, और हमारा देश प्रगति बहुत तेज़ी से कर रहा है, और हम सबके सपोर्ट से और ज़्यादा तेज़ी से करेगा। अब आपको अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी को देनी होगी इजाज़त। जी बिल्कुल, जल्दी आपसे मुलाकात होती है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुश रहने के लिए कोई बहाना ना ढूंढें, और खुश रखने के लिए कोई बहाना ना ढूंढें। हैप्पीनेस इज़ अ नेचर, डिवेलप दैट नेचर एंड यू विल बी हैप्पी फॉर श्योर। अब देखिए फाइनली मुझे अपनी गप्पों को विराम देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैसेज मसाला में एक स्पाइसी सा आपको सुनने को मिलेगा, उसमें आपके सारे मैसेजेस भी पढ़े जाएंगे। तो बस सबीहा आ गई हैं स्टूडियो में, और फिर वो लेके चलेंगी आपको आगे की जर्नी में। फिलहाल मैं आपको आगे की जर्नी में ज़रूर लेके जाऊँगी, लेकिन किसी और दिन। अभी के लिए गज़ब की गीतांजलि कह रही है, अरे हंसो, खुश रहो, खुश रखो सबको, बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की

0: शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वीवयम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति के हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए थे। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी। उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। दिल्ली में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह फिट एंड फाइन इसी आशा उम्मीद के साथ आन पहुंची है स्टूडियो में आपके साथ आपके दिल की आवाज आरजे सबिया नकवी फुल एनर्जी के साथ वड्डे वाला वेलकम है जी आप सभी का शो ट्रिपल एम। जी हाँ, मैसेज मसाला मिक्स, ये है आपका सभी का फेवरेट डेजी डोज प्रोग्राम जिसमें हम करते हैं डायरेक्ट दिल से दिल तक की बात। पूछा जाता है आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल, उस पर ढेर सारे आपके दिलचस्प जवाब आते हैं। जी हाँ, आज का वो कौन सा सवाल होगा जो मैं आपसे पूछूंगी, इसके लिए आपको करना पड़ेगा छोटा सा इंतजार। और छोटा सा जो गाना मैंने यहाँ सबसे पहले आपके लिए क्यों करके रखा है, उसमें ही छुपा है आज का सवाल। तो आप काफी हद तक अनुमान भी लगा सकते हैं कि आज मैं क्या पूछने वाली हूँ आपसे। और मुझे लगता है कि आज बड़े ही दिलचस्प जो जवाब है मुझे सुनने के लिए मिलेंगे, इंटरेस्टिंग जवाब मुझे सुनने के लिए मिलेंगे। तो आपको भी बने रहना है मेरे साथ। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ उसका आप मुझे कम शब्दों में लेकिन एक बहुत ही मजेदार सा जवाब पहुंचाइएगा, ताकि कम शब्दों का प्रयोग मैं इसलिए आपसे कह रही हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ शो में शामिल हो सकें। अगर बहुत ज्यादा लॉन्ग या लेंथी मैसेजेस हो जाते हैं दोस्तों, तो उसमें होता यह है कि उसमें ही पढ़ने में सारा वक्त निकल जाता है और बाकी जो भी नए लिसनर या नए लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश में होते हैं उन बेचारों के मैसेजेस हमारे रह जाते हैं। तो आप सभी के मैसेज ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल कर सकूं, इसलिए छोटी सी गुजारिश है कि आप कम शब्दों में मुझे अच्छे और लाजवाब जवाब पहुंचाइएगा। फिलहाल मैं पहुंचा रही हूं आज का पहला क्लू आपके लिए और उम्मीद करती हूं कि आपको इसी में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए अपने दिल की आवाज आरजे सबिया नकवी को शो ट्रिपल एन यानी मैसेज मसाला मिक्स में। व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप भली भांति जानते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर, तो बिल्कुल आप अपने जो जवाब है मुझ तक पहुंचाइए, जल्दी से लौट के आइए।

Well, दोस्तों इस पहले क्यू से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आज हम किस पर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ऑलरेडी अपने जो जवाब मुझे पहुंचा भी दिए हैं, लेकिन पहले पूरा सवाल तो सुन लीजिए जनाब, उसके बाद अपने जो जवाब है मुझ तक पहुंचाइएगा। काफ़ी हद तक तो आप समझे हैं और काफ़ी हद तक नहीं भी समझे हैं। पूरा सवाल जब आप मुझसे सुनेंगे तभी तो पूरा जवाब मुझ तक पहुँचा पाएंगे, उसके बाद ही मैं आपके मैसेजेस दोस्तों शामिल कर पाऊंगी। तो अब से आप मुझे मैसेज करना शुरू करिएगा जब आप मेरा पूरा सवाल सुन लें। वेल, बिल्कुल ठीक समझे आप शुरू की लाइन। तो नाम पर आज हमारा जो ये आज का प्रोग्राम है बेस रहेगा। कहा जाता है दोस्तों कि नाम जो है इंसान की पूरी पहचान, उसकी पूरी शख्सियत की पहचान होती है, उसकी पहली पहचान होती है। इसीलिए जो माता पिता हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे का नाम लेने में अक्सर बहुत चूजी होते हैं और बहुत टाइम लेते हैं। बहुत सारे लोगों से सजेशंस भी लेते हैं कि भाई हमारे घर बच्चा हुआ है, बेबी हुआ है, उसका क्या नाम रखें, ऐसा क्या नाम रखें जो थोड़ा सा यूनिक हो और अलग भी हो, अच्छा भी हो, खूबसूरत भी हो। वो इसलिए क्योंकि कहा जाता है, ये बात बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है, कि जैसा नाम आप अपने बच्चे का रखते हैं उसका इम्पैक्ट, उसका जो असर, उसका जो प्रभाव है वो आपकी शख्सियत पे, आपकी पर्सनालिटी पे ज़रूर पाता है। तो इसीलिए नाम सोच समझ कर रखा जाता है। तो आज का सवाल यही है कि पहले तो आप अपना छोटा सा प्यारा सा नाम मुझे बताएं और फिर ये बताएं कि जैसा आपका नाम है क्या वैसे गुण या वैसी जो शख्सियत है, वैसे जो आपकी पर्सनालिटी है वैसी है भी या नहीं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ये भी सुनते हैं कि भाई नाम ये है और इसके बिल्कुल पलट यानी अपोजिट आप हैं, ऐसा भी सुनने मिलता है। अगर ऐसा भी है आप तो ये भी मुझे पहुंचाइएगा जवाब। तो बिल्कुल आपका क्या नाम है और आपके नाम के साथ आपके कौन से गुण आपके अंदर आए हैं ये मुझे लिख भेजिए कम शब्दों में, जैसे कि पहले ही कहा। और उसके बाद मैं आपके सभी जवाबों को जल्दी जल्दी लेना शुरू करूंगी दोस्तों। तो चलिए एक और गाना फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूं। उतने आप जल्दी से मुझे जो मैंने अभी पूछा है कि आपका नाम क्या है और आपके नाम के साथ आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी मैचअप होती है या नहीं, ये लिख भेजिए जल्दी से फटाफट।

वेल दोस्तों, ऐसी किस्से कहानी हम तक पहुंच चुके हैं बहुत सारे मैसेज के, जो मैंने जो सवाल पूछा उसके एवज में मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब आ चुके हैं। तो ये क्रम इसी तरह जारी रहेगा और आप मुझे बताइए कि आपके नाम का मतलब क्या है और आपके नाम के मुताबिक जो गुण हैं वो आपकी पर्सनैलिटी में आती हैं या नहीं। हमारे साथ जुड़े हैं सोनू बिजनौर से, कह रहे हैं आज का सवाल बड़ा मस्त है मैडम। मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ बात तो सही है, नाम तो मेरा सोनू है पर मैं हमेशा शांत रहता हूँ और मैं सोने जैसा और तन पानी जैसा है। ये बिजनौर से हैं। जैसे मैंने कहा ना कि कभी कभी अपोजिट भी हो जाता है दोस्तों और कभी कभी नहीं भी। आरजे नकवी नाम ही पहचान है, इसलिए बच्चे का नाम बोलने वाला आसान मतलब अच्छा निकलता है। मेरा नाम अनिल है, मतलब पवन जैसा हूँ, प्यार से अन्नू बचपन घर में बुलाते थे। और ये हैं अनिल शर्मा सरिता विहार से हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ मोहम्मद सरफराज आलम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोशीना हाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से। मेरा नाम है सरफराज आलम, सरफराज का मतलब होता है सम्मानित यानी सर उठाकर चलने वाला। कोशिश तो यही रहती है कि अपने नाम के मुताबिक ज़िंदगी जीऊँ, लोगों की मदद करूँ, सच्चाई के साथ खड़ा रहूँ और अपने किरदार को ऐसा बनाऊँ कि नाम भी गर्व महसूस करे। पूरी तरह तो मैच शायद हर इंसान भी नहीं कर पाता लेकिन कोशिश ज़रूर करता हूँ। वेल आप इतनी कोशिश करते हैं ही बहुत है, इसी को आगे जारी रखें, इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाबी जरूर पा लेंगे। गुड इवनिंग डियर आरजे प्रोग्राम ट्रिपल एम, हीरा मणि वर्मा, जी हाँ हीरा हूँ मैं, अपनी माँ का, बाबूजी का और अपनी मैडम जी का, शायद अभी सभी भाई जी मुख्य नाम से मणि लगा है, वही हमारी पहचान है। माँ बाबूजी बताते हैं परिवार में मेरे जन्म के बाद से उन्नति शुरू हुई थी। हीरा मणि वर्मा हमारे साथ भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, बहुत अच्छी बात है जनाब। जावेद आलम, मैं रहता हूँ कानपुर में और जयपुर में मेरे दो नाम हैं। अच्छा, दूसरा बाबू, मैं बहुत गुस्से वाला हूँ। अच्छा, बाबू तो बहुत क्यूट, बहुत प्यारे बंदे को कहा जाता है, आप कहाँ से गुस्से

वाले हैं, पहले वाले का मतलब तो नहीं मालूम, जावेद आलम मेरा नाम है, अच्छा ओके इनका नाम है। और देखिए लगातार जो मैसेज आते रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो हमारे आगे पीछे काफ़ी हद तक हो जाते हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मैं ले सकूँ। मेरा नाम विशाल मल्होत्रा है, मेरा धर्म और कर्म ही मेरी पहचान है, गलत को गलत सही को सही कहने में शक नहीं करता, प्यार में विश्वास करता हूँ, इंतज़ार करना भी मेरी आदत है, भगवान में विश्वास करता हूँ, माता पिता की सेवा में विश्वास करता हूँ। अच्छा मैंने पूछा था सर, ये है शायद आप थोड़ा सा भटक गए, ये है विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से, मैंने कहा था सर आपके नाम का मतलब क्या है और जो आपके नाम का मतलब निकलता है वैसे गुण आपके अंदर है या नहीं, ये आपको लिख भेजना था, तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सुबह का मतलब होता है सुबह सुगंध या मनमोहक, ओके अच्छा। सौरभ का मतलब होता है, अच्छा ओके ये सौरभ है लीजिए जल्दी जल्दी मैं आपका नाम भी गलत भूल गई, सौरभ अनेजा गाज़ियाबाद से हमारे साथ हैं, वो अपने नाम का मतलब मुझे यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। सौरभ का मतलब होता है सुगंध या मनमोहक खुशबू, आप में अपने मुँह से अपनी क्या तारीफ़ करूँ ये तो आप भी बता सकते हैं बिल्कुल सही कहा सौरभ, आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं जहाँ तक हमें लगता है, रेगुलर लिसनर हैं रेनबो के, और आपका ये नाम का भी बहुत खूबसूरत मतलब है, और हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी भी वैसी ही हो, अगर वैसी है तो वैसी ही बनाइएगा, सबके साथ अच्छे रहिएगा और अपनी तरफ से एक प्यारी सी खुशबू आप सब तरफ बिखेरिएगा। मेरा नाम रंजीत है जिसका अर्थ होता है सबको खुश रखते हुए विजय प्राप्त करना, मेरा नाम मेरे व्यक्तित्व की पहचान है, यह है कि रंजीत कुमार मंडल अररिया बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र सोनी देवीगढ़ से हमारे साथ हैं, गुड इवनिंग सभिया, शुभ संध्या मैडम सभिया जी, कभी हाँ सभिया नकवी जी को, जैसे मेरा नाम है नरेंद्र वैसे ही सुहाग है, और इंद्र वाला किसी को प्यासा नहीं देख सकता, अच्छा और कोई क्रोधित कर दे तो उसको दोबारा मैं तसल्ली देता हूँ, ओके शायद यही आप लिखना चाह रहे थे, खैर चलिए आपके प्यार के जो आपके बड़े अच्छे अच्छे मैसेजेस हमें मिले।

हमारे साथ पुणे से, और आई एम ब्राइट एंड इंटेलिजेंट. ओके चलिए, गुड इवनिंग सभी. हाँ, मेरा नाम सरोज है, मीनिंग है कमल, जो आजकल हर ओर खिला है. मेरे हस्बैंड का नाम है गुलशन, जो गुलशन में भी कमाल खिलते हैं. सूरज मल्होत्रा मेरठ से हमारे साथ हैं. चलिए, बहुत अच्छे हमारे पास जो हैं वो जवाब आ रहे हैं. एक गाना जल्दी से सुन लेते हैं, इतने में देखती हूँ कौन से ऐसे मैसेज हमारे पास आए हैं ना, और उनके मतलब जानने की कोशिश करते हैं. आप बने रहिए. एक बार फिर से सवाल दोहरा दूँ, आपकी नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और क्या वो आपके नाम के साथ या आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैचअप होता है या नहीं, ये लिख भेजिए जल्दी से कम शब्दों के साथ.

0: जी हाँ, आप आ गए हैं, समय कम है इसलिए बैकग्राउंड में म्यूजिक एंजॉय करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पंकज अमराती महाराष्ट्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग आरजे सबिहा नकवी मैडम जी, वेलकम बैक योर शो और प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। अच्छा लग रहा है। और मेरा जो नाम है प्रफुल है और पंकज मेरा निक नेम है। निक नेम नहीं बताना सर, सिर्फ रियल नेम ही बता दीजिए प्लीज। जी हाँ, प्रफुल का मतलब होता है सदा आनंदी रहने वाला, पंकज यानी कमल का फूल, और कमल सबसे ज्यादा सुंदर होता है, लेकिन मैं कमल की तरह खूबसूरत नहीं। ऐसा नहीं है भाई, दिल से खूबसूरत होना सबसे बड़ी बात होती है।
1: वादा रहा, वादा रहा, वादा रहा।
0: मैसेज मसाला मिक्स, सबिहा नकवी जी को प्यार भरा आदाब। सबिहा नकवी जी, आदिल कमर आदिल मायने इंसाफ करने वाला होता है, कमर के मायने चांद हैं। अल्लाह के करम से मेरे अंदर दोनों खूबियां मौजूद हैं। गुन्नौर से आदिल कमर तस्दीक अली मुजफ्फर अली कह रहे हैं। चलिए, बेहद उंदिया और खूबसूरत बात कही है आपने। राकेश ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं, मोहन गार्डन उत्तम नगर दिल्ली से। मेरा नाम राकेश है जिसका मीनिंग है चंद्रमा, मेरी पत्नी का नाम है चांदनी। वाह क्या मेल है, मैं वाकई चांद की तरह और मृदुल हूँ और मेरी पत्नी लाउड और कड़क। ये बेमेल भी कभी कभी मेल अच्छा होता है दोस्तों।

विजय कुमार नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यू दिल्ली से। कह रहे हैं मैडम मैं हमारा नाम का मतलब होता है जीत और विक्ट्री जिसे कहते हैं। थैंक यू, आप सदा खुश रहें। और क्या आप जीतते भी हैं ये भी बताइएगा कभी फुर्सत में। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग टू यू। शम्सुल कमर राही हमारे साथ हैं। हर माँ बाप का ख्वाब होता है अपने बच्चे का नाम उनकी तरह अच्छे रखें। बच्चे उम्मीदों पर खड़े उतरें बिल्कुल कुछ उलट होता है, लेकिन मैं आपकी बात करूं तो मैं बिल्कुल अपने नाम की तरह हूं, अपने किरदार पर उतरता हूं। मेरा नाम है शम्सुल कमर, मतलब चाँद और सूरज, और कभी मैं ठंडा तो कभी गर्म हूं। मैडम जी नमस्कार, मैं संजय मेरठ से हूँ और मैं आपका कार्यक्रम प्रतिदिन सुनता हूँ। प्रतिदिन तो आता भी नहीं है सर, मैं मतलब प्रतिदिन आता है, मैं नहीं प्रतिदिन आती हूँ, लेकिन आप शायद कार्यक्रम की यानी शो की बात कर रहे हैं तो वो आप रेगुलर सुनते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मेरा नाम है दूरदर्शी, मतलब मेरे नाम का मतलब है अच्छा दूरदर्शी, और मुझे कभी दूर का कभी पास का कम दिखाई देता है, नाम के अपोजिट हूँ जैसे कि आपने बोला। अच्छा, संजय का मतलब दूरदर्शी होता है, ओके ये कह रहे हैं आप, चलिए कोई बात नहीं। अगर आप दूरदर्शी हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी शख्सियत को निखारने में आपके लिए मददगार साबित होता होगा आपका नाम। जी हाँ, ये लिख रहे हैं सुप्रसिद्ध रेडियो प्रेजेंटर सबिहा जी, नमस्ते नमस्ते, शो में बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। मेरा नाम है प्रेमचंद शर्मा, और जैसे कि मेरा नाम मेरे घर वालों ने रखा है, मैं उसी के अनुरूप आचरण करते हुए सारी दुनिया में प्यार बांटता हूँ, चाहे पशु पक्षी हो, इंसान हो या कोई भी जीव हो, सभी को प्यार बांटता हूँ, इसीलिए अब भी लोग मुझे प्रेमचंद प्रेमी के नाम से पुकारते हैं। कह रहे हैं धामपुर जिला बिजनौर से। बिल्कुल आपकी शख्सियत के नाम, आपका जो नाम है वो बिल्कुल मैचअप होता है सर, और इसी तरह रहिएगा, अपनी शख्सियत को इसी तरह निखारिएगा। नमस्कार रेडियो मसाला मिक्स टीम, मेरा नाम है कृष्णा कुकरेती और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर, सर आपकी पोस्ट नहीं पूछी थी, प्रोफाइल नहीं पूछा था, चलिए मेरा ये मेरा अच्छा रेडियो रेनबो शानदार प्रस्तुति है, गाने भी अच्छे लग रहे हैं। सर आप टॉपिक से थोड़ा हट गए हैं, आप रेडियो जॉगी बनने के लिए क्या कर सकते हैं ये मैं आपको कभी फुर्सत में बताऊंगी। आज के सवाल के रिगार्डिंग अगर आपके पास जवाब हो तो प्लीज़ दें सर, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें शामिल करने हैं और फिर कभी फुर्सत में आपके सवाल का जवाब मैं जरूर दे जाऊंगी। मेरा नाम अंशुल है। अंशुल वो व्यक्ति जो चमकता है, दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाता है। संस्कृत में अंश का मतलब होता है भाग या किरण, और अंशुल उसी से बना है जिसका अर्थ है रोशनी देने वाला या चमकने वाला। ये है अंशुल सिटी मेरठ से हमारे साथ। दानिश कतौली से हमारे साथ जुड़े हैं और दानिश कह रहे हैं सभी हमें मेरे नाम का मतलब होता है दानिश यानी अकलमंद, इंटेलिजेंट। चलिए अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी और अकलमंदी की बातें फिर किया करिए आप दानिश। मेरा नाम गौतम है। गौतम का अर्थ होता है ज्ञान और प्रकाश से जुड़ा। कोशिश करता हूँ कि अपने काम और व्यवहार में सीखने और समझने और सकारात्मकता को बनाए रखूं। मुझे लगता है कि मैं अपने नाम के अर्थ को अपनी जिंदगी में धीरे धीरे साकार कर रहा हूँ। औरंगाबाद बिहार से। जी हाँ, अनुमान राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका पूरा नाम क्या है? गुड इवनिंग मंटू शर्मा कह रहे हैं। मेरा नाम है जी आरजे सबिया नकवी, पूरा नाम यही है, और आपको ये नहीं लिखना था, आपको बताना था कि आपके नाम का मतलब क्या है ये मुझे लिख भेजिए। गाजियाबाद पूजा कॉलोनी से कपिल यादव लिख रहे हैं, किससे कैसी हो सबिया? वेल मैं बिल्कुल ठीक। मेरे पापा ने मेरा कपिल नाम ये सोच कर रखा था कि कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि उन्होंने कपिल देव और कपिल सिब्बल जैसे लोगों के बारे में सुना था। मैं कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं कर पाया, लेकिन वर्तमान में SBI में क्लर्क हूँ, पोस्ट पर पोस्टेड हूँ और मैं एक ब्लाइंड पर्सन हूँ। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है सर कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ तो अच्छा किया, बल्कि बहुत कुछ अच्छा किया। तरक्की करते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन और तरक्की आपको मिलेगी। मेरा नाम फारूक है और उसके मायने होते हैं हक का साथ देना और हक की बात कहना। ये कह रहे हैं फारूक अली खान साहब। तो चलिए दोस्तों, एक और गाना आपके लिए लेकर आते हैं, फिर जल्दी से लौट के आते हैं कुछ और मैसेजेस के साथ।

वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं अपना डेली डोज म्यूजिकल शो ट्रिपल एम यानी मैसेज मसाला मिक्स विद योर आरजे सभी अनकुई 102.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और एनसीआर में। इस वक्त हम सुने जा रहे हैं हमारी इस फ्रिक्वेंसी पे मोबाइल ऐप और डीडीएच के जरिए से भी आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग सुन सकते हैं। फिलहाल मैंने पूछा था कि आपके नाम का मतलब क्या है, यानी आपका नाम क्या है और उसका मतलब क्या है, और आपके नाम के साथ जो आपकी पर्सनैलिटी है वो मैचअप हो पाती है या नहीं। इसके ऊपर हम पे बड़े इंटरेस्टिंग जवाब सुनने के लिए मिल रहे हैं। चलिए उन्हीं जवाबों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम तरुण है, मेरा हर काम मेरी पहचान है। तरुण यानी युवा, एक ऐसी ऊर्जा जो कार्य को खूबसूरती और जोश से संवार देती है। पर मेरी असली चमक मेरे काम में नहीं बल्कि किसी की मदद करने में है, उसे रूहानी सकून मिलता है। कहना है तरुण कुमार अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। वेल, अच्छी बात है सर अगर आपकी ये सोच है। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेडवन गाँव से हमारे साथ हैं। नाम के अनुरूप मुझ में गुण है, हंसमुख हूँ और मेरा संसार है, सबकी मदद करता हूँ। चलिए अच्छी बात है। गुड इवनिंग मैम, माय नेम इज़ निधि और मेरे नाम का मतलब है खजाना। मुझे लगता है कि दो खजाना दो तरह का होता है, पहले गुणों का खजाना और दूसरा धन यानी सोना चांदी वाला। मेरे अंदर पैसे सेविंग करने के थोड़े से गुण हैं और गुणों वाले खजाने की बात की जाए तो मैं अच्छी हूँ। और ऐड करना चाहूँगी कि हनुमान चालीसवा में 9 तरह की निधियों का जिक्र है। अच्छा, ये तो आपने थोड़ा सा टॉपिक से हट के मैसेज कर दिया मैडम। हाँ, मतलब आपकी जो शुरुआती बात थी वो बिल्कुल निधि का मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।

हेलो मैम, ये हैं भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से। हाउ आर यू मैडम? टुडेज़ टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट माय नेम इज़ भुवनेश, मीनिंग है इनके नाम का गुड बिकॉज ट्राई टू मेक्स एवरीवन स्माइल अराउंड। ओके, कह रहे हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने नाम के मुताबिक नज़र आऊँ और हर किसी के चारों तरफ खुशियाँ बांट सकूँ। हमारा नाम विशाल। अच्छा, ये दोबारा से मैसेज आ गया है। होली चौक उत्तम नगर से हमारे साथ जयराम खोरवाल, सचिन खैरवाल, अमन दीपांशु हुए हैं। शो तो इनको अच्छा लग रहा है। वेल, अच्छा लगता अगर आप टॉपिक के रिगार्डिंग भी मैसेज करते। सर, हेलो डियर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू यू डियर। मेरा नाम है धर्म और जिसका भाव करना या भला करना है डियर, मेरी नेचर है बिल्कुल पेरेंट्स के रखने नाम के अनुकूल है। मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे अच्छा भी लगता है और संतोष भी मिलता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं धर्म भाटिया रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। शुभ संध्या मैडम, सूरज का मतलब ऊर्जा, लेकिन मैं थोड़ा आलसी व्यक्ति हूँ, अपने नाम के अपोजिट हूँ। दिल्ली से कह रहे हैं हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डियर सबिहा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस यू सो मच सबिहा मैम। एंड मैं तो आज तक के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि मेरा नाम है अंशी, जिसका मतलब होता है गुड गिफ्ट। यस, मेरा नाम के अकॉर्डिंग मेरी पर्सनैलिटी मैचअप तो होती है, कभी कभी अपोजिट भी हो जाती है। हस्तिनापुर मेरठ से हमें मैसेज कर रही हैं। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ से प्रकाश तिरसुनिया जी। हमारे यहाँ बारिश हो रही है, मौसम भी अच्छा है। वेल, वेदर रिपोर्ट नहीं मांगी थी सर, आपके नाम का मतलब माना था मैंने और नहीं शायद आप सुन पाए। गुड इवनिंग सबिया, मेरा नाम सिद्धार्थ है। सर, नाम तो सिद्धार्थ है लेकिन मतलब क्या है और क्या आपकी पर्सनैलिटी आपके नाम के साथ मैचअप होती, ये भी बताना था। शुभ संध्या मैडम, नाम में क्या रखा है? कर्म अच्छा होना चाहिए। राजेश भल्ला जी कंकड़खेड़ा मेरठ सर से कह रहे हैं। नहीं सर, मैं आपकी बात से यहाँ तो इत्तेफाक नहीं करती, नाम में बहुत कुछ रखा है सर। और परवीन का मतलब है स्किल्स यानी एक्सपर्ट। ये हैं हमारे साथ परवीन चौहान मध्य प्रदेश से। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी हमारे साथ हैं। कोई ऐसा नाम हो कि आपको हर आपका नाम हो जाए, और ये कह रहे हैं कोई ऐसा काम हो जो आपका नाम हो जाए। सर, आप अपने नाम का मतलब बताते तो अच्छा लगता। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी शांति नगर सोनीपत से हमारे साथ हैं। ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, सूट करता है क्योंकि जैसा आपका नाम है वैसे ही आप सब की सुनती हैं, सबके बात बात में अच्छी लेती हैं। मेरे नाम का अक्षर अच्छे अच्छे नगमे और गीत सुनाना है। अच्छा, ओके। नमस्कार, नमस्कार जी। गांव बूमना से मंजीत हैं हमारे साथ और इकबाल राय हैं इनका नाम और जिसका मीनिंग होता है। इकबाल राय है मेरा नाम और ये अरबी भाषा का वर्ड है मुझे लग रहा है, समझ नहीं पा रही हूँ। गुलाटी कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं। आपने अपने नाम का मतलब भी नहीं बताया और ये भी नहीं बताया कि मैचअप करता है या नहीं। नमस्ते, गुड इवनिंग। नीता अमरावती से, मेरा नाम है नीता और मेरे पति का नाम है विलास और ऐसे ही हमारी लाइफ है। बेटे का नाम वैभव, नाम वैभव के साथ साथ दोनों का जीवन भी वैसा ही है। मेरा नाम दीक्षांत धीमान है। मेरे नाम का अर्थ होता है दीक्षा प्राप्त करना। मैं पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। मेरे पापा अभी पुरकाजी नगर पंचायत के सभासद बने हैं। अच्छा, ये तो आपने नई इन्फो दी है हमें सर। चलिए, खैर, कुछ और मैसेजेस के साथ फिर से होती है मुलाकात। बने रहिए और ये अगला गाना आपके लिए।

साथ साथ सुनवाना है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड में आप एंजॉय करिए हमारा म्यूजिक, और साथ ही साथ मैं आपके मैसेज पढ़ने की कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा। ये दिल छू जाए। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है विनोद कुकरेजा, और विनोद का मतलब होता है हमेशा हंसते हंसाते रहना। घर का नाम है हैप्पी। अरे भाई घर का नाम मत बोलिए दोस्तों, रियल नेम बता दीजिए प्लीज़, समय कम है और इतने सारे मैसेजेस हैं मेरे पास। मैं खुश रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, यह कह रहे हैं विनोद कुकरेजा चंडीगढ़ से। वेल बहुत अच्छा करते हैं दोस्तों, लाइफ का यही मंत्र है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। राकेश चंडीगढ़ से हमारे साथ है। मेरे नाम का मतलब है राकेश, अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला। चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम कैलाश है और ये शिव के एक नाम को दर्शाता है, कैलाश पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह पर्वत शांत होता है, इस तरह मेरा स्वभाव भी शांत है। मेरा नाम सही सोच समझ कर रखा गया है। कैलाश शर्मा, गुरुग्राम से।

तो समझ लो। कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं दिनेश, अनुज और सोनित कुमार, उमेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग टू यू। मेरा नाम सतीश है, मेरा नाम का मतलब है सच का देवता। मधीपुर न्यू दिल्ली से हमारे साथ हैं।

अमरोहा यूपी से हमारे साथ हैं अंजुम सैफी साहब। मेरा नाम अंजुम सैफी है और मेरे नाम का मीनिंग होता है महफिल, जो मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच करता है। मैं जहां भी जाता हूं महफिल जम जाती है। वेल, बहुत अच्छी बात। मेरा नाम कुमार झा है क्योंकि नाम में क्या अच्छा मेरा नाम क्या कुमार झा क्योंकि नाम में क्या रखा है। वैसे नाम हेमंत कुमार है। शीत ऋतु की शुरुआत होती है। अच्छा, नहीं, मैं हमेशा ये कहती हूँ भाई नाम में बहुत कुछ रखा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि नाम में कुछ नहीं रखा? नाम में बहुत कुछ रखा है दोस्तों। मेरा नाम मंटू है और बचपन में मेरा मन नहीं लगता था। जब मुझे कोई बाहर का इंसान दुकान से कोई चीज़ दिलाता था तो मैं खुश हो जाता था। डबल चीज़ मांगता था मेरे घर वालों ने ताकि मुझे डांटा धमकाया घर वालों ने। मेरा नाम उस दिन मन का टू जोड़कर मंटू कर दिया। प्यार से मंटू कहते हैं। अब कितने बजे आओगी? अब कितने बजे नहीं भाई, अब एक घंटे बाद ही मिलेंगे 8 से 9 के बीच में। जी हाँ, पार्टी टाइम शो में, और उसके बाद का नहीं पता दोस्तों। मेरा नाम हर्षवर्धन है जिसका अर्थ खुशी बदलने वाला होता है। गुड इवनिंग अनियमित हमारे साथ हैं हर्ष, मध्य प्रदेश से। अच्छा, नियमित श्रोता हैं लेकिन नाम इनका हर्ष है और मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो आप किस्तों में अपनी बातें बताते हैं इसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो जाती है। वल दोस्तों,

वाल ये दीवानगी इसी तरह कायम रखिए, क्योंकि मैं हूँ आपके साथ आरजे सभी अनकुई 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर दिल्ली और एनसीआर में हम सुने जा रहे हैं, और दिल्ली के अलग हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज और अलग अलग माध्यम से हम सुने जा रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ

आपके दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी। शो चल रहा है ट्रिपल एम। आज का सवाल यह है कि आपके नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, और क्या आपके नाम के साथ आपकी पर्सनालिटी मैचअप हो पाती है या नहीं। इसी के ऊपर हमारे पास बेइंतहा जवाब आए हैं और कुछ और मैसेज जो आए हैं मेरे पास उनका जिक्र कर लेती हूँ। हमारे पास है रामपुर यूपी से फैज़ नकवी और समरा नकवी। इनकी अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले शादी हुई है और अब खुदा ने इन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा है जिसका नाम इन्होंने रखा है लुबाबा, जिसका मतलब है अकलमंद यानी कि इंटेलिजेंट। और ये कह रहे हैं कि अभी से मैडम, वो अभी एक साल की भी नहीं हुई लेकिन वो अभी से इतनी इंटेलिजेंट, इतनी अकलमंद है, हमें बिल्कुल परेशान नहीं करती और अपनी प्यारी प्यारी आँखों से हमें लगातार टकाटक देखती रहती है और उस पर बेहद प्यार आता है। वेल, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें। और हमारे साथ रामपुर से तो यही हमारे लिसनर थे और अमरोहा यूपी नौगांवा से हमारे साथ जुड़े हैं कुमैल और तरन्नुम, और अली और नीलोफर ये दोनों ब्रदर हैं, यानी कुमैल और तरन्नुम एक कपल हैं और अली और नीलोफर एक कपल हैं। इन दोनों ने भी अपने अपने बेटों का जिक्र यहाँ किया है हमसे और ये कह रहे हैं कि हमारे जो बेटे हैं यानी कुमैल और तरन्नुम का जो बेटा है वो है रूहान, शायद अगर मैं गलती कर रही हूँ, मतलब दो इनके बेटे हैं जुहान और रूहान अलग अलग कपल्स के, और एक का नाम है रूहान का मतलब होता है खुशी यानी प्लेजर और जुहान का मतलब होता है गिफ्ट यानी तोहफा। तो कह रहे हैं कि उसी तरह उनकी पर्सनालिटी भी है, हमें तोहफे की तरह वो मिले हैं और इसी तरह हम उनके साथ अपनी धीरे धीरे ज़िंदगी को खूबसूरत बना रहे हैं। तो वेल, आप दोनों ही कपल को हमारी तरफ से ढेर सारी बेस्ट विशेज़। उम्मीद करते हैं कि आपकी ज़िंदगी इसी तरह खुशियों से भरपूर रहेगी। फ़िलहाल ये गाना आपके लिए, बहुत कम समय रह गया मेरे पास, कोशिश मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जोड़ सकूँ अपने साथ। फ़िलहाल इस कोशिश में कितना कामयाब होती हूँ तो बताएँगे आप। ये गाना जल्दी सुनिए और जल्दी से वापस लौट के आइए।

वाल दोस्तों, जैसे कि कहा कि समय कम है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मिलने की कोशिश में हैं, हमारे साथ जुड़ने की कोशिश में हैं, तो मैसेज भी जल्दी जल्दी लेने की कोशिश करते हैं। बैकग्राउंड में आप म्यूज़िक एंजॉय करें। गांव खेड़की, जिला बिजनौर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है दिव्यांशु यादव। दिव्यांशु के अर्थ का नाम है दिव्य, प्रकाश, किरण या सूर्य का प्रकाश होता है। इस नाम वाले व्यक्ति सौम्य स्वभाव के होते हैं और शांत स्वभाव के दयालु होते हैं। चलिए, अगर आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग सभी, मैम हाउ आर यू, आई एम टोटली फाइन मैडम। मेरा नाम अफशा है और इसका मीनिंग होता है चमकना। अरे वाह, आप अपने नाम के मुताबिक ही चमकती हुई नजर आती हैं हमेशा। अफशा खानम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से हमारे साथ हैं। सर, आपका मैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ कई बार, आपने शायद सुना नहीं। आपका नाम आपके मीनिंग के नाम के साथ मिले चुकी हूँ, आप कुछ और लोगों को भी मौका दीजिए।

0: कार्ड से मोहम्मद फुरखान साहब सभी जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सॉरी मैं आपका शो सुनने में लेट हो गया, अब हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हैं जी।
1: दोनों वादा करें
0: शुभ संध्या, मेरा नाम तुषार है, मतलब होता है ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे, हमेशा बूंदों की तरह महसूस करता हूँ। तुषार कुरुक्षेत्र हमारे साथ हैं।

वेल दोस्तों, बस अब इसी के साथ मैं आपसे लूंगी इजाजत, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है हमारे पास। लेकिन इस एक घंटे के ब्रेक के बाद फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखिएगा अपना एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद खास। छोटा सा कहूंगी टेक केयर, क्योंकि बस पार्टी टाइम में फिर से मिल रही हूँ, तब करेंगे कुछ और ढेर सारी बात। फिलहाल ये लास्ट गाना आपके लिए पेकल कर जा रही हूँ मैं, और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको पसंद आएगा। कोशिश मेरी यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैं मैसेजेस ले सकूँ। अब इसमें कितना कामयाब हुई ये तो आप बताएंगे। फिलहाल चलिए करते हैं बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, लास्ट गाना क्या प्ले करना, बस अब कुछ ही समय बचा है, तो बस यही गाना आप इन्जॉय कर लीजिए, और अब बाकी की कसर हम पूरी करेंगे पार्टी टाइम शो में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
1: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हेलो आदाब नमस्कार सत श्री अकाल गुड इवनिंग कैसे हैं आप हमेशा की तरह फिट एंड फाइन इसी आशा उम्मीद के साथ स्टूडियो मैन पहुंचिए स्टूडियो में आपके साथ आपके दिल की आवाज आरजे सबिया नकवी वर्थडे वाला वेलकम है जी आप सभी का आपका डेली डोज म्यूजिकल शो जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। जी हाँ जैसे कि आप सभी जानते हैं म्यूजिक मस्ती का जो फॉर्मेट होता है वो होता है आपके लिए नॉन स्टॉप पार्टी टाइप म्यूजिक का प्ले करना और आज भी इसी तरह चुन चुन कर म्यूजिक लेकर आ गई हूँ आपके लिए सॉन्ग्स लेकर आ गई हूँ आपके लिए कुछ इरा से हटके मैंने गाने ऐसे चूज किए हैं जो आप डेली रूटीन में सुन रहे हैं आज की ट्रेंड में जो गाने चल रहे हैं वो तो आप सुनते ही हैं लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि मिडिल इरा में जो हमारे गाने आए थे वो भी ज़बरदस्त पार्टी ट्रैक्स रहे हैं तो आज क्यों ना उनकी यादों को ताज़ा किया जाए तो इसीलिए वही गाने मैंने थोड़े से चुनकर अपनी प्ले लिस्ट में ऐड किए हैं उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। खैर आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो आप बाद में बताएंगे फिलहाल तो मैं आपको कहना चाहती हूँ अभी बोल के तो मैंने कह ही दिया फिलहाल एक पार्टी ट्रैक भी है मेरे पास उसके माध्यम से बताना चाहूंगी और स्वागत करना चाहूंगी वेलकम देना चाहूंगी आप सभी को तो बने रहिए मेरे साथ सुनते रहिए अपना डेली डोज म्यूजिकल शो म्यूजिक मस्ती विद योर आरजे सबिहा नकवी।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ लगातार जारी है म्यूजिक मस्ती शो का ये कंटेंट जो आप तक पहुँच रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है। आपके मैसेजेस जो मुझ तक पहुँच रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन आप जैसे कि सभी जानते हैं कि मैसेज बेस्ड शो तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आखिर में जब हमारा जो शो एंड होने वाला हो उससे पहले या उसके बीच में आपके मैसेजेस आप मुझे कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से लोग हमसे जुड़ रहे हैं इसके बारे में तो ज़रूर चाहे छोटी सी डिटेल लेकिन ऑन एयर कर पाऊँ। तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा इंतज़ार, हो शो जो है आपको सुनना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे तो लग रहा है कि मैं काफ़ी अच्छे ट्रैक्स लेके आई हूँ आपके लिए। आपको कैसा लग रहा है ये आप मुझे बताएंगे, और मैं आपको फिलहाल एक और खूबसूरत गाना, एक और पार्टी सॉन्ग देने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बेहद पसंद आएगा। सुनते रहिए मुझे यानी अपने दिल की आवाज़ आरजे सभिया नकवी को 102.6 मेगाहर्ट्ज़ दिल्ली और NCR में, और इंडिया के बाहर इस वक्त हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर अलग अलग जरियों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया के बाहर भी, इंडिया के अंदर भी, यानी आउट ऑफ इंडिया भी हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, जो अपना फीडबैक, अपनी प्रस्तुति, अपना जो प्रेजेंस है वो जरूर दर्ज कराते हैं। तो इसी तरह बने रहिए, फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए और थिरकते रहिए हमारी ताल पर।

वेल, दिल चुराने तो मैं भी आई हूँ, यहाँ म्यूजिक चलाने मैं भी आई हूँ, तो इसी तरह एंजॉय करते रहिए मेरे साथ। और हाँ, आप बता चुके हैं मुझे अपने प्रेजेंस, और यकीन मानिए दोस्तों, आप जो यहाँ मैसेज भेज रहे हैं वो पढ़ ज़रूर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन जैसे कि आपसे वादा किया है कि शो ख़त्म होने के थोड़े से पहले मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी को शामिल कर सकूँ आपके नाम के साथ इस प्रोग्राम में। तो अगर आप बताना चाहते हैं कहाँ से जुड़ा है हमारे साथ, तो बिल्कुल बता सकते हैं। आपके मैसेज तो मैं पढ़ ही रही हूँ, लेकिन उनको ऑन एयर करूँगी या तो मिडिल में या फिर शो के एंड में, जैसे मौका होगा, जैसे दस्तूर होगा। फिलहाल तो यहाँ म्यूजिक मस्ती शो चल रहा है, तो हमारी जो मस्ती है, हमारा जो म्यूजिक है, वो थमना नहीं चाहिए। आपके पैर जो थिरक रहे हैं वो बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए। डांस फ्लोर बना लीजिए आज अपने घर का, जो आपका फर्श है, आपका रूफ है, आपकी छत है, जहाँ भी आप हैं, फिलहाल इसी को अपना डांस फ्लोर समझें और बस थिरकते रहिए, नाचते रहिए और मदमस्त होते रहिए। सारा स्ट्रेस अपना रिलीव कर दीजिए आपके स्ट्रेस को कम डाउन करने के लिए, और आपकी जिंदगी में नया जोश भरने के लिए हम जुड़ चुके हैं आपके साथ। बने रहिए। इसी तरह जबरदस्त ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप बता भी रहे हैं। खैर, और डिटेल में जो बात होगी वो अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल एक और गाना आपके लिए, उम्मीद है पसंद जरूर आएगा।

वेल दोस्तों, आज जुमेरात तो नहीं है, लेकिन जुमेरात भी आने ही वाला है, वीकेंड भी आने ही वाला है। इसमें भी आप खूब पार्टी करेंगे। मुझे लगता है कि आपका जो भी ऑफिस का जो स्ट्रेस है वो ज़रूर कम डाउन करेंगे आप। लेकिन हमारी तो कोशिश यही रहती है भाई, ऑफिस से जब इंसान लौटता है तब भी बहुत थका बांधा होता है, पूरे दिन की जो जद्दोजहद है उसकी लाइफ में हो रही होती है। तो वहीं हमारा कोशिश होती है कि ऑफिस से आते वक्त आपकी गाड़ी में आपके FM पे कुछ इस तरह के गाने हम प्ले करवा दें अपने FM के माध्यम से, जिससे आपका जो स्ट्रेस है वो कहीं दूर हो जाए और आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं आप, हम ये तो आप धीरे धीरे बता ही देंगे। वेल, आपके मैसेज मुझ तक पहुंच रहे हैं और यकीन मानिए ये सारे मैसेज मैं पढ़ भी रही हूं। अब कोशिश रहेगी कि मिडिल में या तो फिर शो के एंड में उन मैसेज को ऑन एयर कर सकूं, लेकिन फिलहाल इंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए अपने दिल की आवाज़ आरजे सबिया नकवी के साथ। शो चल रहा है, म्यूजिक मस्ती, और ये मस्ती, ये म्यूजिक यहाँ एंड नहीं होने वाला है। अभी और आधा घंटा है हमारे पास, इस आधे घंटे में करेंगे हम जमकर खूब सारा डांस मस्ती। तो फिलहाल ये अगला गाना आपके लिए, इसी तरह आप बने रहिए और एंजॉय करते रहिए।

vous.

वेल दोस्तों, महफूज रखिए मुझे भी इसी तरह अपने दिल के किसी कोने में, जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि अपने किसी दिल के कोने में महफूज करके छोड़ दीजिए अपनी इस आरजे दोस्त को। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सबीहा अब कब आओगी, तो वेल दोस्तों अब तो पता नहीं भाई कब आना हो। हो सकता है कि जून में आना हो, लेकिन इसकी भी चांसेस बहुत कम है, 10% ही चांसेस हैं कि जून के महीने में अपनी मुलाकात हो पाए। अगर हो गई तो किस्मत मेहरबान समझिए, लेकिन अगर नहीं हुई तो जब तक नहीं आऊँगी तब तक मुझे ढेर सारा मिस करिएगा। मैं भी आप सभी लिसनर्स को बहुत सारा मिस करूंगी और कोशिश करूंगी कि फिर कुछ अरसे बाद फिर से आऊं, फिर से आपके साथ लगातार ये शोज की जो इंजॉयमेंट है, जो महफिल है, ये जमाऊं। लेकिन तब तक के लिए कहूंगी वही एक खास बात कि जब तक अपनी ना हो मुलाकात, तब तक आपको रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे ढेर सारा मिस करना है और अच्छी अच्छी बातों पर ध्यान देना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है, नकारात्मकता को दूर भगाना है, नेगेटिव लोगों से जो है आपको बहुत दूर रहना है दोस्तों, अपने अंदर सिर्फ पॉजिटिव लोगों को और अपने दायरे में पॉजिटिव लोगों की फ्रेंडशिप को ही शामिल करिए।

ये छोटी छोटी सलाह मशवरे हैं जो आपको दे जाती हूँ मैं एक दोस्त होने के नाते, फिर ना जाने कब मुलाकात हो, इसीलिए ये सब अभी कह देना चाहती हूँ कि फिर पता नहीं अपनी मुलाकात हो ना पाए, इसीलिए बस तब तक मैं मिलूँ आपसे तब तक मुझे आप इसी तरह मिलने चाहिए, इसी तरह हंसते खिलखिलाते आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, शुभ हो, मेरी भी यही दुआ है। अगर मिले भी नहीं तो लेकिन वहीं से बैठे बैठे आपके लिए ढेर सारी दुआएँ करूँगी मैं, और आप भी मुझे बेस्ट विशेज़ और बेस्ट दुआओं में याद रखिएगा। फ़िलहाल चलिए प्रोग्राम तो चल ही रहा है, यहाँ म्यूजिक मस्ती और इसी तरह ये फन जारी रहेगा। आपके पास आपके मैसेज आ चुके हैं मेरे साथ मेरे पास, उनको करूंगी बस कुछ ही देर में ऑन एयर। तब तक के लिए मुझे सुनिए, मुझे समझिए और इन गानों पे अपने पैरों को थिरकना ना छोड़िए। फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि आसपास बारिश हो रही है, मैं तो स्टूडियो में, मुझे नहीं पता बाहर बारिश है या नहीं है, लेकिन जब निकलूंगी तब देखूंगी। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो और भी सुपर वेदर हो चुका है आपके लिए, इतने सुपर डुपर हिट गाने और उसके ऊपर बारिश का मौसम और पकौड़े और चाय भी बनवा लें नहीं बनवाई है तो, और बस एंजॉय करें हमारे पार्टी ट्रैक्स। तो लीजिए अब ये अगला ट्रैक आपके लिए, बने रहिए इसी तरह मेरे साथ, जो भी बचा है वक्त हमारे पास उसको खूब एंजॉय करेंगे हम और आप।

0: वाल उम्मीद कर रहे हैं कि पार्टी नंबर्स आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे और ये वाकई दिल फितना ही होता है भाई, ये जो ना करा है वो कम है। फिलहाल तो यहाँ थिरकने के लिए आप हैं मजबूर, क्योंकि मौसम भी बाहर लोग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है और यहाँ पार्टी ट्रैक्स भी बहुत उमदा चल रहे हैं। तो इसी तरह जारी रहेगा हमारे साथ म्यूज़िक मस्ती शो का ये क्रम, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके साथ आपके दिल की आवाज़ अर्जे सबिया नकवी। फिलहाल ये ट्रैक लेकर आ गई हूँ आपके लिए, इसको आप सुनिए और मुझे लगता है कि बहुत सारी यादें आपकी ताज़ा होने वाली हैं ट्रैक सुनकर। बहुत नाचे होंगे हम भी आप भी इस ट्रैक पर। चलिए एक बार फिर से शुरू हो जाइए और तैयार हो जाइए इस पर नाचने के लिए, इस पर थिरकने के लिए।
1: You know me, girl. Me see you coming my way, and your body done sway.

वेल दोस्तों, समय समाप्ति की ओर है और जैसे कि आपसे कहा था कि अगर मौका लगा, हमारे पास वक्त हुआ, तो इस थोड़े से टाइम में हम आपके जो मैसेज हैं वो ज़रूर शामिल कर लेंगे कि भाई आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें बताते हैं कि भाई कौन कौन से शहरों से आप हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बने हुए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ हो जाता है कि एटलीस्ट ज़्यादा लेंदी नहीं तो कम से कम आपके नाम और आपके शहर के साथ तो हम शामिल कर ही सकते हैं आपका मैसेज। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कि मैडम प्रोग्राम और गाने आपके दोनों अच्छे लग रहे हैं, चलिए अच्छी बात है सर। हितेंद्र और वर्षा शेफाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन कोंडली से हैं शायद, डिस्ट्रिक्ट स्टेट है इनका आसाम, ये भी हमारे साथ हैं। सोनिया विहार, सोनिया है, सोनिया विहार दिल्ली से, ओके सोनिया विहार दिल्ली से। कंचन हमारे साथ हैं, कंचन श्वेता, गुड इवनिंग मैम, आपको हमारा जो प्रोग्राम है ये पसंद कर रही हैं, थैंक यू सो मच सोनिया। गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन ज़िले से हमारे साथ लगातार शामिल हैं और इसके अलावा आकाश चावला ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कि मौसम भी अच्छा है और आपकी प्लेलिस्ट भी अच्छी है। दानिश खतौली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुलफाम खान दिल्ली शादरा से हमारे प्रोग्राम को इन्जॉय कर रहे हैं और इसी के साथ पुनीत ऋषिकेश से हमारे साथ हैं। एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी है, लेकिन आपको बता दूँ कि हमारा जो शो है रिक्वेस्ट बेस्ड नहीं है। गाने पसंद आ रहे हैं ओखला संगम विहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी, सत्यम और सुंदरम गुप्ता, ये हमारे साथ जुड़े हैं और इसी के साथ सरफराज आलम साहब अररिया बिहार से भी इस शो में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। विजय कुमार नामदेव दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। सौरभ अनेजा गाजियाबाद से हमारे साथ हैं, सुरेश वैश्वव हमारे साथ हैं और इसी के साथ नालंदा बिहार से हमारे साथ हैं अनुभव जी और रेगुलर लिसनर हैं, हमें सुनते हैं और ढेर सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसका वक्त हमारे पास नहीं है। ग्रेटर कैलाश से ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर आपकी बेस्ट विशेस के लिए। और बहुत लेंदी मैसेज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी दोस्तों, जैसे कि आप मेरी मजबूरी जान ही रहे हैं। आप कई दिनों बाद आओगी, कभी हम श्रोताओं को ना भुलाओगी, रोज़ करेंगे याद हम आपको जब आप आकर गाने बजाओगी। चलिए थैंक यू सो मच, ये हमें लिख भेजा है हनुमानगढ़ राजस्थान से, शेरडा तहसील भादरा ज़िला से मंटू शर्मा जी ने, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। अगर कोई मैसेज रह गया है तो कोशिश करूंगी कि बार फिर से मैं जाते जाते मैसेज शामिल कर जाऊं आपका, क्योंकि ना जाने अब फिर कब मुलाकात हो। फिलहाल ये गाना आपके लिए यहाँ प्ले कर रही हूँ, जल्दी से लौट के आते हैं। म्यूजिक मस्ती का सिलसिला अभी थोड़ी देर, बस कुछ ही देर और जारी रहने वाला है आपके साथ।

वेल दोस्तों, ये इश्क मोहब्बत इसी तरह जारी रखिएगा हमारे साथ, हमारे सभी आरजेस दोस्त के साथ। मैं तो जा रही हूँ, पता नहीं कब होगी मुलाकात, लेकिन अगला शो लेकर हाजिर हो चुके हैं आपके सम्मुख। आपकी याद आती रही है बज़्म रंगे महफिल में, आपके साथ रहेंगे परवीन शर्मा जी। फिलहाल मुझे यानी अपने दिल की आवाज़ आरजे सभी नकवी को दीजिए बस आज इजाज़त। अब आप अपनी दुआओं में ढेर सारी बेस्ट विशेस में मुझे याद रखिएगा, और जाते जाते कहूँगी वही खास बात कि अपना रखिएगा एकदम खासम खास ख्याल, क्योंकि आप ही किसी के लिए बेहद खास। जाते जाते गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।

नमस्कार, हेलो, आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, दिल से।

दोस्तों दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी पर सुन रहे हैं और अब वक्त हो गया है यादों के सफर पर चलने का, यानी उनमें खो जाने का और यादों की दुनिया को रोशन करने का। यानी हो गया है वक्त आपके खासम खास प्रोग्राम का जिसका नाम है आपकी याद आती रही। और आज आपकी याद आती रही के साथ स्टूडियो में उपस्थित है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा। तो रहिएगा इस खूबसूरत से सफर में हमारे साथ रात 10 बजे तक।

कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो, तेरे फूल से आरिस की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

जब हम किसी के दिल को अपना घर बना लेते हैं ना दोस्तों, तो उसी में रहने की ख्वाहिश भी करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने हमदम की इजाज़त लेनी पड़ती है। बिना किसी की मर्जी के हम ना तो किसी को अपना बना सकते हैं और ना ही किसी के दिल में जगह बना सकते हैं।

रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6 दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स, आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दोस्तों, दिल्ली और एनसीआर के अलावा आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं, और आप इस वक्त आपकी याद आती रही कि खूबसूरत महफिल में अपने दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ। तो लेते रहे आनंद इन खूबसूरत से गीतों का और डूब जाइए उन खूबसूरत सी यादों में जो रह रह कर हमें याद आती हैं, सताती हैं।

0: गया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

कठपुतली है या जीवन है, जीते जाओ सोचो मत, सोच से ही सारी उलझन है, जीते जाओ सोचो मत। लिखा हुआ किरदार कहानी में ही चलता फिरता है, कभी ये दूरी कभी मिलन है, जीते जाओ सोचो मत।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी याद आती रही आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। वैसे जब हम किसी को अपना मान लेते हैं ना, तो फिर उसे शिद्दत से चाहने लगते हैं और ये भी चाहते हैं कि वो भी हर कीमत पर सिर्फ हमारा ही बनकर रहे, किसी और का उसे ख्याल तक ना आए। यही बात हम उसे कभी कभी कुछ इस तरह भी समझाते हैं, है कि नहीं?

ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दें दिलों की दास्तां। जरा सी जुल्फ खोल दो, फिजा में इत्र घोल दो, नजर जो बात कह चुकी वो बात मुंह से बोल दो, कि झूम उठे निगाह में बाहर का समा। ये चुप भी एक सवाल है, अजीब दिल का हाल है, हर एक ख्याल खो गया, बस अब यही ख्याल है कि फासला न कुछ रहे हमारे दरमियां, ये पर्वतों के दायरे ये शाम का धुआं।

अब फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है आपकी याद आती रही से इजाजत। आपसे जल्दी मुलाकात होगी, रात 11:05 पर प्रोग्राम होगा रंगे महफिल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा है कि चाहे वे इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीगे के नव निर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपये का अनुबंध किया। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार

0: and the song Tonto.
1: No sé cuál decir grosería.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता

0: गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1,130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपए मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल ईयर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया है रंगे महफिल की खूबसूरत महफिल में आपका साथ देने का। जी हाँ, तो प्रवीण शर्मा लेकर आ गया है आपका खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है रंगे महफिल। तो कबूल फरमाइए मेरा प्यार भरा आदाब।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं, 100 बार करो।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, जब एक बार कोई हमारी नजरों में बस जाता है ना, तो फिर वो सदा सदा के लिए हमारा हो जाता है। जब कोई हमारी नजरों के रास्ते से हमारे दिल में उतर जाता है, तो वो हमेशा के लिए हमारा बन जाता है और हम उसके बन जाते हैं। हमारे दिल की आरजू तभी पूरी होती है जब हम अपने दिलबर का दीदार कर पाते हैं।

कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड

नजर से गुफ्तगु खामोश लब तुम्हारी तरह, नजर से गुफ्तगु खामोश लब तुम्हारी तरह, गजल ने सीखे हैं अंदाज सब तुम्हारी तरह। जो प्यास तेज हो तो रेत भी है चादर आब, दिखाई दूर से देते हैं सब तुम्हारी तरह।

0: से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः ब्रेक के बाद आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन, इस्तकबाल, खैर मकदम है। आप इस वक्त तरंगी महफिल के खूबसूरत महफिल मेरे दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। तो देते रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए बेहतरीन गजलें आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।

अजब हालात थे, अजब हालात थे। यूं दिल का सौदा हो गया आखिर, मोहब्बत की हवेली जिस तरह नीलाम हो जाए। समंदर के सफर में इस तरह आवाज दो हमको, हवाएं तेज हों और कश्तियों में शाम हो जाए।

दोस्तों, मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो दिलों को आपस में जोड़ता है, जो दो प्यार करने वालों को करीब लाता है। इश्क के सागर पर जब हमारे ख्वाबों की कश्ती अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ती है ना, तो उम्मीदों के लाखों दिए जगमगा उठते हैं और हम अपने को, अपने हमदम को अपने पास होने का एहसास करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा हमदम बिल्कुल हमारे पास बैठा है और हम उसे एक टक निहार रहे हैं।

कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, कभी तो शाम ढले अपने घर गए होते, किसी किसी की आंख में रहकर संवर गए होते। गजल ने बहते हुए फूल चुन लिए, वरना गमों में डूब के हम लोग मर गए होते।

दोस्तों, अब फिलहाल प्रवीण शर्मा आपसे लेता है अगली मुलाकात तक इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात किसी न किसी मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25।

0: परसेंट के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
1: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की थी और कहा था कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपने प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉ के निराला उपस्थित थे। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। मौसम विभाग ने बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल, केरलम और माहे में तेज बारिश की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:05 और 38 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं जीरो आर शो। मैं हूं आपके साथ अर्चना बिसारिया। दोस्तों, 1973 में एक फिल्म आई थी सौदागर। आइए आपको सुनवाते हैं उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, आवाज लता मंगेशकर की।

इस खूबसूरत गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म लाड साहब का ये गीत।

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: और अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है सावन की घटा।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: बारह बजकर 39 मिनट और 14 सेकंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं जीरो आर शो और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत, आवाज किशोर कुमार की।

0: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
1: और दोस्तों आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म शर्मिली का ये गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: बॉबी फिल्म का गीत आइए सुनते हैं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

और प्रोग्राम के आखिर में आइए आपको सुनवाते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले का गाया फिल्म धूल का फूल का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है।

0: इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं, एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा, करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड।

संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल है। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली में अपनी प्रमुख शोध पत्रिका संचार माध्यम का विशेष स्मृति अंक जारी किया। ये अंक भारत में हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकाशित किया गया। नीति आयोग ने सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य वास्तविक समय में शासन को मजबूत करना, विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय बढ़ाना और योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना है। पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि छिब्बर ने किया। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए थे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 1:05 और 42 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सुहानी रात।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी मिली है।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था, तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को भी मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की

संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरला में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन SIS से जुड़े जैविक आतंकी हमले की साजिश रचने के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये आरोपी सार्वजनिक जगहों पर रायसिन नाम के खतरनाक जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे थे। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,000,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। संयुक्त अरब अमीरात ने कहा है कि उस पर लगातार दूसरे दिन मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं। ईरान ने इन घटनाओं में किसी भी भूमिका से सख्ती से इनकार किया है। ये घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और हॉर्मूज जल डमरू मध्य में समुद्री सुरक्षा को लेकर अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान जारी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 2:05 और 40 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं भोलाई ना बने।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार

श्रोता सुन रहे थे ये खूबसूरत से गीत कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज में। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 4 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दे दी।
1: अब तक अपन ने जितने भी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं एक एक सेक्टर को लेके किए, और अब डिस्प्ले वाला अपने पास बाकी था तो ISM 1.0 का लास्ट 2 प्रोजेक्ट आज के अप्रूव हुए। उसमें पहला प्रोजेक्ट हुआ डिस्प्ले, जिसमें कि पहली माइक्रो LED का फैब इंडिया में लगेगा। करीब 3,000 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें जाएगा। सेकेंड प्लांट आज अप्रूव हुआ है SSPL का, सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये सूरत के पास में है और ये बेसिकली चिप्स बनाएगा।
0: मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री JP नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और

पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दुनिया इस समय तेजी से बदल रही है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जमैका में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर युद्ध, आर्थिक अनिश्चितता और नई तकनीकों के कारण हालात जटिल हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $1,10,00,000,000 के निवेश की घोषणा की है। ये निवेश एरोस्पेस, रक्षा, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। ये घोषणा वॉशिंगटन के पास मैरीलैंड के नेशनल हार्बर में आयोजित सेलेक्ट यूएसए निवेश शिखर सम्मेलन में की गई। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 15 वर्ग में नोंग पोंगनबा मेईती, पारशांत मोहम्मद यासिर और निवेश पाल ने अपने अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। रणवीर को वॉक ओवर से जीत मिली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रही हैं एफएम रेनबो। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:05:50 और ये समय है कार्यक्रम सारेगामा। तो लीजिए, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
8: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

सारेगामा ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह का 5 बजने जा रहा है। कुछ ही पलों में अब समाचार होंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति कल 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनका स्वागत किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह की 9 मई को होने की संभावना है। भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत एक लोकतंत्र है और इसका हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री

बनर्जी के इस कथित बयान पर कि वे इस्तीफा नहीं देंगी, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन टिप्पणियों को अराजक बताया और इस तरह के बयान देने में संयम बरतने का आग्रह किया। वहीं केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके के नवनिर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 जारी करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समितियां निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में बुनियादी पढ़ने लिखने और गणना क्षमता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली की टीम ने 155 रन बनाए। संजू सैमसन ने नाबाद 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कार्तिक शर्मा ने 41 रन का योगदान दिया। आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। समय हो रहा है सुबह के 5:05 और 50 सेकंड्स। लीजिए श्रोताओं, ये सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।